मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर से कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत

0: हो गई है और दो अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पांचवें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खुशियों को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

हम बाहरी दुनिया से कभी भी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक हमारा मन अंदर से शांत ना हो, और हमारा मन अंदर से तभी शांत होता है जब हम अपना ध्यान प्रभु की आराधना में लगाते हैं।

0: अभी आप उमाकांत रमाकांत शर्मा बंधु देवाशीष दास और महेंद्र कपूर के स्वर में भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं पर समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
2: ओ 8700001।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार।
1: दर्शन का काम जीवन को व्यवस्थित करना तथा उसे मार्ग प्रदर्शित करना है। दर्शन जीवन के नेतृत्व को ग्रहण कर संसार के अनेक परिवर्तनों एवं परिस्थितियों में से होकर रास्ता दिखाता है। जब तक दर्शन जीवित रहता है वो लोक जीवन से दूर नहीं जाता। दार्शनिकों के विचार उनकी व्यक्तिगत जीवनचर्या से ही विकसित होते हैं। हमें उसके प्रति केवल श्रद्धा ही नहीं रखनी है प्रत्युत उस भावना की प्राप्ति भी करनी है। वशिष्ठ तथा विश्वामित्र, याज्ञवल्क तथा गार्गी, बुद्ध तथा महावीर, गौतम तथा कणाद, कपिल तथा पतंजलि, वादरायण और जैमिनी केवल इतिहासकारों के विषय मात्र नहीं हैं, वे व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न प्रकार भी हैं। उनके लिए दर्शन विचारों तथा अनुभव पर आधारित संसार संबंधी एक दृष्टिकोण है। भली भांति मनन किए हुए विचार ही जीवन रूपी सर्वोच्च परीक्षा में व्यवहृत एवं परीक्षित होकर धर्म बन जाते हैं। दर्शन का अभ्यास धर्माचरण की पूर्ति करना भी तो है। आज संसार के बड़े बड़े धर्मों तथा विचारधाराओं का भारतवर्ष में सम्मिलन हो गया है। पाश्चात्य विचारों के संपर्क से पिछले युग के आत्मसंतोष में कुछ क्षोभ उत्पन्न हो गया है। एक भिन्न संस्कृति को स्वीकार कर लेने का एक फल ये हुआ है कि लोगों की यह धारणा बन गई है कि चरम प्रश्नों का कोई आधिकारिक समाधान नहीं हो सकता। परंपरा प्राप्त समाधानों में विश्वास नहीं रहा और किसी हद तक विचारों में कुछ अधिक स्वतंत्रता एवं अधिक परिवर्तनशीलता को प्रश्रय मिल गया है। प्रथाएं फिर तरल हो गई हैं और यद्यपि कुछ लोग प्राचीन नियम पर पुनर्निर्माण करना चाहते हैं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस नीम को ही हटा देने के पक्ष में हैं। ये परिवर्तनकालीन युग काफी मनोरंजक तथा चिंतापूर्ण है। निकट अतीत में भारतवर्ष विश्व की विचारधाराओं के मुख्य प्रवाह से दूर एक सुरक्षित कोने में पड़ा था, पर आज तो शेष संसार के साथ संबंधहीनता की वो दशा नहीं रही है। किंतु इस चित्र का एक दूसरा पक्ष भी है। क्रिया की ही तरह विचारों के क्षेत्र में भी अत्यधिक बंधन एवं पूर्ण अनवस्था दोनों ही मनुष्य की आत्मा को पतन की ओर ले जाती हैं। जहां तक संस्कृति तथा सभ्यता का संबंध है दोनों समान ही हैं। हो सकता है कि अराजकता में भौतिक कष्ट, आर्थिक बर्बादी तथा सामाजिक खतरा हो और बंधन में भौतिक सुख, आर्थिक स्थिरता तथा सामाजिक शांति हो, पर सभ्यता को आर्थिक संपन्नता अथवा सामाजिक व्यवस्था की रक्षा समझ लेना भारी भूल होगी। कई पीढ़ियों तक सार्वजनिक कला तथा व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भारतवर्ष ने अंग्रेजों के आगमन का जो स्वर्णयुग समझकर स्वागत किया उसका समझना कुछ कठिन नहीं है, पर भारत की वर्तमान भावना को सहानुभूतिपूर्वक समझना भी उतना ही सरल है। मनुष्य की आत्मा सुख की नहीं आनंद की भूखी है। उसे शांति एवं सुव्यवस्था नहीं जीवन तथा स्वाधीनता चाहिए। उसे आर्थिक स्थिरता अथवा न्यायपूर्ण शासन की चाह नहीं, वरन असंख्य दुख कष्ट उठाकर भी अपनी मुक्ति के मार्ग को स्वयं प्रशस्त करने का अधिकार चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं स्ट्रॉबेरी की हाइड्रोपोनिक खेती विषय पर मिथुन तरफदार से अरविंद्र कुमार की बातचीत।

0: किसान भैया देखा खेती किसानी में तमाम तरह के जानकार विशेषज्ञ भैया हरे आवत हिन और अपन अनुभव साझा करत हिन। ऐसे आज स्टूडियो में एक किसानी की एक नई तकनीक बतावे बारे विशेषज्ञ आए हैं, मिथुन तरफदार जी, जौन की कृषि सुवाट्स नैनी प्रयागराज से आए बाटिन भैया, जो कि भैया हमका बताइए आज स्ट्रॉबेरी की हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में। तो भैया सबसे पहले आपके स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत बाटे। तो भैया बतावा सबसे पहले ये कि हाइड्रोपोनिक खेती क्या बाटे।
1: यहाँ खेती करने का एक आधुनिक तरीका है जिसमें बिना मिट्टी का प्रयोग किए
0: अच्छा
1: आधुनिक
0: जी
1: तरीके से खेती की जाती है।
0: जी
1: इस विधि में लगभग 15 से 30 डिग्री तापमान और 80 से 85% नमी या आर्द्रता में हाइड्रोपोनिक्स की खेती किया जा सकता है।
0: अच्छा भैया। अब भैया ये बताओ स्ट्रॉबेरी की हाइड्रोपोनिक खेती कैसे करते हैं।
1: इस तकनीक में पीवीसी पाइप या फिर जो आप देखते हैं पीवीसी पाइप जो होती है आपको मार्केट में आसानी से
0: जी
1: प्राप्त
0: जी
1: हो जाएगा, उसमें छोटे छोटे छिद्र किया जाते हैं।
0: अच्छा भैया।
1: वो 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर में वो जो आप लगा रहे हैं बेसिकली, जो अगर आप स्ट्रॉबेरी का खेती करते हैं तो उसमें 2 सेंटीमीटर का
0: अच्छा।
1: उसमें छिद्र बनाया जाता है। वो
0: अच्छा
1: 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक स्पेस
0: हाँ
1: हो सकता है,
0: अच्छा।
1: ठीक है। और उसमें जो है उस छिद्र में आप पौधे को
0: अच्छा
1: एक कप के थ्रू,
0: अच्छा
1: कप
0: भैया।
1: आती है नेट कप बोलते हैं जिसे, उसके अंदर पौधे को लगा के क्ले बॉल आती है
0: जी
1: या
0: जी
1: हाइड्रोट्रॉन बोलते हैं उसको, उस बॉल का उपयोग करके उसको पानी, जो पाइप होती है उसके अंदर पानी, पाइप के थ्रू दोनों साइड में पाइप लगाया जाता है, नीचे में
0: अच्छा
1: एक बाल्टी लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: आप आसानी से किसी भी इंटरनेट के साइट में जाके या यूट्यूब में जाके आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से होता है वो। तो उसमें पानी प्रवाहित किया जाता है
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: उसमें जो होता है जड़ उसमें उस पानी के संपर्क में रहता है और
0: अच्छा
1: उसी पानी में हमें खनिज पदार्थ या जो पोषक तत्व जो पौधों को
0: अच्छा भैया
1: आवश्यक होता है
0: जी जी
1: वो उसमें दिया जाता है।
0: अच्छा। तो भैया ये बताएं पानी कई कई दिन में दिया जाता है मैंने।
1: ये पानी का, अगर पानी की क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि किस तरीके का पानी है।
0: अच्छा
1: जैसे
0: अच्छा
1: आप उसमें डालते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पानी क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, तो उसके हिसाब से हमको वो चेक करना होता है।
0: अच्छा
1: 15 दिन से 20 दिन के अंतर में पानी को हम
0: अच्छा अच्छा
1: उससे चेंज किया जाता है या बदला जाता है पानी को।
0: अच्छा अब ये बताएं पौधों को पोषक तत्व कैसे प्राप्त होते हैं।
1: पोषक तत्वों को पौधे में, जो हाइड्रोपोनिक्स में पोषक तत्वों को जिसके लिए, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, पोटाश,
0: अच्छा
1: सल्फर जैसे आदि तत्व जो होता है पौधे के लिए आवश्यक होता है
0: अच्छा अच्छा
1: उसमें दिया जाता है। उसे घोल बनाया जाता है, जैसे स्ट्रॉबेरी में होता है 20-20-18 के अनुपात में
0: अच्छा
1: नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, ऐसे उनका अनुपात होता है। उस अनुपात में
0: अच्छा
1: उसको मिश्रण के रूप में समय समय पर दिया जाता है जिससे कि पौधों को आवश्यक जो भी उसको न्यूट्रन या जो
0: अच्छा
1: चाहिए
0: अच्छा
1: होता है वो आसानी से उनको प्राप्त हो सके।
0: भैया जैसे आप बतावत हैं अगर
1: जी
0: यही विधि से किसान भैया रहे अपना में तो
1: जी
0: बड़ा फायदा हो भैया। तो भैया ये बतावें स्ट्रॉबेरी के अलावा और कौन कौन पौधे में जो है हाइड्रोपोनिक खेती से विधि से उगावा जाते हैं।
1: जी वर्तमान समय में इस तकनीक का उपयोग काफ़ी सारे फसल में किया जा रहा है, जैसे कि साग सब्जी, मेडिसिनल, औषधीय जो होता है,
0: अच्छा
1: लेकिन
0: भैया।
1: मुख्य रूप से इसमें स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, मटर, मिर्च, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, तरबूजा, खरबूजा, अजवाइन, तुलसी, गाजर, शलगम, ककड़ी, मूली, आलू, टमाटर आदि इसमें
0: अच्छा।
1: उपयोग में लिया जा रहा है। ये सफलतापूर्वक, ये आसानी से आप अपने घरों के छतों पे या कहीं पे भी इसको बाहर में छोटे से जगह पे,
0: अच्छा
1: 100 वर्ग फीट में या फिर एक बिस्सा में आप बोल सकते हैं, उसको आसानी से आप वहाँ पे लगा सकते हैं।
0: मतलब ये बड़ी अच्छी खेती बाड़ी
1: जी
0: मतलब लोग
1: बहुत,
0: घरों में उगाए करते हैं छतों में
1: जी जी
0: भैया।
1: जी जी
0: अच्छा भैया। तो
1: अभी
0: भैया
1: ये मॉडर्न समय में क्या है, ज़मीन की बहुत कमी हो रही है,
0: जी जी
1: लोग शहरों में अधिक रहते हैं या बड़े बड़े मकानों, फ्लैट में, तो उनका जो छत होता है वो खाली
0: जी
1: होता है,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: वहाँ पे वो वर्ष भर वहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से, और ये हाइड्रो

0: जो होती है ये पूरा ऑर्गेनिक होता है, इसमें बहुत अच्छे तरीके, साल भर आप इसमें
1: जी जी
0: फसल ले सकते हैं।
1: मतलब भैया अगर छत खाली बाटे तो मतलब सब्जी
0: जी
1: उगा ले भैया।
0: जी आप वहाँ पे आसानी से देख रेख कर सकते हैं।
1: तो भैया ये बताओ स्ट्रॉबेरी कितने दिन में तैयार हो जाती है भैया?
0: स्ट्रॉबेरी का जो खेती होता है वो मुख्य रूप से 120 से 140 दिन में, लगभग 4 महीने के अंदर
1: अच्छा
0: आपका
1: अच्छा
0: पूर्ण हो जाता है, और ये दिसंबर महीने के समय ही इसका
1: अच्छा अच्छा
0: पौधे इस इलाहाबाद कंडीशन में या प्रयागराज यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि
1: जी
0: ठंड का है ये,
1: जी जी
0: तो इस समय यहाँ पे इसको लगाना चाहिए दिसंबर के महीने में, 15 दिसंबर के आसपास।
1: अच्छा 15 दिसंबर से पहले लगा दिया।
0: जी
1: अच्छा अब भैया मैं कीट नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है?
0: कीट नियंत्रण की वैसे बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी अगर जैसे इसमें लगती है लीफ माइनर लगती है, या फिर कुछ कुछ जैसे फ्रूट फ्लाई होता
1: जी जी
0: है ना, तो ये सब चीज़ के लिए आप ऑर्गेनिक कोई भी फंजीसाइड को आप उसमें उपयोग कर सकते हैं, या इंसेक्टिसाइड जो ऑर्गेनिक रूप से मार्केट में बहुत अवेलेबल है, कोई
1: अच्छा
0: आसानी
1: अच्छा
0: से आपको प्राप्त हो जाएगा।
1: अब यह स्ट्रॉबेरी की खेती में कितने लागत आउट होते भैया?
0: इसमें लागत 100 वर्ग फीट में
1: अच्छा जी
0: लगभग इसमें 50,000 से 60,000 रुपये का खर्चा आता है, जिसमें
1: अच्छा
0: 200 पौधे को उगा सकते हैं,
1: अच्छा
0: बहुत
1: अच्छा
0: छोटे स्थान पे आप इसको कर सकते हैं। इस तरह की तकनीक में इस्तेमाल होने वाले पहला जो लागत होता है, पहले फर्स्ट टाइम आप जब इसको वो करेंगे तो इसमें अधिक लागत लगता है, लेकिन जब आप साल दर साल आप इसमें फसल लेते रहेंगे
1: जी
0: तो
1: जी
0: धीरे धीरे आपका इसमें मुनाफा बढ़ने लगेगा।
1: अच्छा तो भैया मतलब पौधे से पौधे की दूरी कितनी रहती है?
0: इसमें पौधे की पौधे दूरी डिपेंड करता है कि आप कौन सा पौधे इसमें ले रहे हैं, साग सब्जी जैसे पालक लगा सकते हैं इसमें, या मेथी लगा सकते हैं, तो उसमें बहुत दूरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स
1: अच्छा
0: में करेंगे तो आपको 15 सेंटीमीटर का उसमें दूरी,
1: अच्छा
0: एक
1: अच्छा
0: पौधे दूसरे पौधे की 15 सेंटीमीटर की दूरी रखना पड़ेगा इसमें।
1: अच्छा अच्छा भैया ये बताओ मैं हाइड्रोपोनिक मिट्टी यानी खेत में उत्पादन करने में और हाइड्रोपोनिक खेती से उत्पादन करने में फल में क्या मतलब उत्पादन होता है भैया?
0: जी हाइड्रोपोनिक्स के आप बेसिकली आप लाभ पूछ रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स में और मिट्टी में उगाने से इन दोनों में क्या अंतर आती है, फिर क्या इनकी विशेषताएं हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल कर आप अधिक पानी की खपत से बच सकते हैं, जैसे
1: अच्छा
0: पौध
1: जी
0: आप अगर फील्ड कंडीशन में अगर लगाएंगे या फिर आप खेत में लगा रहे हैं, तो उसमें पानी को आप जितना देंगे तो उसमें बहुत पानी का क्षय होता है या फिर
1: अच्छा
0: उसमें वेस्ट होता है,
1: हाँ मतलब पानी की
0: मतलब
1: बचत होती
0: जी
1: है।
0: जी तो इसमें 90% का पानी का बचत आप कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स में।
1: अच्छा
0: एक
1: अच्छा
0: बार पानी इसमें डाल दीजिए, उसी पानी को निरंतर वो
1: हाँ।
0: उसमें चलता रहेगा, उसके बाद वो 20 दिन 25 दिन बाद उसको आप चेंज करिए।
1: तो भैया ऐसे फसल सड़े ना?
0: नहीं,
1: अच्छा
0: उस जो न्यूट्रन होता है, क्योंकि पानी जब स्थिर होती है तो उसमें कुछ जैसे फंगस और ये सब चीज़ एल्गी वगैरह लग सकता है उसमें,
1: अच्छा
0: फफूंद वगैरह, पर जैसे पानी कंटिन्यू रनिंग करेगा उसमें तो उसमें आपका कोई भी समस्या नहीं होगा, रूट भी बहुत हेल्दी रहेगा, कोई
1: अच्छा
0: दिक्कत नहीं है उसमें।
1: अच्छा
0: पर और जो परंपरागत खेती होती है, जो जैसे कि आप बोल रहे हैं, इसमें जगह बहुत अधिक लगता है, पर
1: अच्छा
0: हाइड्रोपोनिक्स पर आप खेती अगर करेंगे तो बहुत कम जगह में आप इसको आसानी सफलतापूर्वक आप इसको उगा सकते हैं। इस विधि द्वारा पोषक तत्व की हानि भी बहुत कम होती है, जैसे
1: अच्छा
0: आप अगर खेत में आप जैसे यूरिया का छिड़काव करते हैं या डीएपी का छिड़काव करते हैं, तो क्या
1: अच्छा
0: होता है, पौधों को एक थोड़ा मात्रा में ही प्राप्त होता है, बाकी सब या तो पानी के थ्रू वो बह
1: बह
0: जाता
1: जाता।
0: है या फिर वो वातावरण में उड़ जाता है,
1: जी जी
0: पर इसके थ्रू पानी में देते हैं तो ये पौधे को जितना चाहिए उतना पौधे वो ले लेता है, और
1: अच्छा
0: आपका इसमें बिल्कुल भी क्षय नहीं होता है।
1: अच्छा अच्छा
0: ठीक है, इसमें जो है खेत में जो आप लगाते हैं तो उसमें पौधों में बहुत कीट पतंगे और सारी चीज़ें, इसमें बहुत रोग वोग लगता है,
1: अच्छा
0: पर
1: भैया
0: इसमें बहुत कम रोग लगता है, बहुत इसमें जैसे मिट्टी जनित कोई रोग नहीं होता है, इसकी जो गुणवत्ता होती है ये बहुत अच्छी होती है फल की।
1: अच्छा। अब भैया मैं मिट्टी की तैयारी कैसे होती है
0: मिट्टी की
1: मतलब कौन सी मिट्टी में लगाओ जाते हैं?
0: इसमें मिट्टी का आवश्यकता नहीं होता है,
1: अच्छा अच्छा
0: इसमें क्ले बॉल होता है या फिर परलाइट कोकोपीट यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ में इसका उगाया जाता है, या फिर कुछ मार्केट में फाइबर भी अवेलेबल है, या फिर
1: अच्छा
0: स्पंज की वो आती है, उसमें भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, ये इजीली आपको
1: नहीं
0: मार्केट में
1: जैसे
0: अवेलेबल है।
1: किसान भैया खेत में लगा दें तो मैं
0: जी
1: कैसे करें फिर?
0: खेत में, खेत के लिए भी आपको वहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स के लिए आपको पीवीसी पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, वो
1: अच्छा
0: विभिन्न आकार की आती है, गोल आती है, चपटी आती है,
1: अच्छा
0: वो आपको आसानी से किसी भी हार्डवेयर के दुकान में मिल जाएंगी, जो बाथरूम में यूज़ होती है या फिर घरों के जो जो सीवेज पाइप में
1: हाँ
0: यूज़ होते
1: पानी
0: हैं
1: में।
0: प्लास्टिक की, वही पीवीसी पाइप का ही यूज़ किया जाता है इसमें, आसानी से
1: अच्छा
0: आप
1: अच्छा
0: इसमें कर सकते हैं।
1: अच्छा भैया हाइड्रोपोनिक विधि से जो है खेती करने में या इस विधि के बढ़ावा दे के बारे सरकार की कोई योजना बांटे भैया?
0: जी बिल्कुल, सब्सिडी इसमें देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, ठीक है, तो इसमें क्या है जो हमारे जो भारत सरकार है या फिर जो उत्तर प्रदेश सरकार है, ये जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
1: अच्छा
0: नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साइट में आप जाके देख सकते हैं कि आपके स्टेट के लिए कितने प्रतिशत और किस किस फसलों में कितना कितना प्रतिशत इसमें
1: अच्छा
0: सब्सिडी या फिर उसमें अनुदान दिया जा रहा है, ये आप आसानी से जाके वहाँ पे देख सकते हैं।
1: अच्छा भैया।

0: अभी आप सुन रहे थे स्ट्रॉबेरी के हाइड्रोफोनिक खेती विषय पर मिथुन तरफदार से अरविंद्र कुमार की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर आलोक मिश्रा की वार्ता, हेपेटाइटिस कारण लक्षण और उपचार।
1: हेपेटाइटिस होती है लिवर या यकृत की सूजन। लिवर में सूजन के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कुछ वायरस, दवाइयाँ, अल्कोहल और मोटापा। जो वायरस होते हैं जो लिवर में सूजन पैदा करते हैं, वो ABCDE नाम से जाने जाते हैं। वो नाम आसानी के लिए नाम रख दिया गया है। इन्हीं वायरस में एक होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, जो लिवर को प्रभावित करता है, उसमें सूजन पैदा करता है। इसकी महत्ता क्या है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? दरअसल होता क्या है, अगर हेपेटाइटिस बी वायरस आपके शरीर में कई सालों तक शांत रूप से पड़ा रहे, मैं ये कह रहा हूँ ना शांत रूप से, मतलब कि जब आपको कोई भी लक्षण ना हो व्यक्ति को, तो ये धीरे धीरे करके लिवर को अंदर से खोखला करता जाता है, सिकुड़न पैदा करता है और लिवर में एक तरह की बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं सिरोसिस। सिरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लिवर परमानेंटली सिकुड़ जाता है, फिर धीरे धीरे उसका काम करना बंद हो जाता है और उसमें लिवर कैंसर भी पैदा हो सकता है। इस सिरोसिस और लिवर कैंसर की वजह से ही हेपेटाइटिस बी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुरुआत के कई सालों तक ये बिना किसी लक्षण पैदा किए शरीर में घूमता रहता है और व्यक्ति इससे अनजान रहता है कि उसको हेपेटाइटिस बी है कि नहीं है। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये फैलता कैसे है। हेपेटाइटिस बी फैलता है दूषित ब्लड से, सुई से, इंजेक्शन से, शारीरिक संपर्क से, पति पत्नी में संपर्क से या माँ से बच्चे में। ये खाने पीने, हाथ मिलाने, उसके साथ घूमने फिरने से ये नहीं फैलता। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको पता करना कि अगर आपके घर में या आपके आस कोई व्यक्ति इसको हेपेटाइटिस भी है, तो उससे किसी प्रकार का उसके साथ उठने बैठने, चलने फिरने घूमने से ये नहीं फैलेगा। केवल रक्त संबंधों की वजह से या शारीरिक सेक्सुअल संबंधों की वजह से ये फैल सकता है। अगर हमें पता ही कैसे फैल सकता है, तो हम इससे बचाव भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसके बचाव के ये है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव टीके हैं, उस टीके से आप हेपेटाइटिस बी को फैलने से रोक सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आती है कई बार माताओं को, जैसे कि आजकल चलन है कि ज़रूरी भी है कि जो भी प्रेग्नेंट महिला हैं उनमें हेपेटाइटिस बी के स्क्रीनिंग करा के जाँच की जाती है। तो कई बार महिलाएँ परेशान हो जाती हैं कि अगर उनको हेपेटाइटिस बी है तो क्या उनके बच्चे में तो नहीं हो जाएगा। होने की संभावना है, लेकिन अगर टीके आप बच्चे को पैदा होते ही लग जाएं और कुछ इंजेक्शन होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, या अगर मदर में वायरस का लोड बहुत ज़्यादा हो तो मदर को कुछ दवाई दी जाएं, तो माँ से बच्चे में संक्रमण की संभावना को लगभग शून्य किया जा सकता है। इसी तरह पति पत्नी के संपर्क में, अगर आपके फैमिली में कोई है तो उनके संपर्क में आने वाले जितने लोग हैं, अगर उनको टीका लग जाए तो भी इसको फैलने से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस परेशान कर सकता है, लिवर कैंसर कर सकता है, सिरोसिस कर सकता है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए और समय पर टीके लग जाएं तो उसको बचाया भी जा सकता है। बात तो होगी बचाव की, लेकिन अगर किसी को हो जाए तब क्या करें? बहुत भ्रांति है कि हेपेटाइटिस बी अगर क्रॉनिक है उसमें दवाई नहीं हो सकती और मरीज परेशान हो जाएगा। कई बार उनको लगता है कि इससे मेरा अंत आ गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक बात को ध्यान रखें, जिनको भी हेपेटाइटिस बी होता है, ज़रूरी नहीं कि सबको सिरोसिस हो। कुछ लोगों में ही, ये मान के चलिए 20-25% लोगों में सिरोसिस या लिवर कैंसर जैसी चीज़ हो सकती है। वो कौन से व्यक्ति हैं, ये आपकी बहुत सारी जांच करा के पता लगाया जा सकता है कि आपका लिवर ख़राब है और आपके शरीर में वायरस की मात्रा कितनी है। अगर वायरस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वायरस एक्टिव है और लिवर में बीमारी हो रही है, तभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और ट्रीटमेंट के फॉर्म में अब इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, टैबलेट हैं, बड़ी सस्ती टैबलेट हैं और बड़ी आसानी से इसको इलाज किया जा सकता है। अतः हेपेटाइटिस बी से डरने

0: की जरूरत नहीं है, बचाव करने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है और समय पर इलाज लेने की जरूरत है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आलोक मिश्रा की वार्ता, हेपेटाइटिस कारण लक्षण और उपचार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात 8 बजे संसद समीक्षा, रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्र मंडल खेल 2026 दैनिक रिपोर्ट। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा।

सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर मीनाक्षी दास के स्वर में भजन और गीत प्रसारित किया जाएगा। सुबह 10:05 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे गुलाब सिंह, नीलम शर्मा, राम सुमेर यादव और प्रीतम सिंह। सुबह 11:00 कार्यक्रम एक ही कलाकार सुनिएगा। दिन में 11:30 पर फिल्म संगीत, 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विद्याधर प्रसाद मिश्र का गायन प्रसारित किया जाएगा।

दिन में 12:30 पर हेलो फरमाइश प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी सुमन सिंह के स्वर में लोकगीत के अलावा विशाखा मिश्र की बातचीत, महिलाएं अंधविश्वास से कैसे बचें। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे 2:30 पर।

शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे तेरस लाल और साथी। युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे रमेश कुमार मिश्र से रामायण पाठ।

शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनिएगा प्रोफेसर देवदत्त सरोदे की वार्ता गुरु साक्षात परम ब्रह्म। सबरस कार्यक्रम रात 8:30 पर और रात 9:30 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: पदकञ्च एवम् आहत्य पञ्च पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। विमाता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुव लोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदायी बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए, फिल्म केदारनाथ में अमित त्रिवेदी को संगीत है अमित त्रिवेदी का और रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए अब सुनिए नीलकमल फिल्म का ये भजन। आशा भोसले की आवाज़ में संगीत दिया है रवि ने और रचना है साहिल लुधियानवी की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का है प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से करेंगे देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आज भी कहीं कहीं भारी बारिश की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से दिन भर के लिए स्थगित किए जाने के कारण इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी।
2: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना है। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जाँच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इससे पहले प्रदेश सरकार ने कल सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस बीच इस मामले में अयोध्या में

0: कल एंटी करप्शन कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलाया जाएगा। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि ने बताया कि इस अवसर पर श्री योगी गोरक्षपीठ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिष्य और गुरु दोनों भूमिकाओं में दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी की पाती साझा करते हुए कल मनाए जाने वाले गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का अवसर है।
1: अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मनीषा एवं सनातन संस्कृति में गुरु को साक्षात परम ब्रह्म माना गया है। श्री योगी ने कहा कि गुरु शिक्षा ही नहीं देते, जीवन को दिशा भी देते हैं। गुरु स्वयं ज्ञान का आलोक हैं, जो शिष्य को अज्ञान रूपी तम से निकालकर सत्य, संस्कार और प्रकाश के पथ पर अग्रसर करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि अपने गुरुजनों का सदैव स्मरण रखें, उनके दिए आदर्शों को जीवन में उतारें। श्री योगी ने कहा कि इससे लोगों का विकास निश्चित होगा तथा विकसित प्रदेश का मार्ग भी तभी प्रशस्त होगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश के नागरिकों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराएं।
2: हम प्रधानमंत्री जी ने लगातार तिरंगा का अभियान चलवाकर पूरे देशवासियों को राष्ट्रभक्ति के प्रति खासतौर से हर नागरिक का को कर्तव्य बोध कराया है और ये निश्चित रूप से अपने झंडे के प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए और सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने फ्लैग के प्रति पूरा समर्पण भाव से सम्मान करें और आदर पूर्वक इसको अपने घर में स्थापित करें।
0: प्रधानमंत्री ने बीते रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की अपील की। अगले माह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लिए नागरिकों से न्यू इंडिया के निर्माण से जुड़े अपने विचार, सुझाव और विजन साझा करने का आग्रह किया गया है। इनमें से चुने गए सुझावों को प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल किया जाएगा। लोग अपने विचार और सुझाव MyGOV प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। बलरामपुर जिले की सदर सीट से पूर्व विधायक और कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हनुमंत सिंह का कल लखनऊ में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मंत्री हनुमंत सिंह के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि कैबिनेट मंत्री के रूप में हनुमंत सिंह ने अपनी सेवा भावना एवं संवेदनशीलता से भारतीय जनता पार्टी परिवार की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए प्रदेश एवं समाज की असीम सेवा की। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, श्रावस्ती, अमरोहा और आसपास के क्षेत्रों में कल हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य में आज भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी तथा बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। वहीं नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का है प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा

0: में गबन मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी में पांचवें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से करेंगे देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आज भी कहीं कहीं भारी बारिश की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला, लेकिन उनके जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। 5 दिनों का ये सफर बता रहा है कि भारतीय दल अभी थमा नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में पदकों की चमक को बढ़ाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है।
2: मजबूत टखने, पैरों में लोहे सी मांसपेशियां, कंधों पर बोझ संभाल लेने की अद्भुत ताकत और गजब का भुजबल, ये होती है पहचान वेटलिफ्टिंग की, जिसने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में

0: जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। 5 दिनों का ये सफर बता रहा है कि भारतीय दल अभी थमा नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में पदकों की चमक को बढ़ाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है।
1: मजबूत टखने, पैरों में लोहे सी मांसपेशियां, कंधों पर बोझ संभाल लेने की अद्भुत ताकत और गजब का भुजबल, ये होती है पहचान वेटलिफ्टिंग की, जिसने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में इस देश को इन खेलों के पहले तक 46 स्वर्ण पदक सहित कुल 133 पदक दिलाए थे और ये संख्या इन खेलों में भी बढ़ती ही जा रही है। और कल से ही आरंभ हो गई वो स्पर्धाएं जो किसी भी मल्टी डिसिप्लिनरी खेल उत्सव की सबसे रंगारंग, सबसे ग्लैमरस और सबसे रोमांचक स्पर्धाएं होती हैं। एथलेटिक्स खेलों की रानी कहते हैं इसे, और जिस तरह से भारत एथलेटिक्स की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, उम्मीदें भी जवान होती ही जा रही हैं। कल किन भारतीय पंखों को परवाज मिली, कौन बिजली की तरह कौंधे, कौन उम्मीदों के बोझ में दब गए, कहां मायूसी मिली और कहां अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का संतोष भले ही पदक में न बदला हो। तो आइए शुरुआत करते हैं 5वें दिन का पूरा लेखा जोखा।
0: कॉमनवेल्थ खेलों का 5वां दिन भी भारतीय महिला वेटलिफ्टर्स के नाम रहा, जहां ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं को 53 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक दिलवाया। ज्ञानेश्वरी यादव ने 88 किलोग्राम स्नैच और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। ज्ञानेश्वरी का मुकाबला नाइजीरिया की दिग्गज खिलाड़ी ओनेमो ओमुलोला डिडेही के साथ था, जिन्होंने 206 किलोग्राम का कुल वजन उठाकर रिकॉर्ड स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 22 वर्षीय ज्ञानेश्वरी ने शारीरिक दर्द से जूझते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने अंतिम और तीसरे प्रयास में 111 किलोग्राम वजन उठाकर पोडियम पर दूसरा स्थान पक्का किया।
2: मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं। मैंने ट्राई किया था कि मैं गोल्ड लेके आऊं इंडिया के लिए, पर आगे कॉम्पिटिटर भी बहुत ज्यादा टफ था, पर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके सिल्वर मेडल लिया, मैं इसमें बहुत खुश हूँ।
0: उनकी इस जीत पर छत्तीसगढ़ वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजेश झंगिया जी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा,
3: बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती है ज्ञानेश्वरी यादव, जो उनके पापा जो हैं दीपक यादव जी एक प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन है, हमारे आदरणीय सर थे, उन्होंने कुछ अपना फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करते करते उनको उसी योगदान देते हुए इस मुकाम पे पहुंचाया। पहले छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया, फिर नेशनल में, आज वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो पार्टिसिपेट करे उसका पूरा श्रेय वहाँ के लोगों का और हमारे बड़ों का आशीर्वाद से वो आज इस रिजल्ट पहुँचाई है सर।
0: वेट लिफ्टिंग में पदकों का सिलसिला यही नहीं रुका। ज्ञानेश्वरी यादव के बाद बारी आई बिंदिया रानी देवी की, जिन्होंने महिलाओं के 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। बिंदिया रानी ने कुल 199 किलो वजन उठाकर भारत को इन खेलों का 6ठा पदक दिलवाया। बिंदिया ने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक पक्का कर लिया। इस स्पर्धा में नाइजीरिया की राफियातू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मणिपुर की रहने वाली बिंदिया रानी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा पदक जीता है। हालांकि पिछले खेलों की तुलना में इस बार उन्होंने 55 किलोग्राम से बढ़कर 58 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश की थी, जो कि शारीरिक और तकनीकी रूप से एक बड़ा बदलाव था। देर रात हुए मेंस 79 kg में भारत के वल्लूरी अजय बाबू ने केवल वजन ही नहीं उठाया, बल्कि पूरे भारतवासियों की आशाओं और जिम्मेदारियों का भार भी अपने कंधों पर संभाल कर रखा। वल्लूरी अजय बाबू ने स्नैच में 149 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 181 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 330 kg वजन के साथ पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया। अजय बाबू ने गोल्ड मेडल से सिर्फ 1 किलोग्राम वजन से चूक जाने के बावजूद स्नैच में 149 किलोग्राम का गेम्स रिकॉर्ड बनाकर सिल्वर मेडल हासिल किया।
1: स्पर्धाओं की रानी क्वीन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स की शुरुआत कल हो गई। भारतीय दल में सबसे ज्यादा ट्रैक और फील्ड के एथलीट ही हैं, 22 पुरुष और 10 महिलाएं, कुल मिलाकर 32 एथलीट। विश्व प्रसिद्ध और भारत की आंख के तारे स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, उनके साथी रोहित यादव, तेजेंद्र पाल सिंह तूर, तेजस्विन शंकर, मुरली श्री शंकर, सर्वेश कुसारे जैसे सितारों से सजा हुआ दल, कल पहला दिन था और बहुत ही शानदार शुरुआत हुई, क्योंकि भारोत्तोलन के सिवा अगर कोई और पदक आया। वो आया एथलेटिक्स में। सर्वेश कुसरे ने ऊंची कूद में रजत पदक कमाया। वो तो बस थोड़ा सा किस्मत उनकी खराब थी या किस्मत का फेर था कि वे स्वर्ण पदक नहीं पा सके। तकनीक

0: के कारण की वजह से, क्योंकि उन्होंने अधिक अटेम्प्ट लिए थे उस ऊंचाई को पार करने में। बहुत कमाल की ऊंची कूद फांदी कल उन्होंने। पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के तीन तीन एथलीट थे, आदर्श राम ज्योति शंकर, सर्वेश कुसरे जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 2.30 मीटर तक पार किया है, दुनिया में नंबर 4 के स्थान पर पहुंच चुके हैं, और तीसरे भारतीय थे तेजस्विन शंकर, मशहूर डेकाथलीट और हाई जंपर। लेकिन तेजस्विन फील्ड में नहीं उतरे, रिटायर्ड हो गए क्योंकि उनको चोट लग गई थी। आदर्श और सर्वेश दोनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी शुरुआत की और 2.1 मीटर की ऊंचाई तक दोनों ही लोग पदक की होड़ में बने हुए थे और पहले 5 स्थानों में थे। सर्वेश तो आगे बढ़ते चले गए और पहुंच गए टॉप 3 के मुकाबले में, और उसमें भी जब किमानी जैक बाहर हो गए इंग्लैंड के, तो वो 2.25 मीटर की जब ऊंचाई पर बार सेट किया गया तो उन्होंने उसको भी तीसरे प्रयास में पार कर लिया। इसके बाद 2.28 सर्वेश और जमैका के रोमेश बेकफोर्ड दोनों ही पार नहीं कर पाए, यानी 2.25 मीटर पर बराबर रहे। लेकिन चूंकि अधिक प्रयास लगाने पड़े थे सर्वेश को, अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने पार किया था, इसके चलते उनको मिला रजत पदक और स्वर्ण पदक गया जमैका के पास। जब दिन की शुरुआत हुई तो जो पहली स्पर्धा थी वही किसी झटके से कम नहीं थे। भारत के गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर की हीट्स में उतरे। 100 मीटर सबसे आकर्षक स्पर्धा होती है जो खेलों के सबसे तेज धावक का निर्णय करती है। एथलीट्स का हुजूम था, 11 हीट्स, 88 प्रतियोगी। हीट नंबर 4 में गुरिंदर, और गुरिंदर भारत के सबसे तेज धावक हैं इस समय। अपनी हीट में गुरिंदर जमैका के रोहन वॉटसन के पीछे रहे, दूसरे स्थान पर आए, लेकिन जब पूरा देखा गया मिलाकर तो वो आए 20वें स्थान पर, जबकि क्वालिफाई किया 17 लोगों ने। फिर आया समय मुरली श्रीशंकर का, जो निसंदेह देश के सबसे अच्छे लॉन्ग जंपर है। उन्होंने उम्मीदें जवान रखी इस देश के खेल प्रेमियों की। अपने पहले प्रयास में ही क्वालिफिकेशन मार्क 8 मीटर पार कर लिया, 8.01 मीटर की दूरी फलांग कर। मुरली अब पदक की दूरी लांघने के लिए उतरेंगे कल रात, और भारत के लिए बहुत बड़ी उम्मीद होंगे।
1: Hopefully I have to redeem my silver medals from last Commonwealth Games recently.
0: लॉन्ग जंप में ही भारत के एक और एथलीट थे लोकेश सत्यनाथन, वो बहुत रंग में नहीं दिखे इस सीजन में। अपना सर्वश्रेष्ठ 8.21 मीटर निकालने वाले लोकेश 7.77 मीटर ही कूद सके।
2: I finished fourth in my group and it was a big, two big jumps in the last and it was a scratch. But you know, bigger things is coming on Wednesday, so stay tuned.
0: पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स के सुबह हुए राउंड 1 के मुकाबले में हीट 1 में तेजस अशोक शिरसे ने क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन देर रात हुए फाइनल मुकाबले में वो सबसे पीछे स्थान पर आ पाए।
3: एथलेटिक्स के बाद बात करते हैं पैरा एथलेटिक्स की, जहां कल का दिन रहा भारतीय महिला खिलाड़ियों के नाम। एक ही गेम, एक ही कैटेगरी, और वो पल जिसमें 2 स्थान आए भारतीय महिलाओं के नाम। जी हां, भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को इस संस्करण का दूसरा गोल्ड मेडल दिलवा दिया। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा ने 7.26 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ पर्सनल बेस्ट थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरा एथलेटिक्स में ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के राकेश भाई भट्ट ने पुरुषों की 100 मीटर T38 फाइनल स्पर्धा में 11.82 सेकंड का समय निकालते हुए 5वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रेयांश त्रिवेदी ने 12.22 सेकंड के समय के साथ 6ठे स्थान पर अपनी दौड़ समाप्त की।
0: इस बार भी मुक्केबाजों ने उम्मीदों को भरपूर हवा दे रखी है। अब तक जितने भी बॉक्सर जितनी बार रिंग में उतरे हैं, 2 बार के सिवाय, रेफरी ने हर बार उनका हाथ ऊंचा ही उठाया है। लेकिन एक बार जब ऊंचा नहीं उठा वो कल भी था। कल 4 भार वर्गों में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले थे और 3 भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले जीत कर पदक पक्का करने से बस 1 बाउट दूर ही रह गए हैं। सबसे पहले रेड कॉर्नर में सचिन सिवाच ने तीसरे राउंड में बेहतरीन मुक्केबाजी कर अंकों के आधार पर 4-1 से इंग्लैंड के विलियम हेविट को परास्त किया।
4: Ladies and gentlemen, we have a split decision. The winner in the red corner,
5: Sachin Sivach. तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारी उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। गोल्डिया ने,
0: और इसके बाद 80 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में अंकुश ने जबरदस्त पंचेस और जैब्स के साथ साथ बेहतरीन रक्षण कर

0: करते हुए 5-0 के एक मत से फाइट अपने पक्ष में कर ली।
1: Unanimous decision, the winner in the red corner from India.
0: दिन की एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज साक्षी भला क्यों पीछे रहती महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में। पूरी चपलता के साथ रिंग को कवर करते हुए मुक्कों की बौछार कर दी उन्होंने और बोत्सवाना की लियाबो मुडुकांडे को उनको बिल्कुल बेबस कर दिया। 5-0 से सर्वसम्मति के साथ निर्णय उनके पक्ष में रहा और साक्षी अब पदक की साक्षी बनने के बहुत नजदीक पहुंच गई हैं।
2: मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और मैं उम्मीद करती हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत।
0: दिन की अंतिम बाउट थी 70 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित की नॉर्दर्न आयरलैंड के जॉन मैकेलेन के साथ और सुमित ये मुकाबला अंकों के आधार पर हार बैठे।
3: चलिए अब आपको लिए चलते हैं फुर्ती और फ्लेक्सिबिलिटी के खेल जिम्नास्टिक में, जहां आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में महिला वर्ल्ड फाइनल में प्रतिष्ठा सामंता 7वें स्थान पर रही।
0: तैराकी में राष्ट्रमंडल खेलों में स्पर्धा खासी तगड़ी होती है। ऑस्ट्रेलिया तो हावी रहता ही है, लेकिन कनाडा, इंग्लैंड आदि भी बहुत कड़ी चुनौती पेश करते हैं। भारत के पुराने सीजन्ड पुरोधा साजन प्रकाश कल तरणताल में उतरे। 200 मीटर बटरफ्लाई में उन्होंने क्वालिफाई किया और तीनों हीट्स में कुल मिलाकर वे 6ठे स्थान पर रहे और फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल बहुत देर रात 2 बजे हुआ। वहां पर साजन प्रकाश अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल रहे और पदक की होड़ से बाहर हो गए।
3: आइए अब जानें पैरा स्विमिंग में भारत का हाल। देर रात हुए फाइनल में स्वातिक पाटिल ने 5वां स्थान हासिल किया। स्वातिक ने फाइनल में 1:15.82 का समय निकाला। इस कैटेगरी में स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया, रजत न्यूजीलैंड और ब्रॉन्ज भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की झोली में गया। कर्नाटक के रहने वाले स्वातिक ने इस बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहद कड़ा मुकाबला पेश किया। हालांकि वो पदक तालिका में स्थान बनाने से चूक गए, लेकिन 5वें स्थान पर फिनिश उनके खेल के कौशल को दर्शा गया।
4: Involves India's Putul Sonowal's Commonwealth Games 2026 campaign comes to an end after a loss against Kenya's Anwar Hamada. Despite a determined effort, Putul went down 0.5 to 1.5. He trailed 6-8 in his first set and in second set, he regained his composure and bounced back with good throws and leveled second set 5-5. But it was not too little and too late, and he missed out on a place in the semi-finals. The Indian bowler finished with 2 wins and 3 losses, defeating Canada and Falkland Islands while losing to Malaysia, Malta and Kenya during his campaign. He finished 5th in his section and could not qualify for the semi-finals.
3: अब बात आती है 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल की, जहां भारतीय महिला टीम रीना, लक्ष्मी, मीनाक्षी, रितु पूल बी के 3rd मैच में नाइजीरिया से 6-7 से हारकर बाहर हो गई।
0: और आइए अब एक संक्षिप्त निगाह डालते हैं आज होने वाली स्पर्धाओं में। वेटलिफ्टिंग, जिसमें अब तक बहुत पदक आए हैं, उसमें 63 किलोग्राम भार वर्ग में निरुपमा सिराम और 69 किलोग्राम में हरजिंदर कौर अपने बाजुओं का दम आजमाएंगी। एथलेटिक्स में 400 मीटर की स्पर्धा है पुरुषों की, महिलाओं में ऊंची कूद में पूजा होंगी, 10,000 मीटर में कुलवीर सिंह होंगे। बॉक्सिंग में 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति, 60 किलो में प्रिया, 65 किलोग्राम में परवीन और पुरुषों में जादूमणि सिंह, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया, ये सब आजमाएंगे अपने मुक्कों की ताकत।
3: राष्ट्रमंडल खेलों की इस अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। तब तक के लिए संपादक स्वाति कपूर, प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं कविता शर्मा अपने सहयोगी अनुपम पाठक के साथ लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।
0: The Commonwealth Games.

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और रवि।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन, राग है अहिर भैरव।

अभी आप सुन रहे थे विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन, राग था अहिर भैरव। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे पूरन कुमार मिश्र, हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं?

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
2: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

0: पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्लेबुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा,

0: दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
2: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाऊंगी।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under

बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का अहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखा

0: मुल्क और बैरून बैनुल अक्वामी नेटवर्क को बरूए कार लाना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शेखावत ने कहा कि इस साझेदारी से अहमियत की हामिल बैनुल अक्वामी मार्केट्स में भारत की मौजूदगी को मुस्तहकम बनाने के लिए भारत की मुतनव्वे सियाहती सलाहियत उजागर हो सकेगी। सरकार ने खिलौनों के शोबे को तकवियत पहुंचाने और खिलौनों की आलमी मार्केट में 2032 तक भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने में मुआवनत के लिए एक टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में सनत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे के जेर एहतमाम खिलौनों के शोबे के बारे में एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने कहा है कि ये टास्क फोर्स आलमी वैल्यू चेन के साथ मुल्क की खिलौनों की सनत को मरबूत करने, मैनुफैक्चरिंग सलाहियत को मुस्तहकम बनाने और कारोबार करने में सहूलत पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। इस मौके पर जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की खिलौनों की सनत की तरक्की से विकसित भारत के मकसद की समत मुल्क की पेशरफ की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बीजिंग में चीन के नायब वजीर खारजा हुआ चुनयांग से मुलाकात की और बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। जनाब मिश्री ने इस नज़रिए को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी तबादले ख्याल किया कि भारत और चीन साझेदार हैं और तजारती और इकतसादी रबतों में बाहमी तौर पर मुफीद नतीजों के जरिए एक दूसरे के लिए मौके दस्तियाब करा सकते हैं। चीन में भारतीय सफारतखाने के मुताबिक दोनों अहदेदारों ने भारत चीन सरहदी इलाकों में अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत को तस्लीम किया। इससे कबल जनाब मिश्री ने बीजिंग में चीन की पीपल्स सियासी सलाहकार कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होंग लियांग के साथ अपनी मीटिंग के दौरान सियासी और अवाम से अवाम के रबतों की सतह पर भारत और चीन के दरमियान बाहमी तबादलों को वसत देने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग में चीन में भारत के सफीर विक्रम दुराय स्वामी भी मौजूद थे। उत्तराखंड में मौसमियात के महकमे ने आज रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर वार्निंग जारी की है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि रियासत में कई मकामात पर कल रात से लगातार बारिश होने की वजह से सड़क रास्ता बंद हो गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उत्तराखंड में देहरादून और कई दीगर हिस्सों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज आज बंद हैं। लगातार बारिश होने से पहाड़ी खित्तों में दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। देही इलाकों में तकरीबन 50 सड़कों का रास्ता बंद है और बहाली का काम जारी है। अलबत्ता चार धाम यात्रा का रास्ता फिलहाल खुला है और इंतजामिया सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत में अगले चंद रोज तक मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। बेशतर इलाकों में हल्की से लेकर औसत बारिश होने जबकि कई मकामात पर तेज बारिश होने की भी पेशगोई की है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बनी नौ इंसान की बहबूद फितरत को महफूज रखने और इसका ख्याल रखने में पिन्हा है। एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की रिवायत भी सभी को इंसाफ के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने आज पेरू के यौम आज़ादी के मौके पर वहां की हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत पेरू के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। वजारत खारजा ने एक तजारती जहाज MV ओमोरफी पर हमले के बाद कल भारत में यूक्रेन के सफीर डॉक्टर अलेक्जेंडर पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया। इस वाकये पर उन्हें अपनी शदीद तशवीश से आगाह करते हुए वजारत ने तजारती जहाजों पर इस तरह के हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो में 9.81 मीटर की सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ खवातीन शॉर्ट पुटर F57 मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इस कामयाबी के साथ ही शर्मिला दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली पैरा एथलीट बन गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दौलत मुश्तरका खेलों के दौरान शर्मिला धनखड़ के सोने का तमगा

0: जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की तरफ से पैरा एथलीट्स में पहली बार सोने का तमगा हासिल करके शर्मिला ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। नौजवानों की उम्र और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शर्मिला धनखड़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनके जज्बे ने आलमी सतह पर पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। स्कॉटस्टोन स्टेडियम में भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने भी मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। सदर जमहूरिया ने मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने पर सर्वेश कुशारे को भी मुबारकबाद पेश की है। खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सर्वेश को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी शानदार कारकर्दगी ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। इसके अलावा वेट लिफ्टर वलूरिया अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी का एक एक तमगा जीता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मर्दों के वेट लिफ्टिंग में 79 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल करने पर वलूरी अजय बाबू के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। खवातीन के शॉर्टपुट F57 मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर शिल्पा के शैला को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उनका अज्म और मुसलसल कोशिश करते रहने का जज्बा सभी को तरगीब देता है। मर्दों की 16वीं हॉकी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 आज सुबह तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में शुरू हो रही है। इस टूर्नामेंट में मुल्क की मर्दों की बेहतरीन हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी जो 12 दिन यानी 8 अगस्त तक मुकाबला करेंगे जिसमें कौमी चैंपियन का फैसला होगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिवीजन सी के पूल ए मैच में आसाम और मिजोरम के दरमियान मुकाबले से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया गोनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब की 6 सुर्खी है, पेपर लीक के खिलाफ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। अखबार प्रताप लिखता है, इंजीनियरिंग मसनूआत की बरामदात में 21% इजाफा, 5 गुना से ज्यादा की छलांग। अखबार ने तजारती जहाज पर हमले में एक भारतीय मल्लाह की मौत के वाक़े पर एहतजाज दर्ज कराने के लिए यूक्रेन के सफीर को तलब किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता के हाथों त्यागराज स्टेडियम में 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किए जाने की खबर को भी नुमाया किया है। अखबार इनकलाब ने ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामेनाई के इस बयान को अहमियत दी है कि अमन मुआहदा लबनान पर इसराइली हमलों के खात्मे से मशरूत। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह है, गिरफ्तारी के वारंट के बावजूद नेतन्याहू अमरीका रवाना।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निज़ाम की सताइश की है। वजीर आजम ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का एहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424। 42
3: ओ 8700001

0: 2 4 2। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001 4242 पर।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सभी श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की, जो प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि प्रकृति की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से बचाया जा सके। यह इस बात को स्वीकार करता है कि स्वस्थ पर्यावरण एक स्थिर और स्वस्थ समाज की नींव है। प्रकृति हमारे आसपास की हर वो चीज़ है जो हमें जीने में मदद करती है और दुनिया को सुंदर बनाती है। इसमें वो हवा शामिल है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो पानी हम जिसे पीते हैं, पेड़, जानवर, पहाड़ और नदियाँ। प्रकृति एक माँ के समान है, क्योंकि यह हमें भोजन, ताज़ी हवा और आश्रय देती है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना, वनों व वन्य जीवों की रक्षा करना और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह पृथ्वी को स्वस्थ रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाने का संदेश देती है। श्रोताओं, प्रकृति संरक्षण वर्ष 2026 की थीम है पुनर्स्थापना, लचीलापन और जिम्मेदारी। आइए सुनते हैं ये गीत, उसके बाद लौटते हैं अपने कार्यक्रम में।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की। आज के समय में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, वनों की कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, अनेक आपदाएं बढ़ रही हैं। यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य की पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। प्रकृति को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, जल और ईंधन की बचत करनी होगी, प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, कपड़े या जूट के थैलों का प्रयोग करें, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाएं, प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझ कर उपयोग करें। प्रकृति संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि प्रकृति बचाएं, पृथ्वी को बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित, स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बनाएं।

श्रोताओं, आपको बता दें, आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लीवर की सूजन यानी वायरल हेपेटाइटिस के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना है और इसकी रोकथाम व इलाज को बढ़ावा देना है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर वारुल सैमुअल ब्लमबर्ग के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसका पहला टीका बनाया था। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए साफ पानी पिएं, स्वच्छ भोजन का सेवन करें, हेपेटाइटिस ए और बी का टीका लगवाएं तथा सुरक्षित सुइयों और रक्त का उपयोग करें। जब भी हॉस्पिटल या कहीं बाहर से वापस आएं तो बिना हाथ धोए कोई भी चीज़ को टच नहीं करें, कोई चीज़ खाएं नहीं, अपने फेस को भी बिना हाथ धोए ना टच करिए।

श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। तो आपसे कल मिलेंगे नए विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए कार्यक्रम को समाप्त करने की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने और रचना है कतिल शेफाई की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और लीजिए अब सुनिए बागी फिल्म का ये गीत। अभिजीत की आवाज़ में संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और रचना है समीर की।

अभी आपने सुना बागी फिल्म का ये गीत, आवाज़ थी अभिजीत की। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम होगा बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संभल और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण कुमार का।
2: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले दिनों वाराणसी में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ पर हुए समारोह का कलेक्ट्रेट सभागार भैजुई में सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह एवं जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा जनपद के माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 तथा बेसिक शिक्षा विभाग के 10 शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा

0: योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य किए जाने संबंधी प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही योजना के अंतर्गत शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षक राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं, इसलिए राज्य सरकार उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से लाखों शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षक, विद्यालयों में कार्यरत रसोइये तथा उनके आश्रित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश एवं प्रदेश के लिए विकास का स्वर्णिम काल है। प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने शिक्षकों को आह्वान किया कि वे समय से विद्यालय पहुंचें, विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण, तकनीकी संपन्न, संस्कार युक्त एवं राष्ट्र भावना से ओतप्रोत शिक्षा प्रदान करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संभल में संभव अभियान 6 के अंतर्गत जुलाई से सितम्बर 2026 तक संचालित होने वाले 3 माह के विशेष अभियान के तहत जनपद संभल में जून 2026 के वजन एवं लंबाई मापन के आधार पर चिन्हित 172 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने हेतु जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा सभी चिन्हित बच्चों को विभागीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को गोद सौंपा गया। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए अभियान के प्रभारी संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी प्रतिमाह कम से कम 2 बार अपने आवंटित SAM बच्चे के घर भ्रमण करेंगे तथा परिवार को कुपोषण, वृद्धि रुकावट, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, खानपान की आदतों में सुधार, बच्चों की विशेष देखभाल तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री से पौष्टिक व्यंजन तैयार करने के संबंध में जागरूक करेंगे। बच्चों का नियमित वृद्धि मापन कराया जाए, शासन द्वारा संचालित पोषण संबंधी योजनाओं एवं सुविधाओं का 100% लाभ दिलाया जाए तथा आवश्यकता अनुसार बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने की कार्रवाई प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा जॉब कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं ताकि परिवारों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ हो सके। अभियान के अंतर्गत जिन सेम बच्चों के परिवार मछली का सेवन करते हैं उन्हें 0.2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले तालाबों से उपलब्ध मछली का लाभ दिलाया जाएगा जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन उपलब्ध हो सके। वहीं जिन परिवारों में मछली का सेवन नहीं किया जाता उन्हें पोषण पोटली उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जुलाई से सितंबर 2026 तक संचालित संभव अभियान 6 के दौरान प्रत्येक स्थिति में सभी 172 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। साथ ही उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को अभियान की नियमित समीक्षा एवं प्रभारी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए। आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के बैठकों का आयोजन किया गया। भैरोई कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में किया गया जिसमें सभी धर्म के धर्म गुरुओं एवं मंदिर के पुजारियों तथा सम्मानित व्यक्तियों को बुलाकर वार्ता की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद के प्रमुख मंदिरों को लेकर चर्चा की गई। मंदिरों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पेयजल की व्यवस्था, हैंडपंप में पीने के पानी की स्थिति, मंदिरों एवं मंदिरों को आने वाले मार्गों तथा प्रमुख मार्गों पर साफ सफाई की स्थिति को लेकर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि हैंडपंप के पास जल भराव न हो, सोक पिट की व्यवस्था की जाए तथा मंदिरों के पास प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहे। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने कांवड़ यात्रा की तैयारी के बारे में बताते हुए कहा कि
1: पेयजल को लेकर के, सड़क मरम्मत को लेकर के, मोबाइल टॉयलेट जहाँ जहाँ आवश्यकता है वो लगाने को लेकर के, कांवड़ शिविरों को लेकर के इसी प्रकार की मीटिंगें थाना, सर्कल, तहसील स्तर पर भी संचालित की जा रही है। अधिकांश मीटिंगें हो चुकी है। जो भी समुचित व्यवस्थाएं पिछले साल प्रबंध कराए गए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए इन सभी प्रबंधों को कराया जा रहा है।
2: संभल जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सभा का।
3: उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति लखनऊ के निर्देश में जनपद मिर्जापुर में युवाओं को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए आगामी 30 जुलाई को 5 किलोमीटर की एक रेड एंड मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जो कि PFE गेट बरौंधा से शुरू होकर RTO ऑफिस होते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय परिसर के फुटबॉल स्टेडियम में 2 बार चक्कर लगाने के पश्चात समाप्त होगी। विजेताओं को नगद धनराशि के साथ साथ स्टेट तथा नेशनल लेवल रेड एंड मैराथन में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होगा। सभी 17 वर्ष से 25 वर्ष के युवाओं से दिए गए ऑनलाइन लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके 30 जुलाई 2026 को प्रातः 7 बजे से प्रतियोगिता में भाग लिया जा सकता है। मिर्ज़ापुर में किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक

0: पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं और अनुदान का लाभ उठाकर मिर्जापुर के किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली इस फसल ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला उद्यान अधिकारी मेवा राम ने बताया कि जनपद मिर्जापुर में वर्तमान समय में 190 किसान 100 एकड़ से अधिक भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वर्ष 2026-27 में स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा बढ़ाकर 150 एकड़ करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि किसानों को इस फसल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 90,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों पर शुरुआती लागत का बोझ कम हो रहा है और अधिक से अधिक किसान बागवानी फसलों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने के वाले किसान एक फसल के प्रति एकड़ 12 से 14 लाख की आय अर्जित कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती से न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। फसल की तुलाई, पैकिंग और विपणन कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल स्थित माँ विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर्यटकों और दर्शनार्थियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। धाम में बढ़ती सुविधाओं के साथ त्रिकोण पथ पर स्थित प्रमुख मंदिरों के विकास की रूपरेखा बन रही है। गत दिवस केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी जिले में पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यों को गिनाया और कहा कि आज जहां मिडिल ईस्ट के देश युद्ध के चपेट में है, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। और बता रहे हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी,
1: देश के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, जिसका नतीजा है किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।
0: मिर्जापुर में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देशन और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व के विनोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद की बाढ़ से प्रति संवेदनशील तहसील सदर एवं चुनार में क्रमशः SDRF एवं PAF की तैनाती कराई गई है। विगत वर्षों में बाढ़ के आंकड़े के अनुसार जनपद में कुल 404 ग्राम, सदर के 220 ग्राम और चुनार के 184 ग्राम बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं। जनपद की तहसील चुनार में तैनात PAF के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गत दिनों तहसील प्रशासन एवं उपजिलाधिकारी चुनार की उपस्थिति में बालूघाट चुनार पर राहत एवं बचाव के दृष्टिगत मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें उन्होंने उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग परीक्षण किया और रेस्क्यू के तकनीकी पर अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल में जनपद के आपदा मित्रों ने भी प्रतिभाग किया और पूर्ण रूप से मॉक एक्सरसाइज को सफल बनाने में हर संभव सहयोग किया। जनपद न्यायालय मिर्जापुर में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिर्जापुर के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर मिर्जापुर, बाह्य न्यायालय चुनार, ग्राम न्यायालय मढ़ियान एवं राजस्व विभाग में संबंधित 12 सितंबर को पूर्वाहन 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल में अभी आपने सुनी संभल और मिर्जापुर जिलों की खबरें।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप देशकान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

हासिल की जो शायद ही किसी को नसीब हो। हालांकि हिंदी और उर्दू दोनों ही यकसा जुबानें हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में जो आज उसकी मकबूलियत है बॉलीवुड की, तो उसमें हम ये देखते हैं उर्दू के लिखे हुए नगमे या उर्दू की लिखी हुई कहानियाँ काफ़ी मकबूल हैं, जिसकी वजह इसकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, वो अल्फाज जो लोगों को अपना शहदाई बनाए हुए हैं। समीन जिन्हें तैयार करने में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मेहनत है उन कलमकारों की, जिनकी फहरिस्त अनगिनत है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो वाकई अपनी मिसाल आप हैं, जैसे हसरत हैं, फ़ानी हैं, शकील हैं और कैफ़ी आज़मी, जावेद अख्तर, गुलजार। ये ऐसे नाम हैं जिन्हें हर आम और ख़ास बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसकी मकबूलियत में बहुत बड़ी जद्दोजहद रही। समीन, आज बॉलीवुड की जो कामयाबी है उसमें उर्दू ज़ुबान का जो हाथ है वो बहुत बड़ा रहा और इसको सभी तस्लीम करते हैं। इन आज के इस प्रोग्राम में हमने इस ख़ास मौजू को ही शामिल किया है अपनी इस तकरीर में।

0: जिन्हें हर आम और ख़ास बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसकी मकबूलियत में बहुत बड़ी जद्दोजहद रही। समीन, आज बॉलीवुड की जो कामयाबी है उसमें उर्दू ज़ुबान का जो हाथ है वो बहुत बड़ा रहा और इसको सभी तस्लीम करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने इस ख़ास मौजू को ही शामिल किया है अपनी इस तकरीर में, जिसका उन्वान है उर्दू और बॉलीवुड, फ़ायदे और नुकसानात। समात करते हैं ये तकरीर, मुकर्रर हैं डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब।
1: हिंदी उर्दू फिल्मी सनत को बॉलीवुड कहा जाता है। इब्तिदा से ही बॉलीवुड और उर्दू का रिश्ता जिस्म और रूह जैसा रहा है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बाद से ही हिंदुस्तानी फिल्मों में उर्दू का दबदबा कायम रहा। फिल्मों की कहानियाँ और मुकालमे ज़्यादातर उर्दू के मुसन्निफीन के ही मरहूने मिन्नत होते थे। उर्दू की गज़लें और नज़में फिल्मों की जान हुआ करती थीं। हिंदुस्तानी फिल्मों का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार उर्दू के मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी को मिला था। इसके अलावा बेशतर अदाकार और अदाकाराओं की ज़बान भी उर्दू ही हुआ करती थी और इसमें किसी मजहब व मिल्लत का कोई दखल नहीं होता था। मशहूर फिल्म साज महबूब ख़ान अपनी फिल्म का आगाज़ उर्दू के किसी न किसी शेर से ही किया करते थे, जैसे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शहीर मछली शहरी का शेर, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिगर मुरादाबादी का शेर, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। अल्लामा इकबाल का शेर, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 1960 तक की फिल्मों में अदबियत बहुत ज़्यादा थी। फिल्मों की कहानियाँ और नगमे लिखने के लिए उन्हीं कलमकारों से काम लिया जाता था जो बुनियादी तौर पर उर्दू के मुसन्निफ थे। आजकल के आम फिल्म बी को तो उनके मुकालमों को समझने में भी दिक्कत पेश आ सकती है, जैसे कि लाल किला फिल्म में बहादुर शाह जफर की मशहूर गज़ल है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। उर्दू की शेरीनी और जाज़बियत ने यहाँ के फिल्म शायकीन को इतना मशहूर कर दिया था कि सैकड़ों बरस बाद भी मीर की गज़ल बाजार फिल्म का शाहकार बन जाती है और लता मंगेशकर की आवाज़ ने उसमें ऐसी कशिश पैदा कर दी है कि जो लोग अशार का मफहूम भी नहीं समझते वो भी इस गज़ल के अशार को गुनगुनाते हैं। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। लाल किला मिर्ज़ा गालिब जहाँ आरा गज़ल हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की पुरानी यादगार फिल्में हैं। इसके बाद के दौर में मेरे महबूब, मेरे हुजूर, पालकी, उमराव जान, रज़िया सुल्तान, निकाह और तवाइफ उनके बाद आने वाली फिल्में हैं जो उर्दू तहजीब की नुमाइंदगी करती हैं। मेरे महबूब में अपने महबूब की खूबियाँ बयान करते हुए फिल्म की हीरोइन जलील मानकपुरी का शेर पढ़ती है, निगाह बर्क नहीं चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। फिल्मों का जिक्र हो और मुगले आज़म की बात ना की जाए ये तो नामुमकिन है, चूँकि उर्दू में तकरीबन 30% अल्फाज तो फ़ारसी के ही हैं, लिहाजा कहीं कहीं फ़ारसी अशार भी पढ़े गए हैं, जैसे मुगले आज़म में जब सलीम और अनारकली की मोहब्बत का राज फाश होता है तो वो खौफज़दा होकर मसनवी मौलाना रूम का एक शेर पढ़ती है कि दिल मीर अवध ज दस्तम साहिब दिला खुदारा, दर्दा के राज इश्कम ख्वाहश शुद आशकारा। मोहब्बत की खातिर बात जब जंग तक पहुंच जाती है तो शहजादा सलीम जिगर मुरादाबादी का शेर पढ़ते हैं कि मोहब्बत सुलह भी पैकार भी है, ये शाख़ गुल भी है।

0: तलवार भी है। फिल्म दीदार का एक नगमा है, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद, जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे। इसकी इब्तिदा मुश्तक खैराबादी के एक शेर से होती है कि असीरे पंजे अहदे शबाब करके मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। फिल्म गाइड में देवानंद अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत से अशआर हसब मौका फिल्मों में पढ़े जाते थे और फिल्म शायकीन उनका लुत्फ़ लिया करते थे। सबका जिक्र एक मुख्तसर मकाले में करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ फिल्मसाज कहते हैं कि अब देखने वालों का ज़ौक भी बदल गया है और वो जो देखना चाहते हैं वही दिखाया जा रहा है। जाहिर है कि उनको तो कारोबार करना है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आज भी अगर किसी फिल्म में उर्दू की गज़लें आ जाती हैं तो लोग उनको खूब पसंद करते हैं। जो शीरीनी और लज्जत उर्दू में है वो किसी और ज़बान में कहाँ। ये उर्दू का जादू ही है जो हर एक के सर चढ़कर बोलता है। जिहाले मस्ती मकुन बरंजिश, बहाले हिजरां बेचारा दिल है, समझ में आए या ना आए मगर अच्छा सबको लगता है। इन हालात में हिंदी के शायरों ने भी उर्दू की तर्ज को अपनाया और हिंदी में भी गज़ल के अंदाज में अशआर कह दिए। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। लता मंगेशकर ने तो तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने के लिए उर्दू की तालीम मौलवी अब्दुल समद से हासिल की थी। इसी वजह से लता जी की अल्फाज की अदायगी में कहीं कोई लग्जिश नहीं पाई जाती। और बात की जाए अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की, तो अगर कोई नगमा उनको किसी और ज़बान में भी लिख कर दिया जाता था तो वो इसको पहले उर्दू में लिखवाते थे, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करवाते थे। अभी आने वाली 31 जुलाई को उनका यौम वफात है। उनकी शख्सियत का हर पहलू एक दरख्शां बाब है। उनको आवाज़ का फरिश्ता कहा जाता है और यकीनन ये तो सारी दुनिया इतराफ़ करती है कि उनके दुनिया से जाने के बाद भी 46 साल में भी उनका कोई सानी पैदा नहीं हुआ। किसी ने कहा है कि न फनकार तुझ सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। मजरू सुल्तानपुरी के अलावा शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, असद भोपाली, कैफ़ी आज़मी, राजेंद्र कृष्ण, गुलजार, राजा मेहदी अली ख़ान उर्दू के ऐसे नगमा निगार हैं कि हिंदुस्तान की फिल्मी सनत में उनमें से एक का भी कोई सानी पेश नहीं कर सकती। इसी के साथ एक बात और अर्ज़ करता चलूं कि उर्दू एक ज़बान ही नहीं, एक तहजीब है। ये सिर्फ एक कहावत ही नहीं, इसका जीता जागता सबूत भी बॉलीवुड की फिल्में ही पेश करती हैं। जिन फिल्मों में उर्दू का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है उसी हद तक उनमें सलीका और शऊर भी है, हया का मुजाहरा भी है। और ये तो सब जानते हैं कि उर्दू के बग़ैर तलफ़्फ़ुज़ तो दुरुस्त हो ही नहीं सकता। 90 की दहाई के बाद फिल्मों में उर्दू का इस्तेमाल कम होने का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला ताहनूज़ जारी है। उर्दू से नावाकिफ़ लोग इस सनत में आते रहे, अंग्रेज़ी के इस्तेमाल में इजाफा होता रहा, साथ ही लिबास और वज़ाकता में भी तब्दीली आती रही। और अब ये बात बड़े वज़ूक़ के साथ कही जा सकती है, एक अरसे से जिनकी बालादस्ती फिल्मी सनत पर जारी है, ये उनके पस मंज़र का असर हो सकता है। आवाम में भी उर्दू के तई दिलचस्पी में कमी आई है और फिल्मों में उर्दू का इस्तेमाल कम होने से ज़बान की शीरीनी और लज्जत जाती रही। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड का सिर्फ जिस्म रह गया, उर्दू जो उसकी रूह हुआ करती थी निकल चुकी है। नतीजतन मगरबी तहजीब दर आई जो हिंदुस्तानी माशरे को मसमूम कर रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या।
1: उर्दू और बॉलीवुड का रिश्ता बहुत पुराना है। ये रिश्ता वो है जो काफ़ी ज़माने से चला आ रहा है। और अगर उर्दू के फ़रोग़ की हम बात करते हैं, इसकी बका की बात करते हैं, तो देखते हैं कि फिल्मी दुनिया ने इसे बहुत फ़रोग़ दिया, इसे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिल्मी नगमों और उनकी लिखी हुई कहानियाँ, डायलॉग्स, ये सब ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने उर्दू को हर घर तक पहुँचाया, जो इसे जानते भी

ना थे। वो इसे गुनगुनाने लगे, पढ़ने लगे, दिलचस्पी से इसको सुनने लगे। उर्दू की इस बेपनाह मकबूलियत और इसकी खूबसूरती की वजह से ही आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि देखा जाता है कि गैर मुमालिक लोग बहुत सुनते हैं और पसंद करते हैं और इसके नगमे वहाँ भी सुने जाते हैं। तो समीन, जहाँ हम बात करते हैं उर्दू अदब की, तो नसर और नज़्म दोनों ही का एक अलग अपना मुकाम है। जहाँ नसर की सादगी है वहाँ नज़्म की शौकी भी है। तो सामिन आइए आज इस हसीन सिन्फ़ सुखन यानी शायरी का लुत्फ़ लेते हैं और आपको सुनवाते हैं आबदा परवीन की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम की सराहना की थी।
1: विक्रम 1, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम के राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वो 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। वहीं असम के

0: और राजनीतिक विभाग ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया है कि दिल्ली में देर रात छात्रों पर गोलीबारी हुई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक इस समय संसद भवन में आयोजित की जा रही है। इस बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक प्रतिष्ठित ब्रिक्स देशों के संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। सम्मेलन में संस्कृति से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स देशों के कलाकार रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधिमंडल जनजातीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चेन से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापक तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर चर्चा की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल और लेबनान के बीच वार्ता का अगला दौर 4 से 6 अगस्त तक इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया जाएगा। चर्चा के दौरान दक्षिणी लेबनान में पायलट जोन प्रक्रिया के विस्तार, लंबित सीमा विवादों के समाधान और पिछले महीने दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित ढांचागत समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानवता का कल्याण प्रकृति के संरक्षण और सम्मान में निहित है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 6 रह गई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, नागांव और कामरूप महानगर पालिका जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। 21 राजस्व सर्किलों के अंतर्गत आने वाले 631 गांवों में कुल 4,45,495 लोग प्रभावित हैं। हालांकि शहर के 10 बाढ़ प्रभावित वार्डों से अभी भी पानी पूरी तरह से नहीं निकला है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए दबंग 2 फिल्म का ये गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में। संगीत दिया है साजिद वाजिद ने और रचना है समीर की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए वजह तुम हो फिल्म का ये गीत, नेहा कक्कर की आवाज में संगीत दिया है गौरव रोशन ने और रचना है कुमार की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और लीजिए अब सुनिए राजी फिल्म का ये गीत। हर्षदीप कौर और विभा श्राफ की आवाज़ों में संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने, और रचना है गुलजार की।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना राजी फिल्म का ये गीत, और अब फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है।
2: बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉनस्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोकगीत। आज के कलाकार हैं गुलाब सिंह यादव, नीलम शर्मा, राम सुमेर यादव और प्रीतम सिंह। पहले आपको सुनवाएंगे गुलाब सिंह यादव और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

अभी आपने सुना राम सुमेर यादव और साथियों के स्वर में ये देवी गीत। लीजिए अब सुनिए प्रीतम सिंह और साथी के स्वर में ये कजरी।

अभी आप प्रीतम सिंह और साथी के स्वर में ये कजरी सुन रहे थे। लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

धन्यवाद सोनम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। अब आप सुनेंगे एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं राहुल देव बर्मन यानी RD बर्मन।

पेश खिदमत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और ये कार्यक्रम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान, प्रस्तुति प्रदीप मिश्र की है। राहुल देव बर्मन, आपका जन्म 27 जून 1939 को कोलकाता में हुआ था। आपके पिता का नाम सचिन देव बर्मन और माँ का नाम मीरा था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे। इन्हें पंचम या पंचम दा के नाम से भी पुकारा जाता था। बड़ी रोचक कथा है, बचपन में जब ये रोते थे तो इनके रोने में पंचम स्वर निकलता था। संगीत के जानकार जानते हैं पंचम सुर होता है ना, कोयल पंचम सुर में गाती है, बहुत कर्णप्रिय सुर होता है। बच्चे रोते हैं तो बड़ा बुरा लगता है।

लगता है, लेकिन इनके रोने में भी एक सुर था, यानी ये पैदाइशी संगीतकार थे। कुछ लोगों के मुताबिक अभिनेता अशोक कुमार ने जब पंचम को छोटी उम्र में रोते हुए सुना तो कहा कि ये पंचम में रोता है, तब से उन्हें पंचम कहा जाने लगा। यानी ये उपाधि उनको अशोक कुमार ने दी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलकाता से ली, बाद में उस्ताद अली अकबर खान से सरोद भी सीखा। इनके पिता सचिन देव बर्मन, जो खुद हिंदी सिनेमा के बड़े संगीतकार थे, उन्होंने बचपन से ही आर डी बर्मन को संगीत की बारीकियां सिखाना शुरू कर दिया था। राहुल देव बर्मन ने शुरुआती दौर की शिक्षा बालीगुंगे सरकारी हाई स्कूल कोलकाता से प्राप्त की। केवल 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला संगीत ऐ मेरी टोपी पलट के इसको दिया था, जिसे फिल्म फंटूश में उनके पिता ने इस्तेमाल भी किया। छोटी सी उम्र में पंचम दा ने सर जो तेरा चकराए की धुन तैयार की थी। आपको याद होगा ये गुरुदत्त की फिल्म थी प्यासा, जानी वाकर ने इस पर अभिनय किया था। उनके द्वारा बनाए गए संगीत उनके पिता एस डी बर्मन के संगीत की शैली से काफी अलग थे। आर डी बर्मन हिंदुस्तानी के साथ पाश्चात्य संगीत का भी मिश्रण करते थे, जिससे भारतीय संगीत को एक अलग पहचान मिलती थी। लेकिन उनके पिता सचिन देव बर्मन को पाश्चात्य संगीत का मिश्रण रास नहीं आता था। आर डी बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक सहायक के रूप में की। शुरुआती दौर में वो अपने पिता के संगीत सहायक थे। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में हिंदी के अलावा बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू भी बिखेरा। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर कई संगीत दिए, जिसे बाकायदा फिल्मों में प्रयोग किया जाता है। संगीतकार के रूप में आर डी बर्मन की पहली फिल्म छोटे नवाब थी, जबकि पहली सफल फिल्म तीसरी मंजिल थी, जो 1966 में रिलीज हुई थी। तो हम कार्यक्रम का पहला गीत आपको उसी फिल्म से सुनवा रहे हैं, और ये फिल्म अपने समय का बहुत ही सुपर ये गीत अपने समय का बहुत ही सुपरहिट गीत रहा था। अब वो गीत कौन सा है आप खुद सुने और फैसला करें कि कितना सफल था ये, और आज भी लोग इसे गुनगुनाते हैं।

70 के दशक के आरंभ में आरडी बर्मन भारतीय फिल्म जगत के एक लोकप्रिय संगीतकार बन गए। उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जैसे बड़े कलाकारों से अपनी फिल्मों में गाने गवाए। 1970 में उन्होंने 6 फिल्मों में अपनी संगीत दिया था, जिसमें कटी पतंग काफ़ी सफल रही। यहाँ से आरडी बर्मन संगीतकार के रूप में काफ़ी सफल हुए। बाद में यादों की बारात, हीरा पन्ना, अनामिका आदि जैसी बड़ी फिल्में की उन्होंने संगीत दिया इन फिल्मों में। एक फिल्म आई थी 1977 में, हम किसी से कम नहीं, ये अपने समय की सुपर हिट फिल्म रही थी। इसके गीत पूरे देश में लोकप्रिय हुए। इसी फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

वो इरादा। 70 के दशक की बात करते हैं तो 1971 में एक फिल्म आई थी अमर प्रेम, इसके गीत भी बहुत पॉपुलर हुए थे, और इसके पहले हरे रामा हरे कृष्णा भी आई थी। हम आपको सुनवा रहे हैं अमर प्रेम फिल्म का गीत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोग कहाँ चूकते हैं कहने से, आप कुछ भी करो कुछ न कुछ नुक्स निकालते ही हैं। इसी भाव को लेकर यह गीत लिखा गया है, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने और गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं, संगीतबद्ध आरडी बर्मन ने किया है। जैसा कि आज एक ही कलाकार में हम इन्हीं के संगीतबद्ध किए हुए गीत आपको सुनवा रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज के कलाकार हैं राहुल देव बर्मन यानी RD बर्मन। ये संगीतकार के साथ साथ गायक भी थे। तो कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है पुकार फिल्म से लिया है, जिसमें इन्होंने संगीत निर्देशन तो किया ही है, खुद अपनी आवाज़ भी दी है। और ये फिल्म आई थी 1983 में रोज़ मूवीज़ के बैनर तले। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो
1: ए टोनी फर्नांडिस।

4 जनवरी 1994 को आपने दुनिया को अलविदा कहा। आपकी आखिरी फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी। कार्यक्रम का अंतिम गीत भी हम आपको इसी फिल्म से सुनवा रहे हैं।

इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम हैं तीसरी मंजिल, हम किसी से कम नहीं, अमर प्रेम, पुकार और सबसे अंत में 1942 लव स्टोरी। अब आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम ख़त्म करने की अपने रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान को दीजिए इजाज़त। प्रस्तुति प्रदीप मिश्र की थी। एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रमों के बारे में आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रियाओं का सहर्ष स्वागत है। आप हमारा नंबर नोट कीजिए, इससे हमें आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम बनाने में मदद मिलती है। हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है 800-49-26-250।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का।

आकाशवाणी प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत तीसरी कसम फिल्म से आशा भोंसले की आवाज़ में। शब्द रचना शैलेंद्र की है और संगीत निर्देशन है शंकर जय किशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत मेरा नाम जोकर फिल्म से मुकेश और आशा भोसले की मिली जुली आवाज़ों में। गीत के बोल हसरा जयपुरी के हैं और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। इस समय आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र आपकी सेवा में है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत गंगा जमुना सरस्वती फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत रचना इंदिवर की है और संगीत निर्देशन अनु मलिक का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं इश्क फिल्म का गीत, उदित नारायण और विभा शर्मा के मिली जुली आवाजों में। गीत और संगीत अनु मलिक का है।

0: क्या?
1: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you.
2: Yeah!

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, बने रहें हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शायला और विंध्या रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
1: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए।

गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नवविकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: and safeguarding the interests of the country's youth. Punjab has been connected with 27 global destinations across North America, UK, Europe and Australia with the launch of Air India's Easy Connect hub and spoke model at Sri Guru Ram Das Ji International Airport, Amritsar today. With the launch, two daily Easy Connect flights have been operationalized from Amritsar. In Andhra Pradesh, three persons, including an 8-year-old boy, were killed and 13 people were injured in a road accident at Chelluru in Vizianagaram district late last night. The police said the victims were headed to Rayagada for a pilgrimage when their stationary vehicle was hit by a speeding lorry. The injured have been shifted to a hospital in Vizianagaram. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall over parts of northern states, Chhattisgarh, Odisha, Madhya Maharashtra, South Interior and coastal Karnataka. Parts of northeast India, coastal Andhra Pradesh, east Rajasthan, Gujarat, Jharkhand, Kerala, Goa, Madhya Pradesh and West Bengal are also likely to receive moderate to heavy rainfall during the day. In other parts, there is forecast of thunderstorms and lightning today. India's para-athlete Sharmila Dhankar won the gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games in Glasgow last night. With this achievement, Sharmila also became India's first ever Commonwealth Games para-athletics gold medalist. Her triumph ended India's 20-year wait for a para-athletics medal at the Games. Indian high jumper Sarvesh Kusharia also clinched a silver medal in the men's high jump event at the Scotstoun Stadium. Competing in the final, Kusharia cleared 2.25 metres before three unsuccessful attempts at 2.28 metres saw him settle for silver behind Jamaica's Romain Beckford, who claimed the gold. Weightlifters Valuria Jayababu and Gyaneshwari Yadav clinched the silver each. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Dr. Mansukh Mandavia have congratulated the winning athletes. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 252.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ आने आई आर आई पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्तियों के बारे में सूचना सुनिए। थाना जांच टाउन जनपद प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार सुनीता देवी सूचित करती हैं कि उनके पति वीरेंद्र कुमार 15 जून 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। कद 5 फुट 2 इंच लगभग, आयु 34 वर्ष, रंग सांवला। गायब होने के समय इन्होंने मेहराब रंग की शर्ट और लोअर पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना थाना जांच टाउन जनपद प्रयागराज को दी जा सकती है और अगर आप चाहे तो इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं 8808753049। रिपीट 8808753049। एक सूचना और सुनिए। थाना किरगंज जनपद प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार जूही गुप्ता पुत्री मुकेश चंद्र गुप्ता 1 जून 2026 से लापता हैं। इनके बारे में विवरण इस प्रकार है। उम्र 19 साल, चेहरा गोल, आंखें औसत, काली सफ़ेद, बाल लंबे काले, इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना थाना कीटगंज जनपद प्रयागराज को दी जा सकती है। कोई भी व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई।

मीडियम में 2.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ आन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दें। संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग 10:00 बजे, संसद समीक्षा 8:00 बजे, ये दोनों कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का राग जो कौस में ख्याल गायन, और अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर इन्हीं से राग गुर्जर तोड़ी में ख्याल गायन हम आपको सुनवाएंगे। गजलों पर आधारित

कार्यक्रम कहकशां सुनिएगा रात 9:30 पर। सब रस आप सुन सकते हैं रात 8:30 पर। मीरा तिवारी के गीत और भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर प्रोफेसर देवदत्त सरोदे की वार्ता सुनिएगा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। पंचायत कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर चर्चा के अलावा रमेश कुमार मिश्र से रामायण पाठ और अभय राज और उनके साथियों से विकास गीत भी हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। युवाणी रोज की तरह शाम 5:15 पर इस कार्यक्रम में शिव कुमार राय से भूपेंद्र कुमार मिश्र की बातचीत सुनिएगा सिविल सेवा परीक्षा तैयारी के बदलते हुए पाठ्यक्रम के बारे में। आज के बड़ा पुण्य होंगे गोस्वामी तुलसीदास।

हमारी शाम की सभा आरंभ होगी धरती गीत कार्यक्रम से शाम 5 बजे। आज के कलाकार होंगे तेरस लाल और साथी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम प्रसारित करेंगे दोपहर 2:30 पर। ग्रामीण बहनों कार्यक्रम पनगढ़ दोपहर 1:15 पर। इसमें विशाखा मिश्रा की बातचीत सुनेगा, महिलाएं अंधविश्वास से कैसे बचें। इसके अलावा सुमन सिंह के लोकगीत भी हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:30 पर प्रस्तुति मधु कुमार की होगी।

अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र से राग गुर्जर तोड़ी में ख्याल गायन।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी। जी रोशनी जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई, और गाने की बोल है दिल देता है रो रो दुहाए किसी से कोई प्यार न करे।
0: भाई फिल्म तो ज्यादा नहीं चली थी लेकिन गाने सारे हिट थे इसके, सभी गाने बहुत अच्छे थे। उसी में से इन्होंने रोशनी जी ने एक अच्छा सा गाना चुना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको।
1: मैं नाम लेना चाहती
0: हूं। हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
1: हमारी दीदी दहिया मां प्रतापगढ़ से शांति जी, सुनील जी जो और आशीष शाह उनकी बेटी है, और जदुआ का पूर्व प्रतापगढ़ से है तेजी जी, शेखर जी, और हमारे भाई जी सूरज कुमार, संदीप कुमार, मंदिर कुमार, सुशांत कुमार, पूजा, और हमारे मम्मी पापा हैं, बड़े मम्मी हैं, और आप हैं, और सभी सुनने वाले श्रोता।
0: तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मगराम, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। मैम नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है जानवर। कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: पवन कुमार निषाद, निजी कला बंद करा।
0: जी पवन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गंगा जमुना सरस्वती का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: साजन मेरा उस पार है, मिलने का दिल करा रहा।
0: बहुत ही मशहूर गाना आपने चुना है पवन जी, तो आपकी इस पसंद को हम सुनवाने जा रहे हैं। लीजिए सुनिए।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु। आपके गीतों के साथ अपना नाम बता दीजिए।
1: गांव धोलापुर पोस्ट उमरी प्रयागराज निवासी। दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। आपको सादर सप्रेम प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। तो बताइए, आज आपकी क्या फरमाइश है?
1: दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है प्यासा सावन
0: जी,
1: और गीत के बोल है मेघा रे मेघा। ये सुरेश वाडेकर साहब के साथ में, मेरे ख्याल से लता जी ने गीत
0: जी
1: गाया
0: जी लता जी की आवाज है, सुरेश वाडेकर साहब के साथ है और बहुत ही मधुर गीत है।
1: जी जी जी।
0: तो चलिए, आपकी इस फरमाइश को पूरा करते हुए हम सुनवाते हैं प्यासा सावन फिल्म का ये गाना।
1: जी, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका डीमी श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ। मैडम जी कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ अशोक जी, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ, बस गाना सुनवा दिए जाने मन मूवी हेमा मालिनी का गाना।
0: गाने के बोल बताइए।
1: आएगी आएगी आएगी किसी को हमारी याद आएगी।
0: तो भाई अशोक जी की पसंद का ये गाना है, फिल्म का नाम है जाने मन, आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति मधु कुमार की थी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छा करें। परिस्थितियों ने उसे बुरा बनाया है, आपका अपनापन पाकर वो सुधर जाएगा। याद रखें, हर व्यक्ति अपनापन चाहता है, प्रेम चाहता है। आपकी थोड़ी सी सहानुभूति उसे एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेगी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 1 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। उसके बाद इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी लखनऊ केंद्र से। बने रहे हमारे साथ।

पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों ने भी बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में चौबीस में संशोधन विधेयक पर होने वाली चर्चा में भाग लेंगे। भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और

0: सावन और कांवड़ यात्रा के लिए रियासत भर में खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में शाहजहांपुर में जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह की सदारत में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों को जरूरी रहनुमा खतूत दिए गए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यात्रा को महफूज तरीके से और मुनज्जम तरीके से अंजाम दिया जाए। इसी दौरान मेरठ में जिला मजिस्ट्रेट डॉ वी के सिंह ने कहा कि महकमे सेहत को ज्यादा से ज्यादा सेहत खदमात फराहम करने की सिमत काम करने के लिए खसूसी हिदायत दी गई है। इस बार एक मोबाइल एम्बुलेंस बनाई गई ताकि कांवड़ियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना हो तो उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। हेपेटाइटिस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन हेपेटाइटिस पर कौमी और बैनुल अक्वामी कोशिशों को मुतहर्रिक करने का मौका है। लोगों और आम लोगों की जानिब से कार्रवाई और शिरकत की हौसला अफजाई करता है। इस साल का थीम हेपेटाइटिस आप से इसे ख़त्म करें, जो 2030 तक हेपेटाइटिस के खात्मे के अहदाफ के हुसूल के लिए माली, समाजी और सेहत से मुतालिक रुकावटों को दूर करने पर मरकूज है। फितरत के तहफ़ के आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 1997 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 28 जुलाई को फितरत के तहफ़ का आलमी दिन करार दिया। इसका मकसद करे अर्ज के फलाह व बहबूद के लिए फितरत के तहफ़ और पायदार तरक्की की अहमियत पर जोर देना है। रियासत के दारुल हुकूमत लखनऊ, श्रावस्ती, अमरोहा और आसपास के इलाकों में कल हल्की से दरमियानी बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और आसमानी बिजली गिरने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दरियसना बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से दरियाए गंगा शारदापुर और बदायूं में शारदा पानी में इजाफा हुआ। बाराबंकी में बलिया खतरे के निशान के करीब बह रही है। नेपाल से मुसलसल पानी छोड़े जाने की वजह से बस्ती में दरियाए घाघरा के आबी सतह में इजाफा हुआ है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाका की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 में और ये समय है ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम पनघट का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पनघट।

0: बैठी सभी श्रोता भैया बहनी लोगन के सत्या और जमुना बहनी का
1: राम राम।
0: और सुनाओ सत्या, घरे दुआरे का क्या हाल चाल है?
1: सब बढ़िया बाटे जमुना बहनी।
0: हाँ हाँ।
1: और इस समय तो जनता ही हो चारों कैती जौन बाटे बहनी खेती किसानी मजदूरी में सब लगे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और यह समय चल रहा बा धान
0: का रुपाई।
1: और बहनी हो
0: हाँ।
1: मजदूर हेरे नहीं मिलत हैं।
0: ई कारण हो ना सत्या कि देखा बहनी, देखो जौन दौ राजा बरस देहन तो सबके खेते में पानी हो गया। अब सभी मजदूर चाहा था तो उन्हन बेचारी कहाँ कहाँ जाए।
1: बिल्कुल सही कहती हो बहनी। ई बताव,
0: हाँ
1: दुये तीन लाइन बोले में हम समझ गए कि तुहार आज तबीयत लगातार ठीक नहीं ना, नीमन नहीं ना गुइया।
0: नीमन ई बिना नहीं बस सत्या कि वंदा धान जौन जब लगवही होत रही तो हम जौन बाटे उन्हन रुवन के गई रहे जौन बाग खाना पीना लेके, तो पानी बरसे लगा बहनी तो हम उनमें भीज गए।
1: अच्छा।
0: भीज गए तो काफी खेत बहुत दूर रहा, तो जब भीज गए बहनी तो अब जाना तो जब घाम नहीं बा पानी बरसते ही बा कपड़ा का करे झुराए।
1: हाँ।
0: तो वो कपड़वा जौन हमार गील रहा ना सत्या, वह पहने पहने रह गए, यही से हमार जौन बना हमारे सर्दी हो गए।
1: सर्दी जुखाम बुखार
0: हाँ
1: तीनों पकड़े हुए
0: हाँ
1: बहनी।
0: हाँ हाँ
1: देखा
0: और
1: एक
0: मौसम देखा तो दुर्दशा चलता ही बैठे।
1: बिल्कुल देखा जमुना सही बाटे, इतने समय देखा आलस करे के समय नहीं ना,
0: हाँ हाँ
1: साल भर का टाइम होता
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: इतने समय बेहन सबका लगाता टाई है ना। और
0: अब देखा साल भर जब यह समय देखा हमारे भैया बहनी हरे जब मने अपने खेते कियारी का काम कर लेते हैं तो साल भर बैठ के खा मजे से चावल दाल खाबो तो
1: वही हम
0: करोगे
1: बतिया कहत रहे कि देखा आलस करे के तो समय नहीं ना।
0: हाँ
1: मुना देखा ई सब लापरवाही से जैसे तबीयत तोहार भारी हो गया, तो तोहार काम में थोड़ा स्थिरता आई जात है तो
0: हाँ
1: वहाँ विलंब होए लगत है।
0: हाँ
1: और देखा ई समय विलंब करे के होत नहीं, काहे कि
0: नहीं
1: देखा एक ही काम नहीं रहते कि बेहन भर

0: हाँ बहुत काम
1: देखा
0: रहता है
1: इतना खेत रहा था, मने खाए खातिर अलग बो अथिन महीन चाउर,
0: अपने
1: और
0: परिवार बिना।
1: हाँ
0: हाँ
1: और बेचे के खातिर या मने व्यवसाय के खातिर
0: हाँ
1: वो ज्यादा उपज वाला धान बो अथिन,
0: वो
1: है ना।
0: थे बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: देखा बहनों ने छाटे के पड़ा था, कहीं कभी कहा होता अगर ना ध्यान द कहा कि पड़वा तो देखे में कुल एक जैसे
0: एक ही
1: लागत
0: चल
1: है।
0: लगा था। और देखा
1: हाँ
0: जैसे हम तू तो जाना था कि हम एक क्यारी में फलाने धान लगाए
1: हाँ
0: हैं, एक क्यारी में फलाना धान लगा, लेकिन जे बिहनिया उखाड़ा था जौन जेके हम सब मेरे रुन बोलाई था, तो वो थोन जन जाना था इनकी हाँ कौन बेहने में डली व
1: बिल्कुल
0: कौन में।
1: यही सब ध्यान देवे के जरूरत रहा था बहनी। तो ऐसे अपने तबीयत के स्वस्थ रखा, छाता छतरी साथे में लिहे रहा करे बहनी, ताकि भीजे उजे ना और ताकि खेत अच्छे से लग जाए। ये
0: बिल्कुल।
1: सब तो बात देखा घरे खेती किसानी के लगे रहता है।
0: हाँ
1: मुना हम तो से एक बात कही जमुना, हाँ ये बात ये है कि अपने सबके घरे में कहीं भी जोन बुजुर्ग होथिन,
0: हाँ हाँ
1: हाँ,
0: हाँ हाँ
1: और परिवार और समाज के एक तरह से वो देखा जाए तो अमूल्य धरोहर होथिन,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उनके जीवन के लंबा अनुभव, संघर्ष, सफलता और असफलता, ये सब जोन बाटे सही मार्ग पे चले के एक तरीके से प्रेरणा
0: बिल्कुल
1: देथिन।
0: सही कहा थो बहनी। तो जब सत्या ई जौन बा बतिया, तो तू बिल्कुल सही कहा थो कि अपने समय में जौन जौन हमारे बुजुर्ग हैं वो अनेक परिस्थितियों का सामना किए होते हैं। हाँ, इसलिए उनकर सलाह और जौन जीवन का सीख जौन होता ना वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते। तो
1: बिल्कुल
0: जब ई बात हम सब करत है तो हम सोचा कि कस ना आज चला यही विषय पे बात कही कह लेन जाए कि जौन बाटे बुजुर्गों के अनुभव और जीवन की सीख।
1: ये तो बहुत अच्छा कहू बहनी।
0: हाँ
1: हमहू लोग सुन माँ बहनी भरे अगर समझिए एक तो हर घर में देखे एक बुजुर्ग तो जरूर होती
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल
1: उनके महत्व के जाना बहुत जरूरी बात
0: जी
1: है।
0: जी तो देखा सत्या मानव जीवन एक सतत यात्रा है। हाँ, जेमा प्रत्येक दिन व्यक्ति कुछ नया सीखत है, समय के साथ प्राप्त अनुभव ही जीवन के परिपक्वता और सही दिशा प्रदान करत है। और यही कारण है सत्या कि हमारे समाज में बुजुर्गों के ज्ञान अनुभव और संस्कारों का सबसे बड़ा खजाना माने माना जाता है। और वे अपने जीवन में अनेक दुख सुख संघर्ष सफलताएं और असफलताएं देखे होते हैं। उनके अनुभव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रह सत्या, बल्कि वे पूरे परिवार और समाज के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक का काम करते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: बहनी
0: यही लिए भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों के सदैव सम्मान का स्थान दिया जाता
1: बिल्कुल सही कहती हो
0: है।
1: जमुना।
0: हाँ
1: देख पद प्रतिष्ठा समय के साथ बदलाव सकल मुना अनुभव एक ऐसन पूंजी होत है
0: हाँ हाँ हाँ
1: जौने में व्यक्ति के साथ जीवन भर रहत है।
0: जी जी
1: बुजुर्ग के जीवन अनेक पड़ाव पर किए
0: मैंने
1: होथिन,
0: पार किए होते हैं।
1: हाँ कई पड़ाव के पार कहके कठिन परिस्थिति में धैर्य, है ना, और सीमित संसाधन में आपन वो कैसे जीवन बिताएन
0: हाँ
1: और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं के ढाल लिहन,
0: हाँ
1: ये सब सीख जोन बाटे उनके अनुभव में दूरदर्शिता के दिखावत है और विवेकशील बनावत है।
0: बिल्कुल सही कहा था सत्या। और जब परिवार या समाज किसी कठिन निर्णय के सामने जब खड़ा हो जाता है, ओके कुछ समझ में नहीं आवत कि हम करी तो का करी, तो वहाँ समय बुजुर्ग का अनुभव सही मार्ग चुने में महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है।
1: बिल्कुल सही
0: हाँ,
1: बहनी।
0: और उनका अनुभव का मूल्य कोनो भी पुस्तक या सिद्धांत से कम नहीं होते सत्या। हाँ, बुजुर्ग हमें सिखावत हैं कि जीवन में सफलता केवल ऊंचे पद या अधिक धन या प्रसिद्धि प्राप्त करे का नाम
1: नहीं
0: नहीं
1: होते।
0: है, बल्कि सच्ची सफलता अच्छे चरित्र, ईमानदारी, और परिश्रम, अनुशासन, संतोष सब मानवता में निहित है, विद्यमान है।
1: बिल्कुल सही कहती हो बहनी। जानथू जीवन में जो कठिनाई आवथिन
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: कभो भी स्थायी नहीं होतीन।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: धैर्य, साहस तथा सकारात्मक सोच से हर समस्या का समाधान होता।
0: बिल्कुल
1: परिवार का एकता और आपसी प्रेम,
0: जी
1: सहयोग, विश्वास जीवन सबके से बड़ी ताकत होता।
0: जी जी जी
1: बड़न का अनुभव हमें ये बतावत है कि क्रोध, अहंकार और स्वार्थ जैसे रिश्तों के जो है कमजोर बना देतीन,
0: बिल्कुल
1: अंदर से खोखला बना
0: खोखला कर।
1: देतीन
0: हाँ
1: बहनी,
0: हाँ हाँ
1: जाना तू।
0: हाँ
1: जबकि विनम्रता, क्षमा और त्याग हमें मजबूत बनावथिन।
0: जी
1: समझ ल कि यही जीवन मूल्य समाज के सद्गुण और समृद्ध बनावे का एक सबसे अच्छा तरीका
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही कहो जॉन बटे सत्या। और जानत हो बुजुर्ग केवल अनुभव का भंडार

0: ही नहीं बल्कि हमरे संस्कृति परंपराओं और नैतिक मूल्यों के संरक्षक भी हैं।
1: हाँ।
0: वे हम सबके हमरी जड़ों से जोड़त हैं और भारतीय सभ्यता की महान परंपराओं से परिचित करावत हैं। उनके माध्यम से ही नई पीढ़ी जौन हमार सबके बा उ त्योहारों को के रीति रिवाजन के और लोक कथाओं के इस सब के पारिवारिक परंपराओं और नैतिक आदर्शों के बारे में सिखावत है।
1: बिल्कुल सही कहती हो बहनी। कहा जाता ना कि दादी नानी और दादा के दादी के नानी के नाना के जौन ये सब कहानी रहत रहे ना बहनी,
0: जैसे हम वो सब सुने है
1: सुने है। हाँ। और आवे वाले बच्चे जेके दादी नानी जैसा आशीर्वाद मिला है वो लोग भी सुन रहा है। तो जान ल बहनी केवल कहानी नहीं रहते, उमन मनोरंजन ही भर नहीं रहते बल्कि उमन रहत है जब बालक में के अंदर जो छिपी नैतिकता भरी संदेश रहत है, जो नैतिक संदेश उमन रहत है बच्चन के व्यक्तित्व के निखारत है। निर्माण बच्चन के अच्छे से निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है। अगर इस तरह से देखा जाए तो बुजुर्ग समाज की उस संस्कृति विरासत की एक ऐसन पीढ़ी है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने आप खेल खेल कहानी के माध्यम से
0: सब कुछ
1: पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता,
0: पता भी नहीं चलता और हर चीज से गदेलन के परिचित कराए देते।
1: बिल्कुल देखा अभी देखे हो घर में चार लड़का जहाँ रहती तो संझा बेरी जब आप खाना बनावत रहे तो लड़कवन पढ़ाई से अगर भागें तो सीधे भाग के जई हैं जहाँ दादी नानी बैठी हैं उही जगह जई हैं और अपन सिकवा शिकायत बताई हैं आज दिन भर ई हुआ ओके बाद फिर किस्सा कहानी में चले लगा था।
0: जौन चीज हमसे हमसे तो से कहते हैं हम सब कभी डांट दी थे लेकिन अगर वही बुजुर्ग के सामने लड़कियां बैठ जाते हैं तो वो लोग सोचे कितने मने प्रेम से कितने आपसी सद्भाव से कैसे लड़कियन के मोड़ देते हैं और बच्चा भी जौन बाप दादा दादा और नाना नानी के चक्कर में पड़ा रहा।
1: अरे जमुना आपसी प्रेम का बात कहूँ तो हम बताई हमार चचिया सास इतनी साफ सफाई साफ पोछा लगावा पानी डाला तब उन्हें खाना द खाना थाली एकदम कटोरिया सब साफ बर्तन रहे और कभो ऐसे जौन बाटे नहीं करत रहे समझौता। लेकिन जब से उनकर पोती पैदा हो गए बहनी नातिन पैदा हो गए वो बकोई खात रही हैं बकोइयाँ बकोइयाँ जाए के हाथ में थाली में हाथ डाल दे और चाहे दाल का कटोरी गिराई दे लेकिन वो देखा प्रेम कहा थी ना मैंने मूल से ज्यादा ब्याज प्यार रहा तो उनके प्रेम में वो जो इतनी तेज डांटे वाली चिल्लाए वाली और वो इतने प्रेम से उन्हें मजा आवत हो के साथ खेले।
0: बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा गावर ना कि जौन बुजुर्ग का जो अनुभव होता है वो हमें बहुत कुछ सिखावत है। तो देखा बातचीत तो होते रहे चलो तो होके हम एक सुमन सिंह बहनी से झूमर सुनवावत है तुहु सुना हमारे बहनी हरन भी सुने।
1: बिल्कुल बहनी

0: सुनो जमुना बहनी, देख कितना शिकायत अपने नंदी से कर रही हैं, है ना? ऐसे थोड़ा ना होता।
1: हाँ देखा, गीत गाने ही में कुछ तो नुकझुक होबे करता। हाँ। अगर गीत गाने में नुकझुक ना हो तो फिर ओकर मजे किरकिरा बना।
0: बिल्कुल सही कहती हो बहनी, मुना अशिकायत ना करे के चाहिए।
1: हाँ देखा सत्या, गीत हम सब सुन लिया। अब देखा अपने कार्यक्रम में एक ठी वार्ता है कि महिलाएं अंधविश्वास से कैसे बचे, और एक जानकारी देत बटरी बहनी विशाखा मिश्रा, तो चलो सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल।
2: जैसे सूरज के उजियारा अंधियारा का दूर कई देत है, वैसे ज्ञान के ज्योति मन का भ्रम मिटावत है। अंधविश्वास ऊ धुंध हवे जे मनई के आखिन पर पर्दा डाली देत है। जौन समाज ज्ञान के दीप जरावत है, उहां अंधविश्वास आपे भाग जात है। नमस्कार, आकाशवाणी के ई विशेष कार्यक्रम मा सुनत सब सम्मानित श्रोता भाई बहनन का सादर प्रणाम। आज हम सब एक ऐसन विषय पर मनन करे खातिर जुटे हई जौन केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरा समाज का भविष्य से जुड़ल बा। विषय हुए महिलन अंधविश्वास से कैसे बचे। हमार भारत ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक परंपरा के देश हुए। ई धरती पर वेदन के ऋचाए गूंजी, बुद्ध के करुणा संदेश फैलिन, संत कबीर, तुलसीदास और अनेक महापुरुषन ज्ञान और विवेक का दीप जलाइन। ए महान परंपरा हमका सिखावत है कि आस्था मनुष्य का शक्ति होवे, लेकिन अंधविश्वास ओकर कमजोरी। आस्था मन मा विश्वास जगावत है, जीवन का दिशा देत है, लेकिन जब आस्था पर भय

भ्रम और बिना प्रमाण के विश्वास हावी होए लागे त ऊ अंधविश्वास बन जात है। अंधविश्वास मनई के सोच पर ताला लगा देत है। ऊ सवाल पूछे से रोकत है, सत्य खोजे से रोकत है और धीरे धीरे विकास के राह बंद कर देत है। बहनियों, आज विज्ञान चांद और मंगल तक पहुंच गवा। डॉक्टर कठिन से कठिन बीमारी का इलाज करी रहे हैं। किसान नई तकनीक अपनावत हैं। बच्चा बच्चा मोबाइल से दुनिया देखत है। फिर वो कई जगह ऐसन बात सुने का मिलत है कि बीमारी भूत प्रेत से आई, दुर्भाग्य टोना टोटका से भवा या कौनो महिला अपशगुन होवे। ई सोच केवल गलत नाही बल्कि समाज का प्रगति मा सबसे बड़ बाधा होवे। अवधि मा कहावत होवे, जहाँ अंधियार तह ठोकर, जहाँ उजियार तह राह। अर्थात जौन जीवन ज्ञान से प्रकाशित होई, उहां भ्रम टिके न पाई। आज सबसे अधिक जरूरत महिलन के जागरूक होए की बा। काहे कि महिला केवल परिवार का सदस्य

बल्कि समाज का प्रगति मा सबसे बड़ बाधा हुए। अवधि मा कहावत हुए, जहाँ अंधियार तह ठोकर, जहाँ उजियार तह राह। अर्थात जौन जीवन ज्ञान से प्रकाशित होई, उहां भ्रम टिके न पाई। आज सबसे अधिक जरूरत महिलन के जागरूक होए की बा, काहे कि महिला केवल परिवार का सदस्य नहीं बल्कि परिवार का आधार हुए। उ माई हुए, बेटी हुए, बहिन हुए, अर्धांगिनी हुए। उहे पहले बच्चन का बोलना सिखावत है, उहे संस्कार देत है, उहे परिवार के भविष्य गढ़त है। एक पढ़ी लिखी जागरूक और विवेकशील महिला केवल अपना जीवन ना ही बदलत बल्कि पूरा परिवार बदल देत है। जैसे दीपक अकेले जलत है लेकिन उजियारा पूरा घर में फैल जात है, वैसे एक जागरूक महिला पूरा समाज का दिशा बदल सकत है। हमार पुरखा कही गहन, विद्या धन सबसे बड़ धन, जेही का चोर न चुरा सके, आगी न जरा सके, पानी न बहा सके। ऐसे शिक्षा और जागरूकता अंधविश्वास के सबसे बड़ इलाज हुए। आज हम ई भी समझब कि धर्म और अंधविश्वास एक नहीं हुए। धर्म प्रेम सिखावत है, सेवा सिखावत है, सत्य सिखावत है, करुणा सिखावत है, जबकि अंधविश्वास डर पैदा करत है, भ्रम फैलावत है और कई बार शोषण के रास्ता खोल देत है। कबीरदास जी कही गईन, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ई दोहा का मर्म ई हुए कि केवल बाहरी दिखावा, कर्मकांड या डर नहीं बल्कि विवेक, प्रेम और सत्य मनुष्य का महान बनावत है। आज की वार्ता मा हम मिलके ई समझब कि अंधविश्वास कहाँ से पैदा होत है, महिलन पर ओकर का असर पड़त है और शिक्षा, विज्ञान, जागरूकता और आत्मविश्वास के सहारे हम ई समस्या से कैसे बाहर निकल सकित है। आई खुले मन से विचार करब, सुनिब, समझब और सही दिशा में आगे बढ़ब। जौन अंधविश्वास आज हमरे समाज में दिखाई पड़त है, ऊ एके दिन में पैदा नहीं भवा। पीढ़ी दर पीढ़ी बिना परखे सोचे बहुत सी बातें आगे बढ़त गई। कुछ परंपराएं समाज के अनुभव से बनी लेकिन कुछ धीरे धीरे ऐसन रूप ले लिहिन कि लोग डर के कारण उनका माने लागिन। अवधि में कहावत बा, डेराइल मन सही बातों भूली जात है। जब मनई डर मा जियत है तब वो विवेक से ज्यादे भ्रम पर भरोसा करे लागे। बहनियों सोची, अगर घर मा कौनो बच्चा बीमार पड़ी जाए तो पहले का करे का चाही? सही उत्तर हुए डॉक्टर से सलाह, लेकिन कई बेर देखे का मिलत है कि इलाज से पहले झाड़ फूंक, टोना टोटका या तरह तरह के ढोंग शुरू हो जात है, बीमारी बढ़ जात है और समय हाथ से निकल जात है। ई बात आस्था के खिलाफ ना ही हुए। भगवान पर भरोसा रखब, प्रार्थना करब, ई मन के बल देत है, लेकिन भगवान हमका बुद्धि भी तो दिहिन। डॉक्टर, दवाई, अस्पताल, विज्ञान, ई सब भी तो ओही ईश्वर के दिहल साधन हुए। हमरे गांव देहात की एक लोक कथा सुनावती हूँ। एक गांव मा सुगनी नाम की मेहनती महिला रहत रही। वो बहुत सीधी सादी रही। एक दिन ओकर गाय बीमार पड़ी गई। गांव के कुछ लोग कहिन, कौनो नजर लगा दीस। सुगनी घबराए गई। कौनो कहिस ताबीज बधवा, कौनो कहिस बलि चढ़ावा, कौनो कहिस रात भर टोना करावा। बेचारी आपन मेहनत की कमाई इधर उधर खर्च करत रही लेकिन गाय ठीक न भई। वही गांव में एक बुजुर्ग मास्टर साहब रहत रहिन। उहिने कहिन, पहले पशु चिकित्सक का बुलावा। डॉक्टर आइन, इलाज भवा, दवाई मिली। कुछ दिन बाद गाय पूरी तरह ठीक हो गई। मास्टर साहब मुस्कुराइन और कहिन, इलाज ज्ञान से होइला, डर से नहीं। ई छोटी सी घटना बहुत बड़ सीख देत है। हमका हर बात में ई सोचे का चाही कि जौन उपाय हम करे जा रहे होई, का ओकर कौनो आधार बा, का उ वैज्ञानिक बा, का उ समाज का लाभ पहुंचावत बा। अवधि में एक और सुंदर कहावत बा, सांच के पाव मजबूत होई थे, झूठ दूर तलक नाही चलत। सांच चाहे धीरे धीरे सामने आवे लेकिन आखिरकार जीत सांच की होत है। आज कई ढोंगी लोग समाज में डर फैलावत है। वो कहत है, ई ना करा, ऊ ना करा, ना ही ता अनर्थ होई, डर पैदा कर।

करके लोगन से धन ले लेते हैं। सबसे ज्यादे शिकार महिलन का बनावल जात है। यही से जरूरी बा कि हर महिला अपने भीतर आत्मविश्वास जगावे, सवाल पूछे, समझे, परखे, सही सलाह ले और गलत बात का साहस से मना करे। याद रखी, डर अंधविश्वास की जड़ हुए, ज्ञान ओकर इलाज हुए। आज गांव-गांव आशा बहिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ANM शिक्षक और स्वयं सहायता समूह की बहनें समाज में जागरूकता फैलावत हैं। हम सबका चाही कि एक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, काहे कि एक जागरूक महिला केवल अपना घर ना ही सवारत, वो पूरा समाज सवारत है। यही जागरूकता धीरे धीरे अंधविश्वास का अंधियार मिटाई और ज्ञान का उजियार फैलाई। जौन घर में शिक्षा के दीप जलत है, वहाँ अंधविश्वास अपने आप दूर होए लागे। शिक्षा केवल किताब पढ़े का नाम नहीं हुए, बल्कि सही गलत के बीच भेद करे की शक्ति हुए। विवेक, तर्क और संवेदना, ये तीनों मिलके मनई का जागरूक बनावत है। हमरे पुरखे कही गईन, विद्या विनय देत है, विनय सम्मान देत है, सम्मान से समाज बनत है। महिला परिवार की पहली गुरु हुए। बच्चा जब बोलन सीखत है तो पहले माई से सीखत है। जौन संस्कार माई देही, वही आगे चल के समाज का संस्कार बनत है। यही से हर माई, हर बहन और हर बेटी का इस संकल्प लेवे का चाही कि वो अपने घर में डर नहीं बल्कि ज्ञान का वातावरण बनाई है। एक बात और बहुत जरूरी बा, आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाह फैलत है। कबहू कौनो चमत्कार के नाम पर, कबहू इलाज के नाम पर, कबहू डर फैलावे वाली बातन के नाम पर। बिना जांच पड़ताल के ऐसन बातन पर भरोसा करना भी अंधविश्वास के नया रूप हुए। अवधि में कहावत बा, सुनी सुनाई बात पर मत चल, सांच परखी के पांव बढ़ाओ। हमका हमेशा ई याद रखे के चाही कि भगवान हमका बुद्धि ऐसे दीहिन कि हम सोची, समझी और सही निर्णय ली। श्रद्धा रखब लेकिन अंधविश्वास नहीं, पूजा रखब लेकिन बीमारी में डॉक्टर का सलाह भी लेब। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि संतुलित जीवन के आधार हुए। आज भारत की बेटियन विज्ञान, न्याय, प्रशासन, चिकित्सा, सेना, खेल और अंतरिक्ष तक आपन परचम लहरा रही हैं। ये सफलता टोना टोटका से नहीं बल्कि परिश्रम, शिक्षा और आत्मविश्वास से मिली है। यही से बहनियों, आपन शक्ति पहचानी, डर से नहीं ज्ञान से जीवन जी, प्रश्न पूछी, सही जानकारी ली और समाज में जागरूकता के दीप जलावत चली। आज की ई वार्ता के समापन पर बस इतने कहब चाहब कि समाज के बदलाव कानून से जरूर आवत है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सोच से आवत है। जब सोच बदलत है तब परिवार बदलत है, परिवार बदलत है तब गांव बदलत है, और जब गांव बदलत है तब पूरा राष्ट्र आगे बढ़त है। महिलन के हाथ में समाज के भविष्य के डोर बा। जौन माई अपने बच्चन का शिक्षा देत है, वो केवल अक्षर ज्ञान नहीं देत बल्कि जीवन के संस्कार देत है। यही से अगर महिला जागरूक होई तो अगला पीढ़ी अपने आप जागरूक होई। आई आज हम सब मिलके 5 संकल्प ली। पहला, कौनो भी बात बिना परखे न मानब। दूसरा, बीमारी होए तो डॉक्टर और स्वास्थ्य केंद्र से सलाह जरूर लेब। तीसरा, अपने घर के बेटा बेटी दोनों का समान शिक्षा देब। चौथा, अफवाह, ढोंग और पाखंड से दूर रहब। और पांचवा, अपने गांव और समाज में वैज्ञानिक सोच और जागरूकता फैलाई। हमने अवधि अंचल में एक और बहुत ही सुंदर बात कही जात है, दिया अपने खातिर नहीं जरत, वो दूसरन का उजियारा देत है। ठीक वैसे ही एक जागरूक महिला केवल अपने घर का नहीं पूरा समाज का रोशन करत है। समापन से पहले 4 पंक्तियां आप सबके नाम। ज्ञान के ज्योति जलाई चला, मन से सब भ्रम हटाई चला, नारी जागी तो घर घर जागी, नव भारत के राह बनाई चला। आइए हम ऐसन समाज के निर्माण करी जहाँ श्रद्धा होई लेकिन अंधविश्वास ना होई, जहाँ परंपरा होई लेकिन विवेक भी होई।

0: जहाँ विश्वास होए लेकिन विज्ञान का सम्मान भी होए। यही संदेश के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
1: जमुना बहनी,
2: हाँ
1: देखा कितना नीक वार्ता में बताइन विशाखा बहनी, है ना? तो जब नीक नीक महिलाओं के अंधविश्वासी न बने के चाही, बचे के चाही बताइन, तो चला कस न अपने बहनी हरन के एक नीक नीक गाइड फिल्म से एक गीत सुनाई दीन जाए। स्वर है लता मंगेशकर जी के।
2: अच्छा, चला सुना जाए।

0: सत्य गीत तो सुनवाऊ मन खुश कोई दू
1: देखा मन तो खुश हो इन गुआ है ना और देखा गीत संगीत मन प्रसन्न का एक बहुत अच्छा माध्यम होती है ना और इतनी समय जोन बटे
0: बरसात
1: चारों कहती बारिश हो तो पकौड़ा खाए के मन करे हाँ और बारिश हो तो बेहनो लगावे के मन करे बहनी इतनी समय समझ ल कौन कौन काम करे के मन कहत
0: मन तो बहुत करत है कि लेकिन मनई जब थक के आवत है ना सत्या तो कुछ काम करे के मन नहीं करत लेकिन जोन अपने घरे में अपन सब मन से दुआ है ना उन्हें सबके जोन कुछ ना कुछ चटक पटक हमेशा चाहत रहे
1: वैसे चाहे ना लेकिन यह मौसम में जरूर बाजार से कुछ हर वहर सामान ले आई है घर में बनवावे के लिए
0: अरे ले आई है एकरे बाद सबके अपने सबके देखा अगले बगले खेती कियारी में कुल मार भा बटे तो उमेग अरे जा मत आलस कर जा चटपटिया पतिया तोड़ के लेते आओ बना

0: आवत रहे, हल्का हल्का बादर घेरे रहन।
1: हाँ
0: हाँ, तो कहें हम कहा जाते ही पन घटे पर सब काम निपटा लिए, तो कहें अच्छा खाना तो हम खा लिए रहे समय से, जाती हो हम ठंडा ही खा ले मुन्ना जात जात। एक हम पहले जोन बटे अजवाइन के पत्ते के पकौड़ा बनाए के जा बहनी।
1: अच्छा,
0: अब ओका समझ ले आवत आवत जल्दी जल्दी ओका बनाए के तब आवा भागी।
1: अच्छा, तो तू
0: भागी
1: आज अजवाइन के पत्ते पकौड़ा बना रहे हो?
0: और का बहनी, अब जौन आदेश
1: लई आई होगी ना ही?
0: हाँ बिल्कुल ले आई, पनघटे पर आई और लई ना आई।
1: अच्छा ठीक बटे, तो तू लई आई हो तो हम ओके खाब, लेकिन तू बनाए कैसे रहो? एकर रच के जौन भाई में सामान का पड़त हो, एकर विधि का हो, ये रच के हमारे बहनियन को बताओ।
0: बिल्कुल बताऊ बे बहनी। तो देखा अजवाइन का पत्ता का जो पकौड़ा बना था ना, वो बनावे के लिए बहुत ही सरल बा। सबसे पहले बनावे के लिए थोड़ा सा बेसन ले लें और चावल के आटा,
1: अच्छा
0: ताकि कुरकुरा रहे चावल के आटे से, ये दोनों के आपस में घोल लें। हाँ, और ओहमन मिलावे हल्का सा मसाला गरम और नमक मिर्ची हल्दी,
1: मैंने अजवाइन का पत्ता ले लें।
0: हाँ हाँ, पत्ता के अलग से धो के रखे रहे।
1: अच्छा,
0: हाँ, यह एक घोल बनावे के है पकौड़े का।
1: तो घोल में क्या क्या डालें?
0: एहमन बहनी थोड़ा सा हल्दी मिलावें, मिर्च मिलावें, कुछ लोग चटपटा चाट मसाला जैसे समझे।
1: अच्छा,
0: तो ओका मिलावें।
1: हींग भी डाला जाता है?
0: हाँ, अदरक नहीं, बहुत से बच्चन लोगन के जोन बा पकौड़े में नहीं अच्छा लगते, सब्जी में अच्छा लगता हींग, ओकर महक आवे लगा था जैसे। तो अदरक हरी मिर्ची के पीस लें खूब अच्छे से। हाँ, और वही जोन चावल और बेसन का घोल है ओमन मिला लें।
1: अच्छा,
0: और लाल मिर्च पाउडर मिला लें थोड़ा सा, बहुत जो है जरूरी समझे तो हींग भी मिला लें।
1: हाँ,
0: कहे से
1: पाचन शक्ति से सही,
0: पाचन बहुत अच्छा रहा था।
1: हाँ हाँ,
0: और उसके बाद जोन बटे नमक स्वाद के अनुसार मिला लें, ये सब सब आपस में घोल लें ना। तो यही में जोन बटे बेस वो का अजवाइन का जोन पत्ता रहा था,
1: हाँ हाँ
0: कुछ लोग समूचे पत्ता का बनावा थी।
1: हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: कि समूचा पत्ता मैं घोल में लपेट के,
1: जैसे समूचा पत्ता जैसे छोटवार बटे तो मने घोल ले तो बड़वार होते तो होते लगे काट, काट ले।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, तो अपने ऊपर है, कुछ लोग काट के बनावा थीन, कुछ समूचा बनावा थीन।
1: हाँ, हाँ,
0: तो
1: हाँ,
0: पत्ते का बढ़िया से धोए हुए रहे उमन, चाहे काट के चाहे जैसे वही घोल में मिलाए के, जैसे आप लोग पक कर प्याज व्याज का बनाओ थू तो मिला ले थू प्याज घोल में, वही तरीके से यहू के मिलाए के बढ़िया से, ना बहुत ज्यादा गीला रहे
1: हाँ,
0: और ना बहुत ज्यादा कड़ा रहे,
1: तू पत्ता पे ऐसे लेप लगा दे।
0: हाँ, चाहे लेप लगा दें चाहे काट के अगर बनाओ थे तो वैसन बना ले
1: अच्छा,
0: घोल के वही में।
1: हाँ हाँ
0: और बूंद बूंद चुआई के जोन बटे गर्मा गर्म बढ़िया पकौड़ी छान ले बहनी।
1: अच्छा अच्छा
0: और इतना बढ़िया तले के बाद ये कुरकुरा हो जाता, काहे कि चावल का आटा मिला रहा था, है ना। तो चावल का आटा मिले से बढ़िया कुरकुरा हो जाता, जैसे लड़कियों आजकल अंग्रेजिया में कहते हैं क्रंची क्रंची। तो बढ़िया कुरकुरा पकौड़ा बहिया खाए। और जोन बटे ओके साथ अगर चाहें तो इतनी समय मौसम है करौंदा का, तो चटनी तो वैसे सब पकौड़ी के साथ बनाते हैं, लेकिन हम तो कहब कि इतनी समय करौंदे के चटनी बनाए के पकौड़ी के साथ खाएं,
1: कहे पे सुहागा हो जाए।
0: कहे कि ऐसे बहनी देखा अजवाइन के पत्ते का स्वाद थोड़ा वैसन रहा था, है ना। तो मन जब खट्टा खट्टा करौंदे का अलग ही स्वाद रहा था चटनी के, करौंदे के चटनी से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। ये हमार पसंद है, बाकी भैया हरिन के जैसे दूसरे चटनी पसंद हो तो अनुसार बना ले, है ना।
1: तो इतना देखा तू बड़ा नीक जोन बटी बताओ।
0: हाँ?
1: आज हम जाते ही हमहू अपने घरे में कोशिश करब कि हमहू बनाए ले।
0: वैसे काहे कि तोहार जोन हतवा बाटे आगे कहती उधरे ढेर सारी झौड़ियान बाटे
1: देखे हो, हम हाँ, हाँ, ध्यान दिया तू हमरे आवत हो चक्कर पकड़ तकते ही रह तू हमरे,
0: काहे न ताकि बड़ बहनी हो कबहू जरूरत पड़ी हुआ तो हम समेट ले।
1: हाँ, तो देखा तू हमें जोन बा इतना नीक जोन बा अजवाइन के पत्ते का पकौड़ा बताओ, तो हम सोचा थे तो हाँ एक है और लता मंगेशकर जी की आवाज में गाइड फिल्म से सुनाओ थे गाना, तो सुनो बहनी भी सुने।
0: बिल्कुल।

0: सत्या
1: हाँ
0: अंगित सुन लियो ना।
1: हाँ
0: अब चलो बहनी हरण के संदेश सुना दिया जाए।
1: बिल्कुल
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमारा ईमेल एड्रेस है
5: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कोने बात के तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
6: बेसब्री से इंतजार रही।
1: देखा जमुना बहनी, वाकई में इंतजार तो रहत है।
0: हाँ।
1: और जहाँ बहनी हरिन का संदेश और सूचना उनकर विचार रहत है आवल वाला, तो मन तो वाकई में इंतजार करत है।
0: वास्तव में जब बहनी हरे हमें सबके व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से संदेश भेजे थे इनको, तो
1: मन प्रसन्न हो जाता है ना। मुन्ना देखा अब घरे चले की बेला है,
0: तो बहने से विदा लीजिए।
1: बिल्कुल,
0: राम
1: राम बहनी हरे।

अभी ग्रामीण बहनें अपना कार्यक्रम पनघट सुन रही थीं। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम एफ 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर 2 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, बने रहे हमारे साथ।

0: having no criminal record. Both houses of parliament adjourned soon after assembling amid ruckus. Lok Sabha scheduled to take up anti-paper leak amendment bill today. Air India launches Easy Connect hub and spoke model at Amritsar Airport, connecting Punjab with 27 global destinations. 16 Maoists, including 6 top commanders, surrender before security forces in Jharkhand. Government introduces system of registering E0 FIRs in cybercrime cases across 18 states and union territories. 7.1 magnitude earthquake hits southern Japan, tsunami warning issued. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
1: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज

0: दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
1: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
2: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
4: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन IR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
5: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं।

0: कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
2: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशू रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशू शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी

0: आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 में और ये समय है NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
3: और राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
3: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
3: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
3: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
3: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
3: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं
2: जी।
3: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
3: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं, कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
2: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
3: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध

0: दोहन हो रहा है।
1: जी,
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: जी श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
1: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना।
0: जी, तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जी

0: का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना।
1: जी तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
1: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
0: NCERT की 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है।

0: हाँ तो बच्चों, बताओ सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
6: नमस्ते बहन जी।
7: नमस्ते दीदी।
8: नमस्ते दीदी।
9: नमस्ते दीदी।
10: नमस्ते दीदी।
11: नमस्ते बहन जी।
12: नमस्ते शिखा।
0: अरे दीदी जी, आप
12: आइए आइए।
0: नमस्ते बहन जी।
12: नमस्ते, यहाँ बैठिए
0: जी,
12: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
0: अरे बहन जी, कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
12: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
0: हाँ ये तो है।
12: अरे लो, लता के बापू भी आ गए।
0: राम राम दादा।
13: हाँ,
0: कैसे हैं आप?
13: राम राम। अरे आप यहाँ? लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
0: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
13: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
0: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
13: अच्छी? और ये छोरी, मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
0: अरे लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ बैठो मेरे पास।
3: जी, जी, जी।
13: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी, आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
0: जी।
5: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी मां भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
0: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में

0: सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
1: दीदी लता, दीदी लता।
0: लता?
2: जी दीदी।
0: क्या ये लता?
1: जी दीदी।
0: अरे नहीं।
2: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
0: अच्छा,
2: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े, पर बछड़ा दौड़ता गया, सारे थक गए, पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
0: अच्छा
2: जी दीदी।
0: लता, ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भरी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वाह रे पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने। हाँ
2: बापू, मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: हाँ। नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही हैं बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इसमें हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है, वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं क्यों ना हूँ, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें, वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
3: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: हैं?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो
3: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
3: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
3: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े हूँ, बाप हूँ बाप।
3: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
0: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी ना रखें।

0: ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देती हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है
0: भाई।
2: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
1: हाँ हाँ,
2: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
1: अच्छा,
2: उसके सचमुच के बाल है।
1: ओहो,
2: और एक कंघी भी है।
1: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
2: ठीक है।
0: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूं।
1: ठीक है आ जाना।
0: अच्छा
2: मैं भी आ जाऊं लता।
1: हाँ हाँ,
0: मैं भी आ जाऊं लता।
1: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
3: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

राष्ट्र के निर्माण में, संसार के निर्माण में अपना योगदान दें। हमें क्या मिला महत्वपूर्ण ये नहीं है, हमने क्या दिया महत्वपूर्ण ये है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। 3 बज चुके हैं और इसी के साथ संपन्न होती है हमारी ये सभा। शाम की सभा धरती के गीत कार्यक्रम से आरंभ होगी। आज हम आपको सुनवाएंगे 13 सलाल और साथियों के गाए लोकगीत। इस बीच विविध भारती के नेशनल नेटवर्क कार्यक्रम FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर जारी रहेंगे।

जिंदगी एक बार मिली है, इसका सर्वोत्तम उपयोग यह है कि हम समाज को अपना सर्वोत्तम दें, अपनी प्रतिभा से, अपने संसाधनों से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से समाज का भला करें।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं धरती के गीत। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। कलाकार हैं तेरस लाल और साथी। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में देवी गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं धरती के गीत। कलाकार हैं तीरथ लाल और साथी। आइए अंत में सुनते हैं इनकी स्वर में कहरवा।

0: अभी आप सुन रहे थे धरती के गीत, कलाकार थे तेरस लाल और साथी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कुछ ही पलों में युवा साथी सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग डियर लिसनर्स। भाई शाम हो गई है और दिन भी ढलने लगा है, और वैसे मौसम भी धीरे धीरे अपने मिजाज बदल रहा है। और ऐसे मौसम में ना मन भी कुछ अलग सा हो जाता है। कभी चाय पीने का मन करता है तो कभी

0: किसी अपने से बात करने का मन, और कभी तो ऐसा लगता है कि बस अपना फेवरेट गाना सुन लें। और ये संगीत हमारी यादों, भावनाओं और कई बार हमारे मन की आवाज़ भी बन जाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, इस शाम को और ख़ास बनाने के लिए हम लेकर हाजिर हैं युवाणी का एक और नया एपिसोड, जहां आज मैं ज्योति
0: और मैं हूँ सेजल।
1: बात करेंगे आपसे आज के टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा विषय है संगीत और मानसिक स्वास्थ्य।
0: तो ज्योति, एक बात बताओ, क्या मतलब तुम्हें और हमारे दोस्तों को, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी गाने को सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने मूड के अकॉर्डिंग हम खोजते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सेजल तुमने। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब
0: तुम खुश हो तो प्लेलिस्ट में कुछ और हो, है ना, और जब थोड़ा सा उदास हो तो कुछ और।
1: बिल्कुल, और ठीक वैसे ही जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस समय म्यूजिक कुछ और, रात को सोने से पहले उस टाइम का म्यूजिक कुछ और। मतलब कोई ऐसा गाना सुनते सुनते कभी कभी मतलब होता है ना कि हम सो जाते हैं।
0: हाँ,
1: तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हमारे मूड के अकॉर्डिंग जो हमारे प्लेलिस्ट होती है वो सारी सेट होती है।
0: बिल्कुल,
1: कि सुबह उठना है अगर हमें तो हमें एकदम एनर्जेटिक सा सॉन्ग सुनना है ना, जिससे हम एकदम तरोताजा हो जाए।
0: और कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि जब हम कोई काम कर रहे हो तो बैकग्राउंड में बस एक म्यूजिक चल जाए।
1: बिल्कुल,
0: तो वो काम भी कब फिनिश हो जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और अचानक अगर वो म्यूजिक बंद हो जाए तो तुम्हें नहीं लगता है कि कुछ मिसिंग सा रह जाता है?
1: मुझे भी ऐसा लगता है। और पता है सबसे अच्छी बात ये है म्यूजिक की, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो जब हम म्यूजिक चला के कर रहे होते हैं तो वो काम कितनी जल्दी हो जाता है पता ही नहीं चलता।
0: ये यू कहो माइंड डाइवर्ट हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: स्ट्रेस नहीं रहता।
1: और कभी कभी ना बिना किसी खास वजह के हम कोई पुराना गाना चला लेते हैं, वही गाना जिसे शायद महीनों से नहीं सुना गया था, लेकिन जैसे ही वो बजता है तो कोई पुरानी याद, कोई ऐसा पल जो उस गाने से जुड़ा हो, वो अचानक से वापस सामने आने लग जाता है। और यही तो खूबसूरती है संगीत की।
0: बिल्कुल, वैसे कमाल है ना कि एक धुन जो कभी हमें हंसा सकती है, कभी हमें भावुक कर सकती है, कभी हमारी पुरानी यादों को जगा सकती है, और कभी हमारे मन को थोड़ा सा सुकून दे जाती है। शायद हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा।
1: बिल्कुल, तो आखिर ऐसा क्या है इन धुनों में जो हमारे मूड को इंस्टेंटली हैप्पी कर देता है? इसी सवाल के जवाब तलाशेंगे हम आज की चर्चा में, जहां बात होगी संगीत और मानसिक स्वास्थ्य की। तो आज की हमारी चर्चा शुरू भी होगी उसी चीज़ के साथ जिसकी बात हम कर रहे हैं दोस्तों, एक खूबसूरत धुन के साथ। सुनते हैं ये गाना और लौटते हैं इसी चर्चा के साथ।

0: तो म्यूजिक की खूबसूरत धुन के साथ हम लौट आए हैं और अब बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को आगे। दोस्तों, अक्सर हम म्यूजिक को सिर्फ मनोरंजन का साधन मानते हैं, क्यों ज्योति?
1: बिल्कुल,
0: लेकिन खाली समय में गाने सुनना, सफर के दौरान या फिर अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट के साथ कुछ पल बिताना, ऐसा लगता है मानो संगीत हमारी जिंदगी का बेहद खास हिस्सा है। संगीत बिना कुछ पूछे हमारे मन की स्थिति को समझने जैसा एहसास भी तो देता है।
1: बिल्कुल, और कभी कभी हम अपने इमोशंस को वर्ड्स में नहीं बता पाते। हमें समझ में नहीं आता कि हम उदास क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, या भीतर से इतना भारी क्यों फील हो रहा है। लेकिन उसी वक्त कोई गाना सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे मन की बात कह दी।
0: और आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारा मन लगातार किसी ना किसी चीज में व्यस्त रहता है, चाहे वो पढ़ाई का स्ट्रेस हो, काम की जिम्मेदारी हो, या फ्यूचर की टेंशन हो, या रोजमर्रा की भागदौड़। इन सब के बीच मानसिक तनाव हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। आपने फील किया होगा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कभी कभी बस फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कुछ देर के लिए ही सही, पर हम उस स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स वही रहती हैं, लेकिन मन को एक छोटा सा ब्रेक मिल जाता है। और संगीत सुनने से शरीर में डोपामाइन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं, जो प्रेशर और प्लेजर और रिवॉर्ड से जुड़ी होती है, इसलिए हमें शायद थोड़ा और अच्छा फील होता है।
1: बिल्कुल, और लेकिन हालांकि दोस्तों, म्यूजिक किसी मतलब मानसिक स्वास्थ्य समस्या का इलाज नहीं है, और ना ही इसे प्रोफेशनल हेल्प का विकल्प समझना चाहिए। लेकिन ये सेल्फ केयर और इमोशनल वेलबींग का एक उपयोगी हिस्सा हो सकता है। और साथियों, ये जो म्यूजिक है हमें कभी स्कूल के दिनों की याद दिला देता है, कभी दोस्तों के साथ बिताए हुए पल की याद दिला देता है, तो कभी किसी सफर की याद, या फिर हमारे जीवन का कोई ऐसा समय जिसे हमने लंबे समय से याद नहीं किया था। संगीत का हमारी मेमोरी से गहरा कनेक्शन होता है। कोई धुन हमें किसी खास समय, जगह या भावना से जोड़ सकती है, और यही वजह है कि संगीत कभी कभी हमें नॉस्टैल्जिया भी दे देता है। और हम कहते हैं ना कि गाने जो होते हैं ना, वो हमारी एक तरीके से हमारी और हमारे बीच जो भी आसपास लोग हैं उनके बीच की एक कहानी भी गढ़ देता है ना।
0: हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ज्योति, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी बड़ी बड़ी चीजों से नहीं होता है। कभी कभी खुद के लिए कुछ मिनट निकालना भी एक सेल्फ केयर का हिस्सा होता है। अब जैसे अपनी पसंद का संगीत सुनना, कुछ देर शांत बैठना, या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना, ये सब हमारे मन को एक्सप्रेस करने और उसे रिलैक्स करने के तरीके हो सकते हैं। लेकिन म्यूजिक हमें अपने इमोशंस को पहचानने में मदद करता है, और जब हम अपनी भावनाओं को पहचानने लगते हैं तो उन्हें संभालना भी थोड़ा और आसान हो जाता है। और शायद इसीलिए हम सिर्फ संगीत सुनते नहीं हैं बल्कि उसे महसूस भी करते हैं।
1: म्यूजिक हमारे दिन को छोटे छोटे तरीकों से बेहतर बना सकता है। सुबह कोई एनर्जेटिक सॉन्ग, एक्सरसाइज के दौरान अपबीट म्यूजिक, यात्रा के दौरान कोई अच्छी प्लेलिस्ट, काम या फिर पढ़ाई के बीच एक म्यूजिकल ब्रेक, और दिन के अंत में एक सॉफ्ट और सूदिंग टोन, ये छोटी छोटी चीज़ें दिन के अनुभव को बदल सकती हैं। तो कुल मिलाकर संगीत हमारे मेंटल हेल्थ के लिए एक खूबसूरत सहारा बन

सकता है और ये हमारे मूड को बेहतर कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका मन थोड़ा परेशान हो या आप टायर्ड हो या फिर कुछ पल अपने लिए चाहिए हो, तो बस अपनी पसंद की धुन सुनिएगा। शायद आपकी समस्या तुरंत ख़त्म ना हो, लेकिन हो सकता है उसे देखने का आपका नज़रिया थोड़ा सा बदल जाए। और कभी कभी बेटर फील करने की शुरुआत के लिए इतना ही काफ़ी होता है। तो आज की चर्चा में बस इतना ध्यान रखिएगा कि म्यूजिक में नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, बट समटाइम्स इट गिव्स द माइंड अ मोमेंट ऑफ पीस एंड दैट मोमेंट कैन बी पावरफुल।

0: की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा लेके आते हैं जिससे हमारे दोस्तों का एंटरटेनमेंट भी हो और उन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। हम कहते हैं ना कि हम इन्फॉर्मेटेनमेंट लेके आते हैं आपके लिए, तो एंटरटेनमेंट तो हम आपको दे ही रहे हैं, चलिए साथ ही साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो आज हम बात करेंगे करियर की बात, जिसमें आज अभिनव प्रज्ञ पांडे जी की बातचीत है शिव कुमार राय जी से, बदलते पाठ्यक्रम में सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें इस विषय पर। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।

0: दोस्तों नमस्कार। युववाणी कार्यक्रम में इस बार हम एक ऐसा साक्षात्कार लेकर के आए हैं जो है करियर के ऊपर। करियर एक ऐसी चीज़ जिस पर न सिर्फ युवा बल्कि उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार और पूरे एक समाज का दायित्व, पूरे गांव का दायित्व टिका रहता है, खासकर अगर वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो एक रिश्तेदार हैं जो घर परिवार के लोग हैं बहुत अपेक्षाओं से देखते हैं। और ख़ासकर अपेक्षा किसकी जो कि चलन में दशकों से चला आ रहा है, सिविल सेवा, सिविल सेवक बनने की। क्या ये इतना सरल है? इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं? और इस पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शिव कुमार राय जी को, जो कि वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं। साहित्यिक जीवन भी इनका बहुत समृद्ध रहा है। शिव कुमार राय जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में और युववाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: भारत विश्व का सबसे युवा देश है। भारत का युवा आज भी, अगर हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करें, तो ज़्यादातर जो एक यूथ है, जो एक प्रतियोगी परीक्षा की भीड़ आती है, वो गांवों से जुड़ी होती है किसी न किसी तरह से। किसी के पिता ज़मीन बेच करके भेजते हैं, किसी के पिता किसी प्रकार से कोई भी व्यवस्था करके भेजते हैं ताकि उनका बेटा या उनकी बेटी जाए और अच्छी कोचिंग करके एक अच्छा सिविल सेवक बने। सबसे पहले तो हमको ये बताइए, शुरुआत कैसे करें?
1: अभिनव जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही और पूछी कि हम सिविल सेवाओं में सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ आकर्षण हमारे जो वर्तमान परिदृश्य के लिए और पहले से लिए भी ये बहुत ही आकर्षित करता रहा है। शुरुआत करने की जहाँ तक बात है, कहीं ना कहीं ऐसा, चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सिविल सेवाओं में आने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है, स्नातक होना पड़ता है, तो इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद जब आप किसी भी प्रकार के प्रवेश परीक्षा में भाग लेते हैं, उसके बाद चाहे आप ग्रेजुएशन आर्ट साइड से करते हैं, साइंस साइड से करते हैं, बीटेक करते हैं, आजकल बीटेक बहुत सारे लड़के सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय ग्रेजुएशन का जो पीरियड होता है, इसी में आपको सबसे पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि क्या ग्रेजुएशन करने के बाद आप तत्काल नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनियों में जाना चाहते हैं, या सिविल सेवाओं की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, सिविल सेवाओं की तैयारी एक पूर्णकालिक काम है। इसको ये सोचते हुए कि नहीं नहीं चलो ग्रेजुएशन करने के बाद मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ और उसके साथ सिविल सेवाओं की तैयारी करता हूँ, ये मेरी समझ से शुरुआत के लिए बहुत ही गलत कदम होगा। बाद में तो ऐसा हो सकता है कि जब मान लीजिए आपने एक दो बार सिविल सेवाओं की तैयारी की, प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर किया, कहीं पहुंचे, कहीं फेल हो गए, कहीं असफलता मिल गई, तो आपका एक बेसिक तैयार हो गया, आप चलिए कहीं आवश्यकता पड़ी आपको तो आपने नौकरी कर ली और साथ में आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत ही अगर आप ये सोचेंगे कि पार्ट टाइम तक से करें तो ये गलत कदम होगा। तो मेरी समझ से सबसे पहले जो ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको अपने सिलेबस के साथ साथ सिविल सेवाओं का वो निकालिए कि क्या क्या है उसमें, इनके सिलेबस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप सिलेबस निकालिए, आप देखिए कि उसमें कि क्या क्या आपकी पढ़ाई हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है, क्या इंटरमीडिएट तक आपने अच्छी तैयारी अगर की होगी तो बहुत सारी चीज़ें तो उसमें वैसे ही आ जाएंगी। जैसे सामान्य विज्ञान, उसका जो सिलेबस होता है वो आमतौर पर हाई स्कूल और इंटर के इक्विवेलेंट ही होता है। यदि आपने हाई स्कूल इंटर की तैयारी अच्छे से की है, अच्छे नंबर पाए हुए हैं, तो आपकी पहले से तैयारी हो रखी है। इसी प्रकार सारे जब सिलेबस आप देख लेते हैं, उसके बाद उसमें कुछ नई चीज़ें होंगी, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें आपने ना पढ़ी हो, तो ऐसी परिस्थितियों में आप अपने जो कॉलेज लाइफ है उसके साथ एक मेंटेन करके एक बेसिक तैयारी शुरू करें, जिससे कि फिर आगे चल करके आप उसको पूर्णकालिक तैयारी में कन्वर्ट कर सकें।
0: सबसे सही समय, उपयुक्त तो समय आपके हिसाब से क्या है सिविल सेवा की तैयारी शुरू करने का?
1: जैसा कि मैंने शुरुआत की कि ग्रेजुएशन का टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उम्र के हिसाब से भी देखें तो सिविल सेवाओं की तैयारी के भरने की जो स्थिति शुरू होती है वो 21 साल की उम्र में होती है। आमतौर पर जो बच्चा ग्रेजुएट करने जा रहा होता है, इंटरमीडिएट पास करते करते 17.5-18 साल की उम्र हो जाती है। ठीक है, 18 साल की उम्र हो गई, अब जो भी ग्रेजुएशन है आपका, कहीं पे 3 का है, कहीं पे 4 का है, ज्यादातर अब जो है 4 साल के हो गए हैं, यानी कि 18 से 4 22 साल। तो यानी आप ग्रेजुएट करके जब निकल रहे हैं और उधर सिविल सेवा की उम्र हो रही है, तो ये दोनों कॉन्साइड कर रहा है, एकदम बिल्कुल एक साथ साथ लगा हुआ है। तो जब आप सिविल सेवा की तैयारी का मूड बना लीजिए कि हमें तैयारी करनी है, तो आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही आप इसको माइंड मेकअप करना शुरू किए, और फाइनल ईयर तक आते आते इस तरीके से होना चाहिए, एक मोटा मोटी सिलेबस आपका कवर होना चाहिए।
0: कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो विषय हमने ग्रेजुएशन या स्नातक में लिए होते हैं, वो हमने लिए तो होते हैं लेकिन हम उसमें उतने सहज नहीं होते हैं, तो विषय का चयन कैसे कोई करे?
1: अब जो बदलता हुआ परिवेश है उसमें विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। देखिए, आज से 15 साल पहले तो विषय बहुत महत्वपूर्ण होता था जब हम लोग तैयारी करते थे या हमारे जस्ट जूनियर बैचेज तैयारी करते थे। अब आज की समय में, आज की स्थिति ये है, जो सिलेक्शन हमारा होता है मुख्य परीक्षा के आधार पर होता है, प्रारंभिक

0: सीनियर बैचेज तैयारी करते थे। अब आज के समय में आज की स्थिति ये है, जो सिलेक्शन हमारा होता है मुख्य परीक्षा के आधार पर होता है। प्रारंभिक परीक्षा तो केवल स्क्रीनिंग के लिए होता है कि आप मुख्य परीक्षा में भाग ले सकें, तो उसका कोई बहुत रोल नहीं है। और वैसे भी आज की डेट में किसी भी सिविल सेवा की परीक्षा में, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कहीं पर भी प्रारंभिक परीक्षा में कोई सब्जेक्ट नहीं आता। मुद्दा खत्म हो गया, प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो सब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। जीएस और एप्टीट्यूड टेस्ट का, सीएसएटी जिसको बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब आते हैं मुख्य परीक्षा पर। जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है मुख्य परीक्षा, उसमें आज की डेट में 9 पेपर्स हैं। 2 पेपर तो सिंपल भाषाओं के होते हैं जो कि क्वालिफाइंग होते हैं, उसमें केवल क्वालिफाई करना होता है ताकि आपकी मुख्य परीक्षा के अन्य विषयों के जो एग्जाम आपने दिए हैं वो उनकी चेकिंग हो सके
1: जी।
0: अब उसमें जो एक पेपर होता है निबंध का, और जीएस के पेपर होते हैं 4, 250 नंबर के, 250 × 4 यानी 1000 नंबर का आपका जीएस है, और वैकल्पिक विषय के केवल 2 पेपर हैं, यानी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको लेने हैं, वो भी 250 के हैं यानी 500 नंबर के। रेशियो देखें तो जीएस कितना है 1000 नंबर का, सब्जेक्ट कितना है वो 500 नंबर का, तो महत्ता किसकी ज्यादा होगी, जीएस की होगी। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपस में मिले जुले होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है फिर भी पढ़ना पड़ा, और वैसा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जो अलग है, तो यदि वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से मैच करता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, तो उनको आप नए तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नया सब्जेक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यद्यपि बेहतर है कि यदि आप पहले से पढ़े हुए तो बहुत अच्छी बात है।
1: एनसीईआरटी की किताबों की क्या भूमिका देखते हैं आप इसमें?
0: एनसीईआरटी की किताबें समझ बेहतर करने के लिए बहुत ही अच्छी किताबें हैं। एनसीईआरटी तो इतनी सारी किताबें प्रकाशित करती है जो सब आप पढ़ नहीं सकते।
1: एक समय ऐसा था जिस समय आप लोग पढ़ाई करते होंगे किताबें ढूंढ ढूंढ करके पढ़नी पड़ती होंगी, आज आप एक लाइन लिखिए आपके सामने सूचना का भंडार चला आता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के समय में क्या पढ़ना है इससे ज्यादा कहीं जरूरी ये है कि क्या नहीं पढ़ना है?
0: यद्यपि हमारे समय में सूचना का भंडार उतना नहीं था जितना एक क्लिक पे आज सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन कन्फ्यूजन उस समय भी थे
1: जी।
0: सिविल सेवा के यदि आप जब एग्जामिनेशन होता है उसके पेपर देखिए, सिलेबस देखिए, जो विज्ञापन आता है उसमें देखिए, वो क्या लिखते हैं उसमें, वो ये लिखते हैं कि एक सामान्य युवा जो अभी हाल का स्नातक हुआ है उसको एक हर चीज़ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको रिसर्च नहीं करना है, समाज के बारे में आपकी एक समझ होना, कैसे निर्णय लेना है उन कोई समस्या आती है, यह जानने के लिए आपके विषय और परीक्षा ली जाती है। ऐसी स्थिति में आपसे किसी भी विषय की बहुत डीप नॉलेज करने की जरूरत नहीं है। वैकल्पिक विषय है उसमें एक बार फिर भी हो सकता है कि आप डीप नॉलेज करें, डीप नॉलेज में जैसे ही जाएंगे आपकी अन्य चीजें छूटती चली जाएंगी।
1: एक पूरा एम्पायर है कोचिंग्स का, जो बच्चे सीमित संसाधन है जिनके पास, जो खासकर गाँवों से आते हैं, जो कोचिंग्स का एक एम्पायर है उसमें एक अलग सा मानसिक दबाव उन बच्चों के ऊपर आता है जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं। क्या बिना कोचिंग किए आईएएस या सिविल सेवा की परीक्षा निकालना असंभव है?
0: मैंने कोई तैयारी करते समय किसी भी कोचिंग की सहायता नहीं ली थी। जब साक्षात्कार देने का अवसर आया तो उस दौरान जरूर जो आजकल ये होते हैं मॉक इंटरव्यूज होते हैं वो मैंने हिस्सा लिया था, लेकिन उसको एक तरह से प्रॉपर कोचिंग नहीं कहा जा सकता। ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपने पढ़ा, मेहनत किया, अपना टाइम टेबल बना करके अध्ययन किया, जो किताबें बेसिक हैं उनको आपने पढ़ लिया है ना, भारतीय संविधान पढ़ लिया, अर्थव्यवस्था पढ़ ली, जो भी चीज़ें हैं उन सिलेबस के अनुसार पढ़ लिया और सिलेबस देखा, कुछ अगले सालों के पेपर्स देखे और उसको आपको लग रहा है कि हम कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा हिस्सा हो सकता है जो आपको वास्तव में नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं कोचिंग की भूमिका स्वीकार करता हूँ। अपनी पढ़ाई का खुद आपने मूल्यांकन नहीं किया है और पहले ही दिन से आप अपने ऊपर दबाव ले लेते हैं, क्योंकि एक तरफ से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसकी क्लासेज अलग चल रही हैं, उनके एग्जाम्स अलग हो रहे हैं, और इधर आपने साथ में कोचिंग शुरू कर दी, तो ऐसी परिस्थिति में आप एक तरह से एग्जाम देने से पहले ही बर्न आउट हो जाएंगे। तो मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा आपको। यदि ऐसा लगता है कि किसी जगह पे आप कमजोर हैं तो वहां पे आप कोचिंग जरूर कीजिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए मुझे कोचिंग करना है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि वो आपका समय ज्यादा बर्बाद करेगा। आप टारगेटेड कोचिंग करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, न कि भीड़ में सब लोग कोचिंग कर रहे हैं इसलिए हम कोचिंग करें, ये ठीक नहीं है मेरी समझ से।
1: एक और बात आती है, जिन सीनियर्स कभी कहा करते थे कि आंसर राइटिंग यानी कि उत्तर लेखन ये बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है मेंस के लिए, तो उसकी तैयारी आप तब शुरू कर दें जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये सही तरीका है?
0: इसमें भी मैं यही कहूंगा, आपकी ना जो पढ़ाई का जो बैकग्राउंड है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं और आपको ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर मिल रहे हैं, इसका मतलब आपके लिखने का तरीका ठीक है, क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी जो कापियां आपने लिखी उसको भी तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का टीचर ही जांचेगा। तो यदि उस

0: प्रकार के टीचर ने आपको ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर दिए, इसका मतलब लिखने का तरीका आपका ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी समय ये मान करके आपने माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है, तो अपने उत्तरों को उसी समय लिखने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। ये इंतजार मत कीजिए कि जब मैं सिविल सेवाओं की मेंस की और प्री की तैयारी करूंगा उस दौरान मैं लिखने का अभ्यास करूंगा, ये तो डे टू डे प्रैक्टिस है। तो इसी प्रकार से जब मेंस भी है तो जब आप तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया अगर है, तो उस दौरान पिछले 5-6 सालों में लगातार हर साल तो एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लिखने का तरीका उसी समय शुरू कर दीजिए। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि प्री जब दे लूंगा, क्योंकि प्री और मेंस में बहुत गैप कम होता है, मुश्किल से 3 या 4 महीने। तो 3-4 महीनों में आप लिखने का अभ्यास नहीं कर सकते, यह अभ्यास आपको सतत करना पड़ेगा।
1: पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या कोई एक कोर्स है या फिर एक सतत प्रक्रिया है अपने व्यक्तित्व को निखारने की, उस लायक बनाने की कि आप सिविल सर्विसेज में चयनित हो सकें? क्या तरीका है, आपने क्या तरीका अपनाया था?
0: जब माइंड मेकअप आपने कर लिया कि मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूं, तो आपके प्रतिदिन के व्यवहार में ऐसा होना चाहिए। अब आप अगर ग्रेजुएशन के पीरियड में रोज 10 बजे सुबह सो के उठ रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जब मैं सिविल सेवा की तैयारी करूंगा तो सुबह 6 बजे उठने लगूंगा?
1: बिल्कुल सही बात।
0: तो आपको तो ये अनुशासन बनाना पड़ेगा ना, मेरा एक टाइम टेबल है पढ़ने का, यही व्यक्तित्व तो परीक्षण है और कुछ नहीं है।
1: अच्छा, ये भी सर एक प्रश्न था कि करंट अफेयर्स जो उसकी उसकी तैयारी या कोई उसका विशेष तरीका होता
0: उसका
1: है?
0: उसका विशेष तरीका यही है कि आप प्रतिदिन 1 या 2 अखबार पढ़ें, एक हिंदी एक अंग्रेजी का अखबार पढ़ें, एक कोई स्तरीय मैगजीन लें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, आप किसी विषय के बीच में अच्छा समझ उत्पन्न होना। तो इन सब चीज़ों को आप रेगुलर जब पढ़ेंगे, रेगुलर उस पर डिस्कशन करेंगे, तभी आप एक निर्णायक भूमिका वाली रूप में आप अपने सवालों के आंसर दे पाएंगे।
1: बिल्कुल सर, एक आज जो खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए छात्र हैं, उनके मन में एक शंका है कि वो मीडियम यानी कि माध्यम अगर हिंदी रखते हैं तो चयन की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। ऐसा खासकर आज के परिदृश्य में आपको ऐसा लगता है क्या?
0: देखिए, ये सवाल हम लोगों के समय में भी था, लेकिन हमें यही महसूस किया कि आपकी क्वालिटी महत्वपूर्ण है, माध्यम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप सवाल का उत्तर अपनी भाषा में अच्छे से देना जानते हैं तो वह निश्चित रूप से जांचा जाएगा और उस पर नंबर मिलेंगे। मैं तो यही कहूँगा, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितने अच्छे से उत्तर लिखते हैं ये महत्वपूर्ण है।
1: बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पहले ये दबाव रहता है पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए कि कहीं पर सेटल हो जाओ, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहना जो कि तुम्हारा सपना है। कई लोग ऐसा कर भी ले जाते हैं कि कहीं पर उनको कोई एक जॉब मिल जाती है, ग्रुप बी पोस्ट या ग्रुप सी पोस्ट कुछ भी, फिर उसके बाद वो तैयारी शुरू करते हैं। ऐसे में क्या उनकी राह अधिक कठिन हो जाती है? क्या अगर कोई पहले से कहीं पर नौकरी कर रहा है वो सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी करना चाहे तो कैसे करे?
0: देखिए, इसमें कुछ निर्णायक रूप से कह पाना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि दोनों तरह के एग्जांपल्स हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने छोटी नौकरियों से शुरुआत की और सिविल सेवा में प्रॉपर तक पहुँचे, और ऐसे लोग भी बहुत सारे हुए जो ऐसा लगता था कि किसी भी दिन सिविल सर्विसेज में आ जाएंगे, मगर वो साक्षात्कार तक पहुंचने के बावजूद अंत में बहुत ही सारी छोटी नौकरियों से उनको समझौता करना पड़ा। तो इसका किसी के लिए निर्णायक रूप से उत्तर दे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको सिविल सेवा की तैयारी करनी है तो आप उसी तरीके के एग्ज़ाम्स को देना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सारे एग्ज़ाम्स भर रहे हैं, बेहतर है कि आप पहले से निर्धारित कर लें कि मैं UPSC और साथ में UPPCS, ये आप बहुत होगा तो आप अगल बगल के एक स्टेट जैसे यूपी बिहार PCS जैसे एग्जाम को दे। लेकिन अगर आप सोचें कि 15 एग्जाम हम देंगे और 15 में सफलता पाएं तो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। बेहतर है कि एक प्रकृति के एग्जाम दीजिए और साथ में एक अल्टरनेटिव रखिए कि जैसे मान लीजिए कि UPPCS और UPSC में नहीं हो पाया तो मैं चलिए ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, नेट मैंने निकाल लिया, यदि ये नहीं होता है तो मैं इधर टीचिंग लाइन में जाऊँगा। लेकिन बहुत ज़्यादा विकल्पों के पीछे भी भागेंगे तो आप निश्चित रूप से चिड़िया की आँख की तरह निशाना नहीं लगा पाएंगे। आपको लगाना है तो थोड़ा सा फोकस करना ही पड़ेगा।
1: शिवकुमार राय जी हमेशा से ही सिविल सेवक बनना चाहते थे या मन में कुछ और भी था?
0: शुरुआत से जब से इलाहाबाद आया था तब से मेरे दिमाग में था। हाँ, ये जरूर है कि मुझे लिखना अच्छा लगता था और मैं स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत सारे अखबारों में लिखता था। ये चीज़ मेरे जब मैं नौकरी कर रहा था उस दौरान भी थी, इसीलिए शायद मैंने जल्दी ही इनकम टैक्स कमिश्नर बनने के बाद जल्दी ही VRS लेकर के इसमें पुनः आगे बढ़ने का फैसला किया।
1: लिखने की आदत थी, इसने भी तैयारी में कुछ मदद की?
0: बहुत बहुत मदद की। आप देखिए, इसमें एक निबंध का पेपर होता है, चाहे आप कोई भी सिविल सेवा का एग्जाम दीजिए, चाहे UPSC हो, और ठीक ठाक नंबर होता है उसका, 250 नंबर का है आज की डेट में यहाँ पे, और यूपी

0: पीसीएस में भी 150 नंबर का है। मैं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बोलता हूँ, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग कोई जरूरी नहीं कि हर कोई कहानी लिख सके, हर कोई कविता लिख सके, लेकिन रोज़ डायरी तो लिख सकता है। आज दिन भर मैंने क्या किया, आज मेरा दिन कैसा गुजरा, इस पर रोज़ तो आप एक पेज लिख सकते हैं। यदि यह भी आप डेली लिखते हैं कि नहीं आज मेरे साथ ऐसा हो गया, आज मैंने ऐसा सोचा था पढ़ने का लेकिन आज मैं नहीं पढ़ पाया, कल मैं इसको कोशिश करूंगा दूर करने की, तो एक तो ये प्रेरणात्मक बात हुई होगी आपके लिए, और कैसी आपकी भावनाएं अंदर दिन में थी वो आपने कागज पर उतारी।
1: तो सर समय लगभग खत्म होने को है
0: जी,
1: अंतिम प्रश्न
0: जी,
1: सफलता सबको नहीं मिलती
0: जी,
1: हो सकता है सफलता के तरीके अलग अलग हों, मायने अलग अलग हों, बहुत सारे लोग सिविल सेवा में चयनित हो जाते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने बहुत मेहनत की और उसका चयन नहीं हो पाया, तो क्या दुनिया वहीं ख़त्म हो जाती है क्या उसके लिए?
0: मैं इसका उत्तर देने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगा।
1: बिल्कुल प्लीज़।
0: देखिए राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि न किसी हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, न किसी हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा,
1: हमारे पाँव का काटा हमी से निकलेगा,
0: सिर्फ हम ही से निकलेगा।
1: बिल्कुल।
0: देखिए आप जब सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उसके लाभ यदि आपको मिलने वाले हैं और यदि आप नहीं हो पाए तो उसका नुकसान भी आप ही को होना है। पहले से माइंड मेकअप करके रखिए कि भाई ऐसा हो सकता है कि यदि मैंने 100% तैयारी की है, अपना दिलो जान दिया है, लेकिन देखिए वहाँ पर क्या है कि सीटें तो लिमिटेड हैं
1: जी,
0: 1000 सीटें आई, 500,000 लड़के एग्ज़ाम देते हैं, हो सकता है कि 5000 बच्चे हों जो एकदम आप ही की तरह 100% पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 4000 बच्चों का ना हो, तो वो 4000 बच्चे ख़राब नहीं है, लेकिन सिस्टम चूंकि इस तरीके का है कि उसमें 1000 को सेलेक्ट होना है, तो ऐसी परिस्थिति में 4000 जो बच्चे जो 100% अपना एफर्ट किए हैं उनको सफलता नहीं मिलेगी, किसी न किसी तरीके से ऐसा उनको छांटने की प्रक्रिया में आपको बाहर आना पड़ेगा। तो ये मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है कि मेरा ना हो, दूसरे चांस हैं, तीसरे चांस हैं, उसमें आपका अगर आप लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। फिर भी यदि नहीं होता है तो दुनिया ख़त्म नहीं होती, आप वैकल्पिक चीज़ें कर सकते हैं। आप उसके बाद मैंने पहले ही बोला कि एक अल्टरनेटिव आप लेके रख चलिए कि भाई चलिए आपने टीचिंग लाइन में जा रहे हैं या कोई भी जो आपकी पसंद का काम है उसमें आप कर सकते हैं। सफलता मिलने में मुश्किल होगी लेकिन मिलेगी ही नहीं ऐसा मैंने मानना नहीं।
1: मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, हम ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में बैठे हैं, यहीं से अमिताभ बच्चन जी को अनाउंसर
0: तो के जी कहानी पता है जी,
1: ये सबको कहानी पता है कि उनको अनाउंसर के ऑडिशन में फेल घोषित कर दिया गया जी। उन्होंने ये बात कही भी कई जगह कि नियति तय करती है कि हमारे लिए बेस्ट क्या होता है, अगर मैं अनाउंसर बन गया होता तो शायद मैं आज वो अमिताभ बच्चन ना होता जो मैं आज हूँ। खैर बहुत अच्छा लगा शिवकुमार राय जी आपसे बात करके, हमें पूरी उम्मीद है कि खासकर जो युवा हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो सपना लेकर के मन में बैठे हैं, गांवों से आते हैं, उन पूरी अपेक्षाओं का भार है घर परिवार का उनके ऊपर कि नहीं एक दिन ये व्यक्ति सिविल सेवक बनेगा, उनको ज़रूर इस साक्षात्कार से जो आपने इतनी विस्तृत तरीके से बताया बिल्कुल मदद मिलेगी। अंत में चलते चलते अगर हमसे कुछ पूछना बचा रह गया हो या आप हमारे माध्यम से हमारे युवा साथियों से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें शिवकुमार राय जी।
0: देखिए मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। एक शेर के माध्यम से ही अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, ये बशीर बद्र साहब का शेर है कि हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।
1: क्या बात,
0: तो युवा वर्ग अगर जो चाह ले और वो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं दोस्तों, ये थे शिवकुमार राय जी जो कि वरिष्ठ अधिकारी हैं भारतीय राजस्व सेवा के। हमें पूरी उम्मीद है कि आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे इससे, क्योंकि सीखते रहना एक सतत प्रक्रिया है और जीवन ही सीखते रहने का नाम है। पूरी लगन के साथ तैयारी करें, ये विश्वास रखें कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि पढ़ाई कभी भी ख़राब नहीं जाती। और ये ज़रूर अपने आप से कहें कि लक्ष्य से अनजान में विक्षिप्त यायावर हवासा, जब कभी ऐसा लगे कि अब शायद और कितना कर दूं अब भी नहीं हो रहा है, तो ये पंक्तियां मुझे बहुत प्रेरित करती हैं कि लक्ष्य से अनजान में विक्षिप्त यायावर हवासा, चीखता हूँ भागता हूँ कल्पना के कल्पवन में, लू बनूँ या शीतलहरी या बहूँ तूफान बनकर, यूं करो निर्वात में तुम तर्जनी से शून्य लिख दो। तो वो जो तर्जनी से शून्य लिखना है वो आपको लिखना है, निर्वात आपको तय करना है और अपना भविष्य आपको तय करना है, क्योंकि अंततः आपकी सफलता और असफलता के बीच का जो गलियारा है आप वहीं पर खड़े होते हैं, और भविष्य जब तय हो जाता है तो उस गलियारे के एक ओर आपको जाना होता है। अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञा पांडे को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए युववाणी, सुनते रहिए आकाशवाणी, नमस्कार।
2: तो दोस्तों अभी आपने सुना

0: कुमार राय से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत और इसका विषय था बदलते पाठ्यक्रम में सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें।
1: और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी प्रेरणा पुंज की तरह, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान कवि की जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय संस्कृति, भक्ति और मानव जीवन को नई दिशा दी, जिनकी रचना रामचरितमानस आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती है।
0: जी हाँ, आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास की। दोस्तों, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाँव में माना जाता है। उनके जन्म वर्ष को लेकर कई मतभेद हैं, लेकिन सामान्यतः 1532 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कि जन्म लेते ही इन्होंने रोने के बजाय राम शब्द का उच्चारण किया, इसलिए उनका नाम रामबेला रखा गया।
1: लेकिन दोस्तों, इनका बचपन इतना आसान नहीं था। जन्म के कुछ समय बाद ही अपने माता पिता से अलग हो गए। एक संत नरहरि दास ने उनका लालन पालन किया और उन्हें शिक्षा दी। यहीं से उनके जीवन में भगवान श्री राम के प्रति भक्ति की नींव पड़ी।
0: इन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग दिया और भगवान राम की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। वो काशी, अयोध्या और चित्रकूट की ओर निकल पड़े। चित्रकूट के घाट पर ही उन्हें प्रभु राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, जिसके लिए रहीम दास जी ने भी लिखा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर।
1: उस दौर में धर्म और शास्त्र केवल संस्कृत एक संस्कृत तक सीमित थे, जिसे आम जनता समझ नहीं पाती थी। तुलसीदास जी ने लोक भाषा अवधि को चुना। विक्रम संवत 1631 चैत्र नवमी को उन्होंने अयोध्या में श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की।
0: उन्होंने राम को केवल एक राजा नहीं बल्कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और न्यायप्रिय राजा के रूप में स्थापित किया। रामचरितमानस के अलावा उन्होंने विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, कविता वाली जैसे महान ग्रंथों की भी रचना की।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी केवल एक संत या कवि नहीं थे, वो एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समन्वय यानी हार्मोनाइजेशन का संदेश दिया, संप्रदायों को जोड़ा, ज्ञान और भक्ति का मेल कराया।
0: उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अगर ईश्वर पर सच्चा विश्वास हो तो व्यक्ति संसार के दुखों से पार पा सकता है। संस्कृत के प्रकाट विद्वान होने के बावजूद उन्होंने जन सामान्य की भाषा में साहित्य रचा।
1: दोस्तों, आज प्रेरणा पुंज में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की उस अमर दास्ता को छुआ जो सदियों बाद भी हमारे समाज का मार्गदर्शन कर रही है।
0: और वैसे ज्योति, अब हमारे एक लास्ट सेगमेंट बचा है क्वेश्चनेयर का,
1: बिल्कुल,
0: जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है और हम हर दिन एक नया क्वेश्चन
1: लेकर आते हैं। और हम कल का क्या क्वेश्चन लेकर आए थे सेजन?
0: कि किस गैस के रिसाव से 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? और इसका उत्तर है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोनेट गैस के रिसाव से हुई थी।
1: और इसी कड़ी में हमारा आज का सवाल है, इलेक्ट्रिक आयरन में किस प्रकार के वायर का इस्तेमाल किया जाता है? आप अपने सही जवाब हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com। अगर आप चाहें तो आप हमें हमारे नंबर पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8004926250।

0: दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे यानी सेजल
1: और मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि

0: करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात 10 बजे। 10:30 पर लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे खेल दर्पण। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आप सुनेंगे प्रोफेसर देवदत्त सरोदे की वार्ता गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। रात 7:45 सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। इसमें आप मीरा तिवारी के स्वर में भजन और गीत सुनेंगे। रात 9:30 गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। 8:15 पर चित्रपट संगीत। 8:30 आप सुनेंगे सबरस कार्यक्रम। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सवेरे 7:30 राष्ट्रमंडल खेल मंडल 2026 की दैनिक रिपोर्ट प्रसारित की जाए।

रात 8 बजे संसद समीक्षा होगी, रात 9:30 बजे चर्चा का विषय है और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृषि जगत में प्रातः 6:35 पर किसान भाई डॉक्टर अतुल बावने से ब्रजेश शुक्ल की बातचीत सुनेंगे। प्रातः 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा, इसमें हम लेकर आएंगे डॉक्टर अंबुज त्रिपाठी की वार्ता। विषय होगा बच्चों में डायरिया, कारण, लक्षण और उपचार। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुनिएगा सवेरे 7 बजे। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा सवेरे 10:30 बजे। कलाकार होंगी अनुराधा श्रीवास्तव, कमलेश चंद्र यादव, पंचम लाल यादव और साथी। शाम 6:30 बजे पंचायत घर में लोकगीतों के कलाकार होंगे बाबूलाल दिवाकर। पंचायत घर में लोकगीतों के अलावा ग्रामीण भाई सतीश शुक्ल से नीति वचन सुनेंगे। गृहलक्ष्मी में 7:15 बजे बहनें सुनेंगी रूपक, समय का विज्ञान और जीवन दर्शन। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कहानीकार यशपाल पर आधारित किस्सा गोई। शास्त्रीय संगीत में दिन में 12:15 पर हम आपको सुनवाएंगे K.L. सूद का जल तरंग वादन। श्रोता अपने फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गाने सुन सकते हैं। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:50 पर आप S.K. घोष के स्वर में गीत और भजन सुनेंगे। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। नीचे सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में। पहली सूचना है, नीलेश सिंह सूचित करते हैं। उनकी पत्नी खुशबू, उम्र 30 वर्ष, कद 5 फीट 7 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। ये दिनांक 7 मई 2026 से अपने निवास स्थान चिल्ला थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज को सूचित करें।

कुराओं जनपद प्रयागराज से रमेश मिश्रा सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी नीतू मिश्रा, उम्र 24 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, शरीर की बनावट औसत है। ये दिनांक 24 अप्रैल 2026 से अपने निवास स्थान चैतेहा से दिन में लगभग 1:30 बजे से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है। इनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी मिलने पर थाना कोराओं जनपद प्रयागराज को सूचित करें। नजमा बेगम, पत्नी मोहम्मद अजाज, उम्र 22 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा सामान्य और शरीर की बनावट सामान्य है। ये दिनांक 9 मई 2026 से सवेरे लगभग 10 बजे से अपने निवास स्थान आज़ाद नगर थाना कुराओं जनपद प्रयागराज से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना कुराओं जनपद प्रयागराज को सूचित करें। ये सूचना है श्याम कुमार के बारे में। उनके भाई चंद्रमोहन उर्फ चंद्र निषाद सूचित करते हैं कि श्याम कुमार पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण, उम्र 40 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है और इनके शरीर की बनावट इकहरी है। इनके बारे में विशेष ये है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके बारे में किसी ये दिनांक 26 अप्रैल 2026 से अपने निवास स्थान बख्शी कला थाना दारागंज जनपद प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना दारागंज जनपद प्रयागराज को सूचित करें। यह सूचना है अनवारुल हक के बारे में। अनवारुल हक की बहन अंजुम हक सूचित करती हैं कि उनके भाई अनवारुल हक पुत्र स्वर्गीय मुमताजुल हक, उम्र 54 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। ये दिनांक 7 जून 2026 से शाम लगभग 6 बजे से जीटीवी नगर थाना करेली जनपद प्रयागराज से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने ग्रे रंग की पैंट और क्रीम कलर की शर्ट पहनी हुई है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना करेली जनपद प्रयागराज को सूचित करें। संबंधित फ़ोन नंबर कृपया नोट कर लें, 7007040698। सूचना समाप्त हुई। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 104.3 मेगाहर्ट्स पर। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देश गान।

0: एक बात ही बा कि औधू देखा अब अपन साधन से सिंचाई के उम्मीद बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया सही कही गया। देखा बरखा का जौन बने ये रुख जौन भैया देखा दिन ब दिन जौन है भैया घाम हो तो तेज और साथे साथे भैया कहीं कहीं तनी मनी बूनी पड़ी जाता है। मुला जब तक भैया देखा खुल के बारिश ने होए न हो तब तक भैया देखा धान के खेती जौन है करब बड़ा मुश्किल हो।
0: मैं देखा वो धान पान और केरा ये सब पानी के चेहरा।
1: बिल्कुल कही है बिल्कुल।
0: तो धाने का खेती तो मुख्य रूप से पानी का खेती बा। अब सवाल ये है कि भाई देखा बरसात की स्थिति है मानसून आवत है चला जाता है हल्का
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो उतने से तो धाने का खेती हो न पाए करे लिए भाई आपन पानी के साधन का जो व्यवस्था
1: बिल्कुल करें
0: के हे परी भैया रहे कहूँ कहूँ नहर के सुविधा बा नहर से भाई सिंचाई कैले थी लेकिन वहूँ में कहूँ कहूँ ये हो थे कि भाई कहूँ को कुछ गड़बड़ हो गया नहर में पानी ना आया मौके से तब वहूँ स्थिति में भैया रंग के आपन साधन से ही सिंचाई करे पड़ी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और दूसरा ये कि बरसात कम होए से और धूप भय से जो उमस वाली गर्मी बा एकरे वजह से तमाम तरह के बीमारी होए के डर रहा था।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया जो
0: और वायरस है ये है और हम कहते पानी में वो गड़बड़ी खाना में गड़बड़ी भाई अगर पानी में कुछ प्रदूषित बा तो वही पानी से खाना बने तो खाना प्रदूषित बा।
1: बिल्कुल सही कह गया भैया देखा ये संक्रमण से जौन है भैया तरह तरह का बीमारी फैलत रहा।
0: जी जी
1: तो आज देखा भैया ये 28 जुलाई है तो भैया देखा आज खास दिन बा और ये काहे बा कि आज के देखा विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनावा जात बाटे।
0: जी जी
1: ये भैया देखा 28 जुलाई के दिन डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिन के उपलक्ष में जौन है देखा विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनावा जात है।
0: जी
1: भैया देखा डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग ने भैया 1967 में ये हेपेटाइटिस बी के वायरस के खोज करे रहन भैया।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो भैया यही के उपलक्ष में एक जागरूकता अभियान भी चलावा जाता है कि भैया देखा जौन है जौन संक्रमण होते है चाहे वो खाना से होए चाहे पानी से होए या कोनो विधि से होए भैया देखा उसे जौन है बचे के चाहिए। तो भैया कहीं न कहीं जौन है खेती किसानी के साथे साथे भैया देखा स्वास्थ्य पे भी देख रेख करब जरूरी बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अगर भैया स्वास्थ्य बढ़िया रही तो खेती किसानी भी हमार बढ़िया होत रहे।
0: भाई देखा अवधु जोन इस संक्रमण बा ना हेपेटाइटिस बी इकरे वजह से तो पूरी शरीर का समझा एक तरह से ढांचे
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: गड़बड़ा जात।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: भाई खाना हजम न होए भूख लागे न यह तरह के लक्षण दिखा ले थकान लगी रहे ये सब लक्षण दिखा था और एक भाई इलाज भी लंबा बे 4-6 महीना इलाज करे पड़त है। तो प्रयास तो ये करें कि भैया देखा कोनो संक्रमण हो न पावे हाँ शुद्ध वातावरण में रह के कोशिश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और खान पान भी अपन शुद्धता से बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर होए।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखा जौन है आज हम अपने पंचायती में भैया का सुनवाओ वो के बताई।
0: बिल्कुल।
1: देखा रोज की तरह से गीत गौनई हुई मुला आज देखा भैया मंगलवार का दिन बाट है।
0: जी जी।
1: तो रामायण पाठ भी हुई रमेश कुमार मिश्र भैया के और देखा हम तो कहब न हो कि आवा पंचन के भैया जौन है एक ठे विकास गीत सुनवा दिया जाए अभय राजा और संघातीन के
0: सुना दे
1: फिर बात बत कही होत रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुना दो।

0: पंचो राम राम।
1: का भैया का हलवा हो खेती किसानी का?
0: देखा उद्धू भैया एक बात जाना ना कि भाई देखा धाने की रोपाई तो लगभग लगभग हो गई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ जेके भैया रंग मान लीजिए बेहन देर से परी हुए या जहाँ पानी उनी का कुछ दिक्कत बा तो वहीं थोड़ा बहुत कुछ रह गया रोपाई का।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बाकी तो भैया हरे रोपाई कल है।

0: देखा हो अभयराज और संघातिन के विकास गीत के साथे साथे सनेस भी होई गए।
1: जी
0: अब देखा भैया जौन बात बतकही होत रही खेती किसानी के, तो भैया देखा खरीफ के जौन ई मौसम चलत बा,
1: जी
0: एमा भैया देखा धान का लगवही त पंच भैया हरेक कई लेहे बाटेन, मुला जौन अगड़ा पिछड़ा हैं भैया देखा ओहो सब अपन तैयारी बनाए बाटे न करत बाटे।
1: हाँ
0: और खरीफ के और फसल हैं भैया देखा जैसे दलहन वाली हैं तिलहन वाली हैं, तो भैया वहूँ में देखा किसान भैया हरे बुआई कई दे बाटेन, मुला जरूरत भैया ओकर देख रेख करे ओकर खर पतवार नियंत्रण के,
1: जी
0: जौने से कि उनके भैया उपज पे कौनो प्रभाव न पड़े। और देखा धान के खेत में भी भैया देखा तरह तरह का खरपतवार होते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और ओहू में भैया देखा अगर समय से जौन है ओकर दवा दर्पण का भैया छिड़काव कई दी है न हो, तो देखा उनका फसल जौन है बढ़िया होए। हम तो कहा भैया देखा कि जौन हर ब्लाकन पे अपन देखा कृषि रक्षा इकाई बनी है,
1: जी
0: वहाँ भैया देखा तरह तरह का अपन वैज्ञानिक लोग भैया रहते हैं, जानकार लोग हैं भैया, उनसे सलाह लेके तबे भैया देखा कौनो दवा अदुआ का छिड़काव करे के
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: बिल्कुल, एक बात ही जानना है उतू भाई, खरीफ का ऐसा मौसम बा
0: हाँ।
1: कि जहाँ खरीफ के राजा धान का फसल हो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और उनमें भरपूर पानी की जरूरत हो, और वहीं खरीफ में उर्द भदैला जोन्हरी बजरा तिल्ली के खेती बा, वो हमें केवल जरूरत भर के पानी की जरूरत होत हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: पानी ज़्यादा भवा तो पूरा फसल उकट जाए।
0: उकट ये बिल्कुल बिल्कुल
1: तो किसान के सामने तो दोनों स्थिति में एकदम परीक्षा का घड़ी होत
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कि भाई
0: बिल्कुल
1: उनका धान का भी पैदावार लेक बा, उर्द बदैला जोन्हरी बजरी और तिल्ली का भी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पैदावार लेक बा, तो इस सामंजस्य बैठावे में एक किसान का बहुत भूमिका होत है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कि भाई कौने खेते में हम जोन्हरी बजरी बोई, कौने में तिल्ली, कौने में धान लगाई है। तो सामान्य रूप से देखत रहा होगा आजा बाबा भी यही करत रहन कि जौन खेत खलार रहे
0: हाँ।
1: वहाँ तो धान ला गए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जौन उचासे रहे वहाँ जोन्हरी बजरी तिल्ली हो
0: बोआत रही है
1: बोआत रही, जहिया
0: बिल्कुल
1: से
0: बिल्कुल
1: कि ये रहा कि जहिया पानी वहाँ लागे न पावे, बरसात हो तो पानी वहाँ से निकल के खलारे वाले में चला जाए जौने में धान भाव,
0: धान लगावे बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: धान का भी फसल ठीक हो जाए और जोन्हरी बजरी भी ठीक रहे तिल्ली भी ठीक रहे। तो ये समझा कि तब बिना वैज्ञानिक सलाह के बिना विज्ञान के भी पहले के मनई के जो गूढ़ विज्ञान रहा उस सामंजस्य बैठाए के खेती करत रहे,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: अब तो तमाम तरह तरह के सुविधा हो गई,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तरह तरह का जानकारी दे बड़े भैया हरे तैनात हैं खड़े हैं, अब जरूरत हमार तुहार ई बे कि उनके सलाह ले ही,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उनसे सलाह ले के कम खेते में ज़्यादा पैदावार करे के कोशिश करी। भाई देखा पहले जितना खेत रहा पहले केवल दुई तूर के खेती होए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और दो भाई जो उन खलार होए ओमन धान के खेती होए बाकी खाली रहे, जो उन ऊपर होए ओमन गेहूं का खेती होए
0: बिल्कुल
1: बाकी
0: बिल्कुल
1: खाली रहे,
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: अब स्थिति ये होगी कि चाहे नीचे को हो चाहे ऊपर को होए ओ दोनों तूर के खेती होत बा, गेहूं का भी होत बा ऊपर धान का भी होत बा, ये केवल वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक संसाधन के देन बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया सही कह गया हो। अब दिखा काहे कि कहा बने कि युग बदला जमाना बदला, अब भैया देखा खेती किसानी के तौर तरीका भी बदल गया,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: भैया आज जोन है वैज्ञानिक युग आएगी भैया, तरह तरह के देखा कृषि यंत्र आई गए। पहले भैया जोन पुरानी प्रथा रही जोन है वो हल बैल से खेती होत रही है, अब आज के युग में भैया देखा ट्रैक्टर से एक एक घंटा में बिघन 2 बीघा का भैया देखा जोताई हो जात बे, और
1: हो
0: साथ
1: जात
0: साथ बुआई हो जात बे, अब तो भैया देखा हो धान भी रोपाई की मशीन आई के बे, तो भैया कहीं न कहीं अपने खेती में जोन है दिन दूनी रात चौगुनी देखा वृद्धि भी होत बे,
1: बिल्कुल
0: तो भैया
1: बिल्कुल
0: तरह तरह का वैज्ञानिक भैया सलाह देते हैं कि यह तरीके से अगर किसान भाई हरे खेती करिए तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होए भैया हो।
1: अब देखा एक बात ही जानना ना, पहले जब धान लगावे को होत रहा तो पहले एक दिन पलेवा दे जाए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: फिर ओका हल से जुताई होए, ओकर

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: कहा कि ओकर माटी सरे
1: बिल्कुल
0: और जोन ये घास फूस हो
1: वो
0: एक दिन सरे हो
1: बिल्कुल
0: पानी में, तब दूसरे दिन धान लगाओ बरे मनई खेते में
1: जात
0: रहे।
1: बिल्कुल
0: तो मैं दो ही बात होत रही, एक तो ये कि माटी माटी हो जात रही, मुलायम हो जात रही
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जोने में कि धान का कीला आसानी से घुसत रहा
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: दूसर ये रहा कि जो उन खरकतवार हैं कोनो घास है ये है वो सड़ जात रही, तो वो उर्वरक का काम करते रही,
1: बिल्कुल,
0: जैसी खाद का काम करते रही। और तीसर ये कि धान का जो उन फसल ला गए आराम से नीचे तक पहुँचे और ओकर जड़ पकड़ ले, जब तक पानी वो हमें कम हो तब तक धान हरियराय शुरू हो जाए।
1: बिल्कुल भैया, ज्यादा ज्यादा किलो निकलत रहा,
0: ज्यादा ज्यादा किलो निकलत रहा और ओकर पूजा बड़वार होत रहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब थोड़ा सा जो नई विधि वैज्ञानिक विधि आ गए उसका अगर पूरी तरह से न जान ले तब अगर लापरवाही में उपयोग करें तो उसे नुकसान का संभावना बनी रहा था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जो भी वैज्ञानिक भैया रहे हैं कृषि इकाई के जो जानकार हैं, हाँ, हर ब्लॉक में हर गांव क्षेत्र में तैनात हैं,
1: बिल्कुल
0: सहायक हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनसे जानकारी ले के ये नई विधि के अपने ही, तो उनके समय का भी बचत हुई, लागत का भी बचत हुई,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और साथ में ये है कि पैदावार भी उनकर बढ़िया हुई।
1: बिल्कुल वो सही कह गया भैया। देखा आज जो उन बतावत रहने कि आज देखा मंगलवार है भैया,
0: जी जी जी जी,
1: और आज देखा रामायण पाठ के दिन भी बाटे, तो हम तो कहब देखा आवाज जोन है रमेश कुमार मिश्र के रामायण पाठ सुना जाए,
0: सुना
1: और पंडित भैया रे भी सुने।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो सुना।

किलम बंदहु तुलसी के चरण जिनकिन्हु जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज। समादरणीय समस्त पंच महानुभाव, श्री रामचरितमानस में कई पात्रों को बड़भागी बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लेकिन श्री हनुमान जी जैसा बड़भागी कोई नहीं हुआ। जब हम श्री रामचरितमानस का गहराई से अध्ययन करते हैं तो तीनों पात्रों की महान छवि उभर करके सामने आती है। सबसे पहले भक्त शिरोमणि भक्ताग्रगण्य श्री भरतलाल जी, जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी एवं अंजनी नंदन प्रभंजनतने श्री हनुमंत लाल जी महाराज। पंचों श्री भरतलाल जी साक्षात प्रेम के मूर्ति हैं। कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज डिम डिम घोष करते हुए कहते हैं,

और जीवाचार्य लक्ष्मण जी त्याग के प्रतिमूर्ति माने गए हैं, परंतु श्री हनुमान जी महाराज तो मानो सेवा के प्रत्यक्ष अवतार ही हैं, क्योंकि सेवा यदि स्वार्थ से प्रेरित होकर की जाती है तो सेवा का सही स्वरूप कभी भी नहीं बन पाएगा, और जो सेवा निस्वार्थ रूप से की जाती है उसका धरातल बहुत ही विलक्षण होता है। तभी तो गोस्वामी जी ने बड़े ही प्रेम से बताते हुए कहा है कि जब बड़भागियों की चर्चा करने लगे तो श्री हनुमान जी महाराज का नाम सर्वोपरि रखा। एक समय आशुतोष भगवान शशिमौली भूत बावन विश्वनाथ जी महाराज कैलाश पर्वत के सुरम्य शिखर पर आसीन होकर श्री पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते भाव विभोर होकर चुप हो गए। श्री पार्वती जी ने अपने सुकोमल कर कमलों से भगवान शंकर जी महाराज के चरण कमल का स्पर्श किया। भगवान श्री शंकर जी महाराज का ध्यान टूटा और उन्होंने जैसे ही नेत्र खोला तो श्री पार्वती जी ने हाथ जोड़कर पूछा, स्वामी आप कथा कहते कहते अचानक चुप क्यों हो गए? भगवान भूत भावन श्री शंकर जी महाराज ने कहा कि देवी, मैं इन विचारों में खो गया था कि संसार में बड़भागी कौन है और अभागी कौन है। महारानी

श्री पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, हे प्रभु, भोले बाबा, आपने बड़भागी और अभागी के विषय में क्या विचार किया? तो उस समय भगवान श्री शंकर जी महाराज ने कहा कि देवी, मैं तुम्हारे सामने दोनों की ही चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले अभागी के विषय में बतला रहा हूँ। शिव जी कहते हैं,

जो लोग भगवान के नाम का आश्रय छोड़कर, साधु संतों की संगत छोड़कर, परमार्थ पथ त्याग कर विषय वासना में लिप्त रहते हैं, उन्हें ही अभागी कहा गया है। और अब देवी बड़भागी की चर्चा कर रहा हूँ। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं,

गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी में इतने लोगों को बड़भागी बताया है। ये भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं, देवी इतने लोग बड़भागी हैं। परंतु श्री हनुमान जी महाराज के विषय में कहते हैं, हन

ऋषिमुख पर्वत के समीप जब श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम से मिले, तो उस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने श्री हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा करके कहा, हनुमान सम

इस पर श्री हनुमान जी महाराज ने विनीत भाव से अनन्यता के विषय में प्रश्न किया तो भगवान श्री राम जी ने कहा, सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत।

भगवंत, अर्थात मैं सेवक हूं और सचराचर हमारे स्वामी के रूप में दिखलाई दे रहा है, यही तो सच्ची अनन्यता की परिभाषा। और ये बात उस समय स्पष्ट हो जाती है जिस समय सुबेल शैल पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम विराजमान हैं और उस स्थान पर चार भक्त उपस्थित हैं और चारों की अलग अलग श्रेणी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते

अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन चार भक्तों में सुग्रीव, विभीषण, अंगद और हनुमान जी का नाम आता है। सुबेल शहर पर प्रभु श्री राम विश्राम की मुद्रा में हैं। सुग्रीव की गोद में भगवान का सर है। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, प्रभु

चरण कमल की सेवा में श्री अंगद जी और श्री हनुमान जी महाराज संलग्न हैं। तभी आकाश में चंद्रमा की शीतल किरणों से संसार जगमगा उठा और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने इन चारों भक्तों के सामने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और कहा कि चंद्रमा में अपरिमित सुंदरता है, ये आकाश रूपी गुफा से निकलता हुआ चंद्रमा रूपी सिंह तेज प्रताप बल का राशि है। आकाश में निर्भय विचरण करते हुए अंधकार रूपी हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर रात्रि रूपी सुंदरी के श्रृंगार के लिए तारा रूपी मुक्ताहल को बिखेर दिया है, परंतु चंद्रमा की बीच में ये काले रंग का धब्बा कैसा है? तत्काल श्री सुग्रीव जी ने इसे पृथ्वी की परछाई बतलाया। तब विभीषण जी ने कहा कि चंद्रमा में राहु द्वारा प्रहार का दाग दिखाई दे रहा है। और अब अंगद जी की बारी आई तो अंगद ने कहा

आई। किंतु जब श्री हनुमान जी महाराज की बारी आई तो वे अत्यंत सहज भाव से बोले, कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूरति विदु उर बसती सोई श्यामता अभास। चंद्रमा के हृदय में श्री हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम जी की श्याम मूर्ति का दर्शन हो रहा है।

नाथम। ये था श्री हनुमान जी महाराज का अपने स्वामी के प्रति पूर्ण अनन्य भाव। और जब हम उनकी सेवा पर दृष्टि डालते हैं तो अभिमान से रहित उनकी महान सेवा का दिग्दर्शन होता है। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज लंका से वापस लौट कर आए और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरे, तो उस समय भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को हृदय से लगाते हुए बड़ी बारीकी से पूछा, हनुमान कहूँ

भगवान ने पूछा, हनुमान तुमने लंका को कैसे जलाया, ये सारे कार्य तुमने कैसे किए? हनुमान जी महाराज मुस्कुराते हैं और बड़े भाव से कहते हैं, हाथ जोड़ करके अभिमान रहित वचन हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु

0: अमर। अस्तु पंचों, श्री हनुमान जी महाराज के अद्भुत चरित्र से हम सबको ये महान प्रेरणा मिलती है कि यदि अभिमान और स्वार्थ से रहित सेवा के सूत्र को स्वीकार करें तो हम समाज सेवा का दायित्व भली भांति निभा सकते हैं और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी कर सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
1: हाँ भैया, देखा हो रामायण पाठ रमेश कुमार मिश्र भैया कितना फरियाई के जौन है, बताएं।
2: देखा हो एक बात जाना ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी कितना दिन पहले
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: जौन लिख दिए, अगर आज सोचा तो वह आज लागत है कि कैसे वो जानें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो उनके अंतरात्मा की जो प्रेरणा रही चाहे समाज के बारे में चाहे भाई बंधु के रिश्ते नाते के बारे में, जौन भी वो लिखे आज ज्यादातर हमारे तोरे सामने
1: चरितार्थ
2: होत बा, साकार होत बा। तो हम कहते कि जौन भाई भाई के संबंध में या घर परिवार समाज के संबंध में जौन मार्गदर्शन वो दिए हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: श्री रामचरित मानस में, अगर आज भी समाज के लोगों को अपनावें तो निश्चित रूप में एक अच्छे परिवार और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकत।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: हमारा मन कहत रहा है कुछ गीत गानों सुनवा देते तो फिर बात कही हो।
1: तो भैया आवाज जौन है एठे अभयराज और संघातीन का जौन है एठे कहरवा सुनवा
2: सुना सुना
1: तो सुना भैया।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 1805 145 पर कॉल करें। राष्ट्रीय

0: स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: हाँ देखा हो तो भैया गीत गौने हो गए हो श्री अभयराज जी के और साथ में संदेश भी हो गए। अब एक बात ही समझा ना कि भाई जे भैया हरे वो गोरु बछरू पाले हैं गाय हो भैंस हो हाँ या बैल हो
2: बिल्कुल
1: तो बरसात में उनकर देख रेख भी बढ़ जाता।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अगर छोटवार लिरुआ हैं तो फिर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि भाई देखा वो कींचा में न रहे नहीं तो खुरपका मुहपका तमाम तरह के बिरामी उरामी हो जाता।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और ये जो उन बिरामी हो तो भाई वो टीका उका भी लागत था समय से अगर टीका लगवा ली ही तो ऐसे भी सुविधा रही।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो यह बातन का सब ध्यान दे के मौसम के हिसाब से अपन रहन सहन गोरु बछरू का रहन सहन और खेती बाड़ी के ताव तरक।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये किसान के जिम्मेदारी पे रहत। और किसान आज काल से अपनी यह जिम्मेदारी का भरपूर निर्वहन करत चलावत।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भाई नई तकनीक नई विधि तो अब आई है।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
1: ये सब समस्या से तो किसान हमेशा से जूझत रहा।
2: बिल्कुल भैया। देखा जो गोरु चौवा का बात भैया देखा ये बरसात में ना भैया उनका स्थान जो है सही जगह रहा है उनका खाए के स्थान और भैया देखा बैठे के स्थान सूखा रहा है। और जौन ये अच्छर मच्छर भैया देखा लगा था ना वो भैया ये समय जो है धुआं धक्कड़ कह दिए के चाहिए। और जौन अपन दुधारू पशु हैं भैया उन्हों के जो है देख रेख यह मौसम में बढ़ जात है तो भैया उनके दाना है चारा है भैया एक समान मात्रा में देवे के चाही। काहे से कि देखा जो भैया हरा चारा पे बजरा जो बाजरा पे ओका भैया देखा ले आई के भैया ओका सही ढंग से अगर धूप है तो भैया ओका जो कटाई के पहले भिगोई के तब भैया देखा खियावे के चाही।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो भैया हो देखा अपन जो है घड़ी भी जो है इशारा करा तो पंचन से विदा लेवे के तो भैया हम तो कहब जो है ना
1: भाई देखा विदा तो जो चीज चला हो करता
2: भाई जो एक अपन जो एक प्रतिक्रिया नंबर बाटे ए पर जौन भी हमारे कार्यक्रम में पंचायत घर में दिखा जात है भैया इमें अगर किसान भैया पंच भैया हरे को सुझाव देवे चाहत हुई हैं कि जौने से अपन कार्यक्रम बेहतर बनावा जाए
1: जी जी
2: ओका ये व्हाट्सअप नंबर बाटे हमार 800-4926250। भैया एक बार नंबर हम और बता देते फिर से 800-4926250। भैया ए पर कोनो भी सुझाव हो अपन ते पर हमारे व्हाट्सएप पे अपन प्रतिक्रिया दे सकते हैं। भैया देखा पंचन से अब विदा लेवे के बेला हो गए तो पंचो
1: राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम भी 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 17.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 7.3 मेगा हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, युवा कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को किया संबोधित। कहा, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार उठा रही है प्रभावी कदम। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न जनपदों में तैयारियां तेज। मेरठ में भारी वाहनों के लिए आज मध्यरात्रि से लागू होगा डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि यह संशोधन विधेयक कानून को और सख्त बनाने और तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि इन सभी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ सके।
1: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्स, अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है, 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाए। और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं।

0: कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त जाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोटों के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा है। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि त्वरित और सुगम न्याय के प्रहरी के रूप में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। श्री योगी ने कहा कि अधिवक्ताओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाने के साथ ही 500 करोड़ रूपये के कॉपर्स फंड की व्यवस्था की है।
3: अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते हुए पहले किसी विद्वान अधिवक्ता के दिवंगत होने पर मात्र 1.5 लाख मिलते थे। हमने कहा भी 1.5 लाख बहुत कम राशि है, इस राशि को हमने 5 लाख रुपया किया। हम लोगों ने इसके जो कॉर्पस फंड है इसको हमने 500 करोड़ रुपए का ही कॉर्पस फंड आपका बना दिया है। ये राज्य सरकार कोई भी रहे इसके ब्याज से ही सारा काम चलेगा। अब तक हम 4000 ऐसे अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवा चुके हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 48वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के 63,183 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने, नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश शासन ने आज 15 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। तबादला सूची के अनुसार तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अशोक मोथा डीजी फायर सर्विस बनाए गए हैं। आईपीएस मधुर अशोक जैन को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से पुलिस महानिदेशक अग्निशमन और आपात सेवा बनाया गया है। अमरेंद्र कुमार सिंगर को पुलिस आयुक्त लखनऊ से पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना मुख्यालय भेजा गया है, जबकि राम कुमार को लखनऊ रेंज से गोरखपुर जोन का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। नवीन अरोरा को तकनीकी सेवाओं से वाराणसी जोन और पीयूष मोडिया को वाराणसी जोन से प्रयागराज पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पवित्र सावन माह के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए आने वाली महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वाराणसी नगर निगम महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग आवास, शौचालय और फीडिंग रूम की व्यवस्था करेगा। अमरोहा में कांवड़िया

0: यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हाईवे पर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक वाहनों की गति सीमित कर दी जाएगी। यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए हाईवे की एक साइड आरक्षित रहेगी। हापुड़ में भी कांवड़ यात्रा को लेकर 30 जुलाई से कांवड़ मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। मेरठ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारी वाहनों के लिए यातायात परिवर्तन आज मध्य रात्रि से लागू होगा। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि हल्के और मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन 4 अगस्त की मध्य रात्रि से लागू होगा और 12 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। मेरठ के जिलाधिकारी डॉ वीके सिंह ने बताया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी कर रहे हैं।
1: मेरठ के लगभग 222 किलोमीटर से अधिक कांवड़ मार्ग हैं, जिसमें कि 8 प्रमुख मार्ग हैं और सभी मार्गों का वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। नगर निगम के द्वारा भी बिजली के खम्भों का इंसुलेशन का काम किया जाता है। ये सारे काम प्रगति पे हैं। इसके अलावा कांवड़ पटरी मार्ग जो राइट से अलावा अपर गंगा केनाल बोलते हैं, उनकी भी मेजर रिपेयरिंग हो चुकी है। जिला पंचायत के माध्यम से हम लोग पूरे मार्ग में पथ प्रकाश की व्यवस्था अच्छे से हो, इसलिए विगत वर्ष में यदि कोई कमी रह गई उसको भी ठीक दुरुस्त कराते हुए वो व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं।
0: उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों को कुल 2 करोड़ तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महाअभियान में मिशन से जुड़े 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगों का निर्माण करेंगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को अतिरिक्त आजीविका और आय का अवसर प्राप्त होगा। वहीं प्रदेश के प्रत्येक घर तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने के राष्ट्रीय अभियान को भी गति मिलेगी। अयोध्या, बिजनौर, संभल, सुल्तानपुर, गौतमबुद्ध नगर और सहारनपुर समेत आसपास के जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, युवा कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को किया संबोधित। कहा, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार उठा रही है प्रभावी कदम। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न जनपदों में तैयारियां तेज। मेरठ में भारी वाहनों के लिए आज मध्य रात्रि से लागू होगा डायवर्जन। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोफेसर देवदत्त सरोदे की संस्कृत वार्ता गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म। आइए सुनते हैं।
3: भारतीय संस्कृतौ सनातन वाङ्मये च गुरोः स्थानं सदा मूर्धनि विराजते। यतो हि गुरुरेव अज्ञानान्धकारं विनाश्य शिष्यम् आत्मज्ञानं प्रति नयति। आषाढमासस्य पूर्णिमातिथि गुरुपूर्णिमा अथवा व्यासपूर्णिमा रूपेण महत्या श्रद्धया समाचर्यते। महाभारत पुराण ब्रह्मसूत्रादीनां प्रणेता महर्षि व्यासः सनातनपरम्परायाः आचार्यः विद्यते। अतएव तस्य आदरार्थं कृतज्ञता ज्ञापनार्थं अयं दिवसः गुरुपूजनस्य महापर्वरूपेण आचर्यते। गुरुपूर्णिमा केवलं गुरुपूजनस्य उत्सवः नास्ति, अपि तु अज्ञानात् ज्ञानं प्रति, मृत्योः अमृतं प्रति, बन्धनात् मोक्षं प्रति च मानवजीवनस्य आध्यात्मिकयात्रायाः स्मारकः पावनः दिवसः अस्ति। ज्ञानं मनुजस्य तृतीयं नेत्रम् इति उक्तत्वात् ज्ञानं प्रयत्नेन समुपार्जनीयं। ज्ञानं गुरौ प्रतिष्ठितं भवति। अतः जीवने ज्ञानस्य गुरोश्च महत्त्वं प्रतिपादयद्भिः शास्त्रैरुक्तम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं मीरा तिवारी। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में मीराबाई का भजन।

अभी आप सुन रहे थे मीरा तिवारी के स्वर में मीराबाई का भजन। आइए आप सुनते हैं ब्रह्मानंद तिवारी का भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी मीरा तिवारी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर

दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृहमंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा

कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है। मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते

0: चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अदनान सामी के संगीत निर्देशन में ये है आज के कार्यक्रम का पहला गीत लकी फिल्म से। गीत रचना समीर की, आवाज सोनू निगम की।

अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक की आवाज में। गीत रचना समीर की है, संगीत हिमेश रेशमिया का, फिल्म का नाम क्योंकि।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम के अंत में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अर्णव चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल की आवाजों में समीर का लिखा गाना। राम संपत का संगीत है, फिल्म का नाम खाकी।

प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कविता पौंडवाल के स्वर में ये भजन।

अभी आप सुन रहे सबरस कार्यक्रम आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1446 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
3: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा

0: किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
2: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
3: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
4: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। FIR वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
5: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
5: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे, 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं, छानबीन चल रही

0: है उनके लिए, और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ दो भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
1: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
1: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज

0: श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbha region for next 2 days. And at ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillo clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. And now the news in detail. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Participating in the discussion, Congress MP KC Venugopal stressed the need for wider educational reforms and comprehensive changes in the examination system.
3: We are ready to pass the legislation, but I still believe that if you didn't have any sincerity to address the concern of the students of this country, yeah. concern of the addressing

लोकसभा में उस बिल पर बहस जारी है जिसमें पेपर लीक मामले में सख्त सजाएं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क़याम की तजवीज़ है। हुकूमत ने कहा है कि ये नया कानून तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ की खातिर उसके अज़्म की अक्कासी करता है, जबकि अपोजिशन ने तालीमी निज़ाम में वसी तर इस्लाहात पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए कम उम्र तलबा की रिहाई का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र, बिहार और आसाम की हुकूमतों ने तलबा के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने का हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर फायरिंग के दौरान 20 अफराद हलाक हो गए। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नाम नहाद असम्बली इंतखाबात उसके गैरकानूनी कब्ज़े को छुपाने के लिए महज एक दिखावा है। जून के महीने में सनअती पैदावार की शरह तरक्की पिछले 23 महीनों की बुलंदतरीन सतह 7.3% हो गई है। उड़ीसा में शदीद बारिश के सबब बड़े दरियाओं में तुगयानी आने की वजह से सैलाब की संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। अगले दो रोज़ के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते के लिए इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिस टीम मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। ये बिल पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। ये कानून सख्त जुर्माने जैसे 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने और कसूरवार करार दिए गए मुजरिमों की जायदाद जब्ती जैसे अहम इल्तजाम का इजाफा करेगा। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के हालिया वाकयात का नोटिस लेते हुए फैसला किया कि इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। DMK के दयानिधि मारन ने बहस में हिस्सा लेते हुए दावा किया कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट मरकजी मौजू है जो यकसा नहीं है और तलबा मुखालिफ है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुकूमत पर तलबा के मफादात के तहफ़ में नाकाम रहने और निज़ाम तालीम को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तलबा से किए गए वादों को पूरा करे। मोहतरमा गांधी ने मजीद कहा कि नौजवान निज़ाम तालीम में अपना एतमाद बहाल करने के लिए मुजाहरे कर रहे हैं और जवाबदेही तय करना चाहते थे। BJP रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज, TDP के लावू श्री कृष्णा, शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और दिगर अराकी ने पार्लियामेंट ने बहस में हिस्सा लिया।

0: राज्यसभा की कार्रवाई, नीट मामले पर तलबा के मुजाहरों के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के हंगामे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई जब दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट तरमीमी बिल 2026 को मुतारफ कराया। बिल के तारुफ के दौरान अपोजिशन अराकीन ने तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई पर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा आराई जारी रहने पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ हालिया मुलगीर एहतजाज के दौरान तलबा और पुलिस अहलकारों के जख्मी होने के इल्जाम की मुकम्मल मुनसिफाना और गैर जानबदाराना तहकीकत जरूरी हैं। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे कम उम्र तलबा जिनका कोई साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है उन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम को हिदायत दी कि एहतजाज से मुतालिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद महफूज रखे जाएं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उन दरखास्तों की समाअत कर रही थी जिनमें एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। अदालत आलिया ने कहा कि तहकीकात में उन 200 से ज्यादा जख्मी पुलिस अहलकारों के अहल खाना के खदशात को भी मलहूज रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम रियासतों को जहां एहतजाज हुए हिदायत दी कि वो एहतजाज से मुतालिक CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरों की फुटेज, वायरलेस मुआसलाती रिकॉर्ड, PCR लॉग्स और दिगर तमाम डिजिटल शवाहिद महफूज रखें। अदालत आलिया ने यह भी हुक्म दिया कि एहतजाज करने वाले तलबा से मुतालिक इकट्ठा किया गया तमाम डिजिटल डेटा महफूज रखा जाए ताहम इसे अवामी सतह पर जारी ना किया जाए। बेंच ने दिल्ली हुकूमत को दर्ज FIR की तहकीकात जारी रखने की इजाज़त दी लेकिन यह भी वाजे किया कि अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने तक एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की जाए। इसके अलावा बेंच ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरला, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज से भी दरखास्तों में आयद किए गए इल्जाम पर जवाब तलब किया। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दाखिले उमूर के रियासती महकमे को हिदायत दी है कि वो नीट पेपर लीक मामले पर रियासत भर में हाल ही में मुजाहरा करने वाले तलबा के खिलाफ सभी दर्ज मामले वापस ले ले। FIR वापस लेने का अमल मुतल्लिका अदालतों से इजाजत मिलने के बाद शुरू होगा। मुंबई, पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे अहम शहरों में एहतजाज हुए थे। ये कदम मरकज की उस गारंटी से मुताबकत रखता है कि मुजाहरों में शामिल तलबा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिहार और आसाम की रियासती हुकूमतों ने उन लोगों के खिलाफ मामलात और दिगर कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है जो मुबैना तौर पर नीट UG इम्तिहान में बेजाबतगियों के सिलसिले में एहतजाज में शामिल हुए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज अपनी सदारत के 4 साल मुकम्मल होने के मौके पर राष्ट्रपति भवन में किताबों के इजरा की एक खसूसी तकरीब की सदारत की। इस मौके पर नायब सदर CP राधाकृष्णन ने 5 यादगारी किताबों का इजरा किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि सदर का आईनी ओहदा महज एक एजाज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना उनके जाती ख्वाबों से भी बढ़कर है। हुकूमत ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक मुल्क भर में चीनी के ताजरों के लिए जखीरा करने की हद मुकर्रर करने का फैसला किया है। सार्फीन की उमूर, खुराक और सरकारी निज़ाम तकसीम की वजारत के मुताबिक इस इकदाम का मकसद जखीरा अंदोजी को रोकना, क्यास आरए पर मबनी तजारत की हौसला शिकनी करना और मुनासिब कीमतों पर चीनी की मुसलसल दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नाम नहाद कानून साज असम्बली इंतखाबात को पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे से दुनिया की तवज्जो हटाने और खित्ते में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने की कोशिश करार दिया है। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इंतखाबात को महज दिखावा करार दिया।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: کل راولاکوٹ میں جوائنٹ عوامی

0: क्वालिफाई किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में उस बिल पर बहस जारी है जिसमें पेपर लीक मामले में सख्त सजाएं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम की तजवीज है। हुकूमत ने कहा है कि ये नया कानून तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ की खातिर उसके अज़्म की अक्कासी करता है, जबकि अपोजिशन ने तालीमी निज़ाम में वसी तर इस्लाहात पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए कम उम्र तलबा की रिहाई का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र, बिहार और आसाम की हुकूमतों ने तलबा के खिलाफ दर्ज मामलात वापस लेने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर फायरिंग के दौरान 20 अफराद हलाक हो गए। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नाम नहाद असम्बली इंतखाबात उसके गैरकानूनी कब्जे को छुपाने के लिए महज एक दिखावा है। जून के महीने में सनती पैदावार की शरह नमू पिछले 23 महीनों की बुलंदतरीन सतह 7.3% हो गई है। ओडिशा में शदीद बारिश के सबब बड़े दरियाओं में तुगयानी आने की वजह से सैलाब की संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। अगले दो रोज के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते के लिए इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएसएसएफ निशानेबाजी वर्ल्ड कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम कहकशां।

नमस्कार श्रोताओं, कहकशा की इस महफिल में आपका स्वागत है। कहकशा एक ऐसा संगीत का सफर जहां हर शेर किसी एहसास की दस्तक है, हर गजल दिल की धड़कनों का तराना है और हर आवाज मोहब्बत, इंतजार, वफा, तन्हाई और जिंदगी के अनगिनत रंगों को अपने सुरों में समेटे हुए है। मैं हूँ एकता शुक्ला और अगले आधे घंटे तक हम साथ मिलकर महसूस करेंगे उन खूबसूरत गजलों का जादू जिन्होंने वर्षों से संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। तो आइए रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ पल चुराकर दिल की दुनिया में उतरते हैं, जहाँ अल्फाज ही नहीं महकते, सुर भी मुस्कराते हैं और एहसासों की यह कहकशां अपनी पूरी रौनक के साथ आपका स्वागत करती है। दोस्तों, गजल की दुनिया में अगर किसी शायर को खुदाए सोहन कहा गया है तो वह हैं मीर तकी मीर साहब। मीर की शायरी में दर्द है, सादगी है और दिल की ऐसी सच्चाई है जो सदियों बाद भी उतनी ही ताज़ा महसूस होती है। उन्होंने मोहब्बत, विरह और इंसानी जज्बातों को जिस नज़ाकत और गहराई से अल्फाज दिए, वह उर्दू अरब अदब की अमूल्य धरोहर बन गए।

मीर तकी मीर की वह कालजयी गजल जिसके हर शेर में दिल की धड़कन सुनाई देती है और हर मिसरा मोहब्बत की खामोश दास्तान को कहता है।

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्जों में पूरी तरह बांध नहीं सकते। इश्क भी कुछ ऐसा ही जज्बा है। जब मोहब्बत दिल में उतरती है तो इंसान दुनिया के हिसाब किताब से बहुत आगे निकल जाता है, और उस कैफियत को ही शायद बेखुदी कहते हैं, जहां होश भी दिल के आगे झुक जाता है।

कहते हैं हर दिल अपने लिए किसी ऐसे हमसफर की तलाश करता है जो सिर्फ साथी नहीं बल्कि उसकी खामोशियों को भी समझ सके। कभी यह तलाश पूरी हो जाती है और कभी एक खूबसूरत आरजू बनकर उम्र भर दिल में महकती रहती है। गजलें भी इन्हीं अधूरे ख्वाबों, मासूम उम्मीदों और मोहब्बत की नाजुकी को बड़ी खूबसूरती से अल्फाज देती है। ऐसी ही पेशकश है हमारी अगली दिल नशी गजल, जिसके बोल सीधे दिल में उतरते हैं और हर सुनने वाले को अपनी इस अनकही चाहत की याद दिला जाते हैं।

दिल कभी तर्क से नहीं चलता, वो तो बस एहसासों की जबां समझता है। कभी किसी ख्वाब के पीछे चल पड़ता है तो कभी किसी ऐसी मंजिल की तलाश में भटकता रहता है जिसका पता उसे खुद भी नहीं होता। शायद इसी मासूमियत के कारण उसे दिले नादा कहा गया है।

दोस्तों, हर महफिल की तरह हमारी आज की महफिल भी अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रही है। गज़लों के खूबसूरत

सफर में कभी मोहब्बत मुस्कुराई तो कभी जुदाई ने आंखें नम की, तो कभी जिंदगी ने अपने अनगिनत रंग दिखाए। और अब विदा लेने से पहले पेश है एक ऐसी गजल जो दर्द, तन्हाई और टूटे ख्वाबों की ऐसी तर्जुमान है कि सुनने वाला बरबस खामोश हो जाता है। जी हाँ, फिल्म उमराव जान की ये कालजयी गज़ल, जिसे आशा भोसले ने अपनी दर्द भरी आवाज़ से अमर कर दिया, हर बार दिल की गहराइयों को छू जाती है ये गज़ल।

दोस्तों, गज़लों के इस हसीन कहकशा में आज का हमारा साथ बस यहीं तक था। उम्मीद है कि अल्फाज की नज़ाकत, सुरों की मिठास और एहसासों की गर्माहट ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 800-492-6250। कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारे इस नंबर पर। और इसी के साथ आज की इस महफिल से मुझे यानी एकता शुक्ला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी पौड़ी से प्रस्तुत है जनपद पौड़ी गढ़वाल में आयोजित विभिन्न खेल गतिविधियों पर आधारित विशेष कार्यक्रम खेल दर्पण। मानव जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ये शारीरिक और मानसिक विकास के मुख्य आधार हैं। खेलों से अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व करने की क्षमता जैसे जीवन कौशल विकसित होते हैं। यह तनाव कम करके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और जीवन को संतुलित रखते हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल में आयोजित होने वाले प्रमुख खेलों में से एक खेल है खेल महाकुंभ। युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक संस्कृति से प्ले ग्राउंड संस्कृति की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष खेल महाकुंभ का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा शिक्षा विभाग और खेल विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। पूर्व वर्षों के इतर इस वर्ष खेल महाकुंभ कुछ बदलावों के साथ आयोजित किया गया। खेल महाकुंभ के बारे में हमने बात की खेल महाकुंभ के नोडल अधिकारी श्री भगवान गुसाई से।
1: वित्तीय वर्ष 25-26 में खेल महाकुंभ का जो स्वरूप, उसमें शासन स्तर से बदलाव किए गए। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में खेल महाकुंभ का स्वरूप था, सर्वप्रथम न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता, उसके पश्चात विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता, फिर उसके बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता और अंत में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। जिसके स्वरूप में बदलाव करते हुए सर्वप्रथम जो न्याय पंचायत की प्रतियोगिताएं होती थी उसको स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के नाम से जाना गया। उसके पश्चात विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, फिर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी और अंत में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के दो कैटेगरी में आयोजित की गई, अंडर 14 बालक बालिका और अंडर 19 बालक बालिका, जिसमें चार प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, कबड्डी, एथलेटिक्स, खो खो और मुर्गा झपट। इसमें जिन भी प्रतिभागियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया उनको नगद पुरस्कार के रूप में 300, 200 और 150, साथ ही मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अगले स्तर पे जो प्रतियोगिताएं हुई, विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, जिसमें विधानसभा स्तर पर प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 500, 400, 300 की धनराशि DBT के माध्यम से और साथ ही मेडल और प्रमाण पत्र वितरित।

0: की गई राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में हमारी जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की टीमों ने प्रतिभाग किया, उन्होंने कुल 93 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 21 स्वर्ण, 32 रजत और 40 कांस्य पदक शामिल रहे।
1: खेल महाकुंभ के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के तहत न्याय पंचायत घंडियाल में हो रही खेलकूद प्रतियोगिता के नोडल श्री हनुमंत कुकृति से हमने बात की।
2: इस समय मैं हूं सीकू के ऐतिहासिक मैदान में और यहां पे न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं नोडल अधिकारी न्याय पंचायत घंडियाल श्री हनुमंत कुकृति जी हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी खेल विधाएं आज यहां पे न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजित की जा रही हैं।
3: यहां पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई, इसमें एथलेटिक्स हो गया, खो खो हो गया, मुर्गा झपट हो गए, जो हमारे पारंपरिक खेल है उसको विधा को भी काफी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और जो ये खेल है वाकई में ना कहीं जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले हैं, उन ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले जिनको न तो कोई सहयोग मिल पाता है, गरीब बच्चे रहते हैं, तो ये खेल महाकुंभ वाकई ना कहीं संजीवनी का काम करेगा उन छात्रों के लिए, उन परिवारों के लिए, या उस छात्र को जिसको सुविधा नहीं मिल पा रही है। खेल महाकुंभ अपने आप में जैसे कि इसकी सार्थकता सिद्ध हो रही है कि वाकई में महाकुंभ है, क्योंकि ये केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे जितने भी ग्रामीण परिवेश हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हैं या विद्यालय में आते हैं, उन सब के लिए वाकई में खुला एक मंच है। और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कहीं ना कहीं समाज के लिए और उस जो छात्र हैं और जो जिसने विद्यालय छोड़ दिया हो या त्याग कर दिया, उनके लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा मंच महाकुंभ है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जीवन का एक अमूल्य मूल मंत्र है, तो उसको देखते हुए वाकई ना ये जो हमारे खेल विधाएं होती हैं, ये शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक रूप से कहीं ना कहीं सबलता और प्रबलता प्रदान करती हैं।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल की सभी न्याय पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के उपरांत जनपद पौड़ी की 6 विधानसभा स्तर पर विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इसके बाद रांची स्टेडियम पौड़ी में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन दिनांक 15 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 के मध्य किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना बुटोला ने किया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
4: हमारे युवा कल्याण के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी मेरे शिक्षा विभाग के सभी सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जनपद से आए हुए, विभिन्न जनपदों से आए हुए बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आप सभी को आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी देती हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सब लोग यहाँ पर बहुत दूर से आए हुए हैं और अपने अपने लक्ष्य को पूरा करें। पहले जमाने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, लेकिन आज जमाना बदल गया है और सभी लोगों के पेरेंट्सों की भी सोच बदल गई है। तो आज के जमाने में आप अपने बच्चे से सभी लोग यही कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे और भी प्रताप। इसलिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और हम सब देख रहे हैं कि आज हमारा देश खेल के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है और आप सभी बच्चों को अनुशासन के साथ खेलना है। इसी के साथ मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।
1: सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन समारोह में उपस्थित जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री रविंद्र कुमार सिंह ने कहा,
5: सांसद चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो कि पौड़ी जनपद में आयोजित की जा रही है, इसमें 11 विधानसभा के प्रतिभागी भाग लेंगे। इसके अलावा कोटद्वार और अन्य जो 5 विधानसभा हैं, जिनमें नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ व रामनगर, इन सभी विधानसभाओं के जो विजयी प्रतिभागी हैं, उनके द्वारा यहाँ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिता आज दिनांक 15 जनवरी से और 30 जनवरी के मध्य आयोजित की जाएगी। जो सांसद स्तरीय जो चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है, उसमें अपना वर्चस्व भाग ले और अपना सर्वोच्च और अपने इस संसदीय क्षेत्र का नाम जरूर रोशन करे।
1: विगत वर्ष से विलुप्त होते पारंपरिक खेल मुर्गा झपट और पिट्ठू को खेल महाकुंभ में शामिल कर उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। पारंपरिक खेल मुर्गा झपट के संबंध में हमने बात की जनपद पौड़ी गढ़वाल में पारंपरिक खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सतीश कंडारी जी से।
2: श्रोताओं, इस समय हम हैं

0: रांची स्टेडियम पौड़ी में और यहाँ पे खेल महाकुंभ के अंतर्गत सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल स्पर्धा में कुछ पारंपरिक खेल भी इस बार आयोजित किए जा रहे हैं और ये एक चर्चा का विषय बने हुए हैं रांची स्टेडियम पौड़ी में। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं पारंपरिक खेलों के बारे में श्री सतीश खंडारी जी।
1: पारंपरिक खेल के अंतर्गत जो मुर्गा झपट प्रतियोगिता है वह पिछले साल से उन शुरू की गई थी और इस बार भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने पिछले बार प्रतिभाग न किया हो और अलग अलग जो भार वर्ग रखे हुए तो उनमें इस साल फिर उनके द्वारा मौका दिया गया। और निश्चित तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि पारंपरिक खेल के अंतर्गत मुर्गा झपट में हमारे पौड़ी जनपद से जो 5 भार वर्ग हैं, चाहे वो मैं अंडर 14 की बात करूं, चाहे मैं अंडर 19 की बात करूं, दोनों में ही चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों ने ही विशेष उत्साह दिखाया और उनके द्वारा प्रतिभा किया गया। तो और अगर मैं सर थोड़ा सा जो ये पारंपरिक खेल है और उसमें अगर मैं विशेष तौर पे मुर्गा झपट की बात करूं, जो हमारा जो एरिना होता है इसका जो सर्कल बनाया जाता है वह 2 मीटर का रेडियस का एक वृत्त बना हुआ होता है जिसमें कि आपके और उसके साथ साथ एक एक मीटर चारों ओर से एक वर्गाकार टाइप का पूरा एक बॉक्स बना दिया जाता है और उसमें हमारे 5 वर्ग जो, क्योंकि मैं खेल महाकुंभ की बात कर रहा हूं तो यह 5 भार वर्ग में रखा गया है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, अंडर 14 या अंडर 19 में बात करता हूं। और अगर मैं नियम की बात करूं तो इसमें आपने देखा होगा सर कि जैसे पहले भी हो चुका है तो इसमें अगर मैं अंडर 14 में बालक की बात करता हूं या किसी भी वर्ग की बात करता हूं तो 2 बालकों के बीच में सेम भार वर्ग में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और दोनों में अगर थोड़ा सा मैं नियम देखूं तो नियम में अगर आप बात तो जिस प्रकार से मुर्गा एक नाम दिया गया है पारंपरिक मुर्गा झपट, तो उसी प्रकार एक बालक के द्वारा एक हाथ से पांव को पकड़ा जाता है, आगे पंजे को पकड़ा जाता है और दूसरा हाथ, अब वो स्ट्रॉन्ग हाथ कुछ भी हो सकता है उसका, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, तो अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे हाथ से वो शोल्डर को पकड़ता है और इस प्रकार से हमारे रेफरी के द्वारा प्रतियोगिता शुरू की जाती है, बाउट शुरू की जाती है और 1 मिनट बाउट का समय दिया जाता है इसमें। तो इसमें जैसे ही शुरू किया जाता है तो दोनों जो प्रतिभागी होते हैं वो प्रतिभाग करते हैं, लड़ते हैं और तो बच्चों के द्वारा शोल्डर से पुश किया जाता है। और अगर उसमें आप देखेंगे सर, अगर बच्चे का चाहे मैं शोल्डर से हाथ अगर नीचे खिसक जाए या पांव छूट जाए जिस हाथ से उसने पांव पकड़ा है तो 1 पॉइंट दिया जाता है और वहीं पे बाउट रोक दी जाती है। फिर रेफरी दोनों को फिर तुरंत ही, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए तुरंत उनको फिर सेंटर लाइन पे खड़े करके फिर दोनों को फिर बाउट स्टार्ट की जाती है और इस प्रकार से 1 पॉइंट दिया जाता है। और अगर मैं अधिकतम पॉइंटों की बात करता हूं तो अधिकतम 3 पॉइंट दिए जाते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि जैसे ही रेफरी के द्वारा शुरू की जाती है और बच्चे जब शोल्डर से पुश करते हैं और पुश करते करते अगर कोई भी प्रतिभागी अगर अपने ओपोनेंट प्लेयर को जो आपका सर्कल बनाया है उस सर्कल से बाहर फेंक देता है, बाहर कर देता है, तो उसको रेफरी के द्वारा 3 पॉइंट दिए जाते हैं। और इसमें एक साइड हमारा ब्लू कॉर्नर होता है जो हम प्लेयरों को जर्सी भी दे सकते हैं, जो विप्स देते हैं हम उनको, तो एक साइड ब्लू कॉर्नर होता है और एक साइड रेड कॉर्नर होता है। तो ये हमारे पॉइंट का वो चलता है। तो 3 हमारे राउंड्स होते हैं 1-1 मिनट के और उनमें फिर स्कोर दिए देखा जाता है कि सम्मानित रेफरी के द्वारा किसका स्कोर ज्यादा हुआ है। फिर वो दोनों को सेंटर में, जैसे ही बाउट खत्म हो जाती है दोनों को सेंटर में खड़ा करके, जिस प्रकार से आपने देखा होगा बॉक्सिंग में दोनों के एक एक करके अंक बोले जाते हैं, तो उसी प्रकार हमारे मुर्गा झपट में भी रेफरी बीच में रहता है, एक साइड दोनों साइड खिलाड़ी रहते हैं उसके और फिर नंबर बोले जाते हैं, जिसके अधिकतम अंक होते हैं वह विनर होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा मुर्गा झपट खेल चलता है।
0: तो आपने नियम कायदे विस्तृत रूप से हमें समझाए और इनके बारे में विस्तृत रूप से हमें बताया। अच्छा, जैसे कि पारंपरिक खेलों को फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक तरह से मैं कहूँ कि विलुप्त के कगार पे हमारे पारंपरिक खेल थे, तो खासकर मुर्गा झपट की अगर मैं बात करूँ तो प्रतिभागियों में किस प्रकार उत्साह आप देख रहे हैं?
1: सर अगर मैं प्रतिभागियों में उत्साह की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बच्चों का जो आज का जो टाइम है, आज के समय को, परिस्थिति को हम देखते हैं तो इसमें बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल या अन्य जो हमारे गैजेट्स हैं उनके प्रति, उनके कारण बहुत ज़्यादा रुझाव बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पारंपरिक खेलों के कारण, क्योंकि इन पारंपरिक खेलों को बच्चे नहीं, उनके माँ बाप या मैं एक सोसाइटी के जो हमारे पुराने जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनके द्वारा इन खेलों को जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं

0: अपने बच्चों को इन खेलों के प्रति उनमें उत्साह आए, क्योंकि जो और अन्य हमारे खेल हैं उन खेलों में थोड़ा सा माँ बाप या परिवार या समाज में, मैं बोलूं, सबको नियम कायदे की जानकारी नहीं होती, लेकिन मुर्गा झपट हो गए इस प्रकार के खेल में थोड़ा माँ बाप भी जानते हैं या समाज में कोई अन्य व्यक्ति भी जानता है कि किस प्रकार से इसको रूल या किस प्रकार से खेला जाता है, तो बच्चों को जैसे। और दूसरा, अगर मैं दूसरा जो हमारे माँ बाप हैं, गार्जियन हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको ये भी पता है कि मुर्गा झपट में कहीं ना कहीं जो हमारे शारीरिक पुष्टि होती है, जिसको अंग्रेजी में फिजिकल फिटनेस कहते हैं, तो अगर मैं उनके कुछ कंपोनेंट्स तत्वों की बात करूं, क्योंकि हर खेल में आप देखते हैं कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा जो 100 मीटर दौड़ होती है, तो उसमें स्पीड को देखा जाता है। तो अगर मैं अपने पारंपरिक खेल में मुर्गा झपट में बात करूं, तो आपने देखा होगा जब बच्चों के द्वारा पांव या शोल्डर पे आपका बैलेंस हाथों से पकड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे संतुलन का जो क्षमता है उनके अंदर उसको विकसित किया जा रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जब आप वो बाउट कर रहे हैं, तो बाउट करते समय उनकी जो कोऑर्डिनेटिव एक एबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि दो तीन कंपोनेंट्स को एक साथ करना पड़ता है। जैसे आपने देखा हो कि बच्चे को एकदम से फुर्ती से शरीर को थोड़ा सा, क्योंकि बाउट एक दूसरे से हो रही, तो फुर्ती से शरीर को कभी लेफ्ट या राइट या डोज करना पड़ता है। दूसरा, आप देखेंगे एकदम से तेजी से स्ट्रेंथ का प्रयोग करते हुए शोल्डर से पुश भी करना होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे इन शारीरिक पुष्टियों के जो हमारे तत्व हैं, इनके द्वारा भी बच्चों में उनको भी विकसित किया जा रहा है।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी खेल के प्रति रुझान बढ़ रहा है। अगर मैं महिला क्रिकेट की बात करूं, तो इस साल जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महिला क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन किया गया। जनपद में महिलाओं की बढ़ रही क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी के बारे में हमने बात की अंडर 19 नेशनल क्रिकेट टीम में चयनित कुमारी सलोनी से।
2: मेरा नाम सलोनी बिस्ट है, मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे गाँव का नाम मरगाँव है, जो कि खिरसू ब्लॉक में आता है। मेरे क्रिकेट की स्टार्टिंग गांव से हुई है। गांव में नरेंद्र भैया थे, उन्होंने मेरे को पूरा क्रिकेट खेलना सिखाया है। उस टाइम पे मैं अकेली लड़की थी, जो मतलब भैया लोगों के साथ खेलती थी, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों के लिए कोई टूर्नामेंट नहीं होते थे, जिससे कि उन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट आए और क्रिकेट का नॉलेज हो। तो भैया लोग के साथ ही मैंने सब कुछ सीखा है। इसमें मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, खास करके मेरी मम्मी, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। एक दिन स्कूल्स गेम में क्रिकेट के ट्रायल्स आए, जिसमें पहले डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ, फिर स्टेट के लिए, फिर नेशनल के लिए। गांव की लड़की के लिए नेशनल खेलना बहुत बड़ी बात है, खास करके तब जब उनके पास सुविधाएं ना हो, खेलने के लिए ग्राउंड ना हो। मैंने स्कूल्स गेम में क्रिकेट में 2 बार नेशनल खेला है। फिर उसके बाद गांव में भी काफ़ी टूर्नामेंट होने लगे लड़कियों के। अभी पाबो में हुआ था सडनली, तो वहाँ 50,000 का टूर्नामेंट था पहले, जिसमें हम फाइनल में रनर अप रहे। तो जैसे वो टूर्नामेंट लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, जिससे कि उन्हें क्रिकेट का नॉलेज हो, और उससे काफ़ी लड़कियाँ प्रैक्टिस करने लगी हैं गाँव में, जिससे कि उनका सिलेक्शन हो सकता है आगे, कि और ज़्यादा लड़कियां गांव से निकल सकती हैं क्रिकेट में। तो ऐसे टूर्नामेंट हर बार होने चाहिए, जिससे कि लड़कियों को खेल के प्रति थोड़ी रुचि आए और वो खेलें, उन्हें पता चले कि कौन से खेल कैसे खेले जाते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और गांव में बहुत सारे जो करा सकते हैं लड़कियों के टूर्नामेंट, जो बॉयज़ के कराते हैं, वो गर्ल्स के भी कराए, ताकि गर्ल्स भी खेल पाएं।
1: शहरी क्षेत्रों के साथ साथ जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न महिला क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में हमने बात की क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक श्री राजपाल सिंह रावत जी से।
3: नमस्कार। आज के समय में जहां महिलाएं भी इस खेल के प्रति जागरूक हुई हैं, और देखा होगा कि पौड़ी जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है और उसमें महिलाएं प्रतिभाग करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हालांकि संसाधनों की काफी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी जोश और

0: इस खेल के प्रति महिलाओं को आकर्षित करता है। जहां हमने देखा कि पौड़ी जिले के चौबटाखाल विधानसभा के 3 या 4 ब्लॉकों में महिलाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता है। जैसे कि इस वर्ष जनवरी माह में चौबटाखाल में, उसके बाद एक्वेश्वर विकास खंड के धरासू में, उसके बाद विकास खंड पोखड़ा के गंवाड़ी में, और जून के माह में अभी अभी हाल में विकास खंड पोखड़ा के बीनागार द्वारा महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संसाधनों की कमी के कारण इसे महिलाएं जूझ रही हैं, लेकिन फिर भी जो जोश और जुनून उनका इस खेल के प्रति है, मैं तो चाहूंगा कि टेनिस बॉल यानी कि डे नाइट गेम से हर जगह महिलाओं के लिए इस खेल को रखा गया है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कई खिलाड़ी हमने ऐसे देखे हैं जो कि प्रॉपर बॉलिंग करते हैं, उनका जो एक्शन होता है वो प्रॉपर होता है, और बल्लेबाजी भी कही महिलाएं बहुत अच्छी करती हैं। जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की कि पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्रिकेट के प्रति जो लगाव है महिलाओं का, संसाधनों के माध्यम से अगर अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, अच्छी प्रतियोगिता होती है, और महिलाओं का और क्रिकेट के प्रति लगाव, ये निश्चित रूप से एक आने वाले समय में एक अच्छा आयाम स्थापित कर सकता है। जहां महिलाएं हमारे कृषि क्षेत्र में या यानी कि एक गृह के रूप में रह जाती थी, आज वे मैदान पे आती हैं, अपना खेल के प्रति अपना जौहर दिखाती हैं। जहां हाथ में दराती कुदाल को छोड़कर जब महिलाएं मैदान पर आती है और अपने गेंद और बल्ले से अपना जौहर दिखाती है, तो देखने को मिलता है कि हमारे इस पहाड़ी अंचल में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है।
1: जीवन में खेलों का महत्व और खेल विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना और माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में हमने बात की सहायक क्रीड़ा समन्वयक विकास खंड कोट श्री ज्योत सिंह राणा से।
2: खेलों के संबंध में जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा खेलों का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव मुक्त जीवन के साथ गहरा संबंध रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में हमारे छात्र छात्राएं और हमारे युवा आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जब हम मानसिक स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि जो तनाव है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में जो अंतरस्रावी ग्रंथियां होती है उन्हीं में से एक ग्रंथि है एड्रेनल नाम की, जो कि कोर्टिसोल नामक एक स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको रिलीज करती है। उससे हमारे जीवन में तनाव बढ़ता है। तो खेलों के माध्यम से क्या होता है, जब हम खेल गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारे जो कोर्टिसोल नामक ये जो स्ट्रेस हार्मोन है वो डिस्ट्रॉयड होके, या आप यूं कहिए कि उसका स्तर कम होके, हमारे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन होते हैं वो, जैसे कि डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एंड्रोफिन हो गया, इन हार्मोन्सों का स्तर हम खेलों के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है। तो सरकार के द्वारा समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के खेल कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिवर्ष करवाया जाता है, जिससे कि समाज में निश्चित रूप से एक जो खेलों का स्तर है वो बेहतर होता जा रहा है। इसी के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना की अगर मैं बात करूं तो ये 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ये जो 6 आयु श्रेणियां जो विभाजित की जाती है उसमें प्रत्येक, जो अगर ग्रामीण खेलों की बात करूं तो नए पंचायत स्तर पर प्रत्येक आयु वर्ग में, जैसे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14, जो ये 6 आयु वर्गों में इसको विभाजित किया गया है, इसके अंतर्गत प्रत्येक नए पंचायत से 2 बालक 2 बालिकाओं का चयन विकास खंड स्तर के लिए किया जाता है। और अगर मैं नगर पंचायत स्तर की बात करूं तो नगर पंचायत स्तर पर 3 बालक और 3 बालिकाओं का चयन विकास खंड स्तर के लिए किया जाता है। और जो हमारे नगर निगम स्तर के जो क्षेत्र हैं तो नगर निगम से 6 बालक और 6 बालिकाओं का प्रत्येक आयु वर्ग में चयन कर विकास खंड स्तर पर किया जाता है। विकास खंड स्तर पर जैसे कि आप आज विकास खंड कोर्ट के प्रांगण से देख सकते हैं कि हमारी 7 न्याय पंचायत और हमारे नगर पंचायत पौड़ी, नगर निगम सिद्धनगर आदि के बच्चे भी यहाँ पर

0: विकासखंड स्तर हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ जो प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे उसके पश्चात प्रत्येक आयु वर्ग से 6 बालक और 6 बालिकाओं का चयन जनपद स्तर के लिए किया जाएगा, और जब जनपद स्तर पर इन बालक बालिकाओं का जो चयन होगा तो प्रत्येक जनपद के प्रत्येक आयु वर्ग के 25 बालक और 25 बालिकाओं को जो हमारी सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है 1500 रुपये प्रतिमाह जो छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जाएगी, जो निश्चित तौर पर हमारे छात्र छात्राओं के लिए भविष्य में राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए उसे उन लोगों को अवश्यंभावी रूप से प्रोत्साहित करेगी। साथ ही साथ मैं आपका ध्यान इस ओर पर आकर्षित करना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है इसके अंतर्गत एक फिटनेस टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों की संपूर्ण शारीरिक क्षमता का एक सटीक मापन 6 इवेंटों के द्वारा किया जाता है। ये जो हमारे 6 इवेंट होते हैं उसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल थ्रो, फॉरवर्ड बैंड रीच, 30 मीटर फ्लाइंग रेस, 6x10 मीटर शटल रन और 600 मीटर रनिंग, ये जो प्रत्येक इवेंट होते हैं ये 10-10 नंबर का इनका जो क्राइटेरिया है और ये टोटल 60 नंबर का फिटनेस बैटरी टेस्ट है, और ये 60 नंबर मार्क्स के आधार पर ही हम प्रतिभावान प्रतिभागियों का चयन कर पाते हैं और उसके बाद इनको छात्रवृत्ति हेतु इनके चयन करने में हमें आसानी रहती है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार जो हम खेलों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का जो आयोजन हमारे ग्रामीण एवं शहरी बालक बालिकाओं के लिए जो किया जा रहा है निश्चित रूप से इनके जो भावी जो परिणाम होंगे निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के बच्चे, एक तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उनका आने वाला जो भविष्य होगा वो सुखमय होगा और वो एक करियर के रूप में भी इसको अपना सकेंगे, और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि सरकार के द्वारा जो ये कार्यक्रम हमारे छात्र छात्राओं के लिए जो समय समय पर निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं वो भविष्य में भी इसी प्रकार से आयोजित किए जाएंगे।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल का फुटबॉल के क्षेत्र में अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। हाल ही में मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयोजित जय कंडोलिया महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के बारे में हमने बात की स्थानीय फुटबॉल कोच श्री रविंद्र रावत जी से।
2: श्रोताओं, इस समय हम हैं पौड़ी के ऐतिहासिक कंडोलिया खेल मैदान में और अभी यहां पर जय कंडोलिया महोत्सव के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की जो फुटबॉल प्रतियोगिता थी उसका फाइनल हुआ है। खचाखच भरे इस स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने का अलग ही मज़ा है, और इस टूर्नामेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री रवि रावत, जो कि जय कंडोलिया महोत्सव के अंतर्गत इस फुटबॉल प्रतियोगिता में संयोजक के रूप में रहे हैं। तो रावत जी, स्वागत है आपका इस बातचीत में। रावत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस राष्ट्रीय स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया?
3: इसमें 11 तो जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई इसमें 11 तो जो थी वो इंडिया से टीमें थी और एक टीम नेपाल से थी, तो 12।
2: मैं अभी देख पा रहा था कि फुटबॉल मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पे उपस्थित हैं और खचाखच ये स्टेडियम भरा हुआ है। पौड़ी और फुटबॉल का एक अनोखा ही रिश्ता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
3: पौड़ी में तो फुटबॉल का इतिहास ही बड़ा अच्छा रहा है, और जहाँ बात आती है राष्ट्रीय स्तर फुटबॉल प्रतियोगिता की तो उसमें तो लोग सारे दर्शक पहुँचते हैं फुटबॉल प्रतियोगिता देखने के लिए।
2: यहाँ पे एक कोच के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि जो लड़के हैं उनके साथ साथ अब स्थानीय जो बालिकाएं हैं वो भी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो बालिकाओं का रुझान फुटबॉल की तरफ बढ़ रहा है।
3: जी, लड़कियाँ पहले भी बहुत सारी लड़कियाँ आई थी हमारे पास, और उनमें से बहुत सारी लड़कियां जो है वो कोचिंग डिप्लोमा उन्होंने किया है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करके वो

0: उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं और अभी भी बहुत सारी बच्चे जो है छोटे बच्चियां हमारे पास आती हैं और लड़कियों का तो बहुत अच्छा फ्यूचर है फुटबॉल में, अगर वो आए और मेहनत करें तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल में खिलाड़ियों का भविष्य स्वर्णिम है, ग्रामीण प्रतिभाओं को उचित मंच मिल रहा है और हम कह सकते हैं कि आने वाला समय खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम साबित होगा। ये था खेल दर्पण पर आकाशवाणी पौड़ी का डिस्पैच। संकलन वाचन आलेख अशोक सिंह, कार्यक्रम प्रस्तुति अशोक कुमार की।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण, ये कार्यक्रम आकाशवाणी पौड़ी की प्रस्तुति थी। मीडियम वेव 400

प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं राग जोग कौंस में ख्याल गायन। कलाकार हैं विद्याधर प्रसाद मिश्र।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का राग जोग कौस में ख्याल सुन रहे थे। विलंबित रचनाएं एक ताल में थी, बोल थे सुघड़ वर पायो, द्रुत रचना तीन ताल में, बोल थे पीर पराई जाने ना। तबले पर पूरन कुमार मिश्र, हारमोनियम पर महेश्वर दयाल। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी

1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में। समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8% जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर

0: At the Commonwealth Games, India's Sri Hari Nataraj qualified for the semi-finals of the men's 100-meter backstroke swimming competition at Glasgow in Scotland today. Para swimmers RVVK Budigina and Ali Imam also qualified for the men's 50-meter freestyle final. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।